FM के 101.7 MHz पर यह आकाशवाणी का चयबासा केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948, आषाढ़ माह की तिथि 8, तदनुसार 29 जून ईस्वी सन 2026। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:59 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स के करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्ध पोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है, जहाँ समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहाँ हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की भी समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधि मंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन, विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi attended the National Day celebrations marking the 50th anniversary of independence of Seychelles. Mr. Modi attended the celebrations as the guest of honor, becoming the first Indian Prime Minister to be accorded this honor. An Indian marching contingent comprising Navy and Army teams participated in the parade. An Indian naval band also formed part of the Indian marching unit, underlining the close and special India-Seychelles partnership. In a special gesture, INS Tarkash and INS Ikshak were docked at Port Victoria, highlighting India's long-standing friendship with Seychelles. Mr. Modi arrived in Seychelles on Saturday at the invitation of the President of Seychelles, Patrick Hermini. Prime Minister Modi was conferred the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. The award, which was presented by President of Seychelles Patrick Hermini, acknowledges PM Modi's long-standing push for sustainable growth and his green vision. PM Modi thanked the people and the government of Seychelles after being conferred the Guardian of the Blue Horizon. Prime Minister Narendra Modi met his Mauritius counterpart Dr. Navindra Chandra Ram Gulam in Seychelles yesterday. The two leaders discussed the ongoing cooperation between India and Mauritius. They further reviewed the progress made in the implementation of the special economic package extended by India. The two prime ministers agreed on the significance of the India-Mauritius enhanced strategic partnership under India's Vision Mahasagar and Neighbourhood First policy and their shared commitment to the Global South. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal is leading a high-level Indian business delegation to Athens in Greece after concluding his visit to the United Kingdom with a focus on strengthening trade, investment and strategic economic cooperation. The Commerce and Industry Ministry said that during the visit to Greece, the delegation will participate in presentations and startup pitches at the Athens Startup Business Incubator. India categorically rejected allegations made by Pakistan regarding the recent incident in Karachi and termed them as baseless. In response to media queries, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that instead of pointing fingers at others, Pakistan should look inwards and take credible action against the terror infrastructure on its territory. A sessions court in Bhiwandi has remanded the three accused arrested in Maharashtra teacher eligibility test paper leak case to police custody till the 6th of July. Investigators suspect the involvement of an interstate examination racket. Bhiwandi police told the court that the accused had allegedly travelled from Delhi to Bhiwandi to sell the leaked question paper for 1 crore 50 lakh rupees. Investigators had sought 10 days of police custody to trace the source of the leaked paper, examine financial transactions, find out whether the paper was sold elsewhere in Maharashtra, and identify other members of the racket. Police officials said the probe has revealed the involvement of an interstate and national level network. The Anti-Corruption Branch Delhi has arrested the then Director General Health Services, Dr. Vatsala Agarwal, and Deputy Controller of Accounts in the Central Procurement Agency, Neera Chopra, in the case related to alleged large-scale irregularities in procurement of medicines, surgical consumables, and medical equipment. The agency informed that the allegations pertain to procurement of portable X-ray machines, medicines, and other medical items at allegedly inflated rates through manipulated procurement processes. The United States and Iran have agreed to halt counter-strikes and resume talks in Qatar's capital Doha tomorrow. The move is aimed at resolving their dispute over the Strait of Hormuz after days of military escalation threatened to derail the fragile ceasefire. In the knockout stage of the FIFA World Cup, Canada beat South Africa 1-0 for its first knockout match victory at Los Angeles in the United States. Stephens Eustaquio of Canada scored the goal in the second minute of second half stoppage time. An Indian men's hockey team displayed remarkable defensive resilience to defeat England 3-2 in the penalty shootout after a hard-fought nil draw in the reverse fixture of the FIH Hockey Pro League in London yesterday. And that is the end of this news bulletin.
3: FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान। गायक कलाकार हैं महेंद्र कपूर।

श्री राम और उनके तीनों अनुजों का विवाह संस्कार संपन्न हो चुका है और अब वधुओं की विदाई की वेला निकट आ चली है। प्रतिदिन अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, किंतु जनक जी के स्नेह भरे आग्रह पर उन्हें रुक जाना पड़ता है। बारातियों का आदर सत्कार पूर्ववत जारी है। कई दिन बीत जाने के बाद विदा की घड़ी आ ही पहुंची। महर्षि विश्वामित्र तथा वधुकुल के पुरोहित शतानंद ने राजा जनक को समझाया, आप स्नेहवश उन्हें विदा नहीं करना चाहते, परंतु विदा तो देनी ही है। जब रनिवास में यह समाचार पहुंचा तो सभी लोग इस प्रकार उदास हो गए जैसे संध्या होने पर कमल मुरझा जाते हैं। अनगिनत बैलों पर लादकर बारातियों के लिए मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री भेजी गई। साथ ही 1,00,000 घोड़े, 25,000 सजे सजाए रथ, 10,000 हाथी तथा गाड़ियों में भर भर कर उपहार स्वरूप वस्त्र आभूषण। उधर रनिवास में सीता समेत अन्य वधुओं की विदाई का करुण, अत्यंत मार्मिक तथा हृदय विदारक दृश्य उपस्थित है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। गायक कलाकार थे महेंद्र कपूर। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। समर्पण के इस कार्यक्रम में पहला भक्ति गीत सुनते हैं सुमन कल्याणपुरी के स्वर में।

इस भक्ति गीत के साथ ही समर्पण का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM के 101.7 MHz पर यह आकाशवाणी का चयबासा केंद्र है।

श्रोताओं, आइए अब हम आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब के कुछ देर बाद यानी 6:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। कलाकार होंगी कुमारी ज्योति। सुबह 7 समय होगा कार्यक्रम जोहार चाईबासा का। प्रातः 8 आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही अंग्रेजी में समाचार का प्रसारण किया जाएगा 8:15 पर। आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। माटी की महक लोकगीतों पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 8:40 पर। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे उरांव लोकगीत। कलाकार होंगे सुकरा भगत एवं साथी। 9 विविधा कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन श्रोता सुनेंगे 9:30 पर।

10 बजे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे 10:30 पर, दोपहर 1:10 पर प्रादेशिक समाचार का प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से किया जाएगा। आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम पुनः आप सुन सकेंगे दोपहर 1:20 पर, 2:55 पर आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार का प्रसारण किया जाएगा।

3 बजे से पुनः आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। 4 बजे आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 4:02 पर पुनः आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। शाम 5 बजे मुख्य समाचार का प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से किया जाएगा। शाम 5:02 पर आकाशवाणी चयबासा से शेष कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी जाएगी। गुलदस्ता कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 5:05 पर। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे एक ही गायक के गाए चंद फिल्मी नगमे। शाम 5:30 पर खेती गृहस्थी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। शाम 6 बजे आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

शाम 6:02 पर हो अखड़ा कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युवाणी श्रोता सुनेंगे शाम 6:30 पर। 7 बजे आकाशवाणी कराची केंद्र से प्रादेशिक समाचार का प्रसारण किया जाएगा। इसके तुरंत बाद आप सुनेंगे जिले में आजकल। 7:15 पर श्रोताओं के पसंदीदा फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद का प्रसारण किया जाएगा।

रात्रि 8 बजे हम लेकर आएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। रात के 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रात के 9 बजे अंग्रेजी में समाचार का प्रसारण किया जाएगा। रात्रि 9:15 पर आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। रात के 10 बजे गज़लों का कार्यक्रम महफिल का प्रसारण किया जाएगा। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग श्रोता सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। रात के 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। और रात के 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी।

हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। कलाकार हैं कुमारी ज्योति।

इसके साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम जोहार चयबासा।

जोहर चेबासा की इस कार्यक्रम में श्रोता सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम है हीरो और स्वर है लता मंगेशकर की।

कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं मुकेश और लता मंगेशकर के युगल स्वर में। फिल्म का नाम है धरती कहे पुकार के।

थानेदार फिल्म के इस गाने के बाद श्रोताओं सुनते हैं मेरे हमसफर फिल्म का ये गीत महेंद्र कपूर और बलबीर के स्वरों में।

कार्यक्रम में आइए, अब सुनते हैं हम किसी से कम नहीं फिल्म का ये गीत, मोहम्मद रफ़ी और सुषमा श्रेष्ठ के स्वरों में।

0: आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार चयबासा।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
4: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
5: तीन नाले बड़ा परिवार जतो बनमा इन मरन बेटा क्रांति बेसरा आले मगे नेहर मेना बोले नुकन परिस्थिति रे बोले सब बड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे नाका गे आम बोले रुड़ तबन में

0: ना
1: मंगलोर आयको गांव बारगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउका कहाँ बना है वो लोग आउका वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हुए है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
2: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे हत्तो तो कहाँ तो घर आए में हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो कम बात हो जाए है
3: तुम लोग बुरन सिंह तमसोय अनिता तमसोय भरूपा सेना करना ऐसे दुकुरा में ना आया यापा में रिया तपा में रिया वाह बेटा मिटा
4: अन्य तुम लोग बुंबई कोड़ा पटन तुम लोग कोड़ा अन्य हम लोग कोदमरी कोड़ा लो पटन पटन तुम कितने ही कोड़ा मैंने में उन्होंने बागिया तो किन्हें दुना से यार सी कोलो पुलिस कोलो उन्हें लड़ाई चलाओ तमे दुर्गम गई यहाँ तो जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काको मेल मिया
5: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आपी लेकर ना लिंग सी जा हुरा रे मिना हीरो जिता हुरा रे मिना हीरो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आगे बिता हुरा इनका अले आया नु तुम तेरी ना मिल आपी लेकर ना
6: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
7: जोहार चैबासा कार्यक्रम में श्रोताओं आइए अब सुनते हैं राधा का संगम फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की।

एक धुन प्यार की। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल के स्वरों में।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही जोहार चयबासा का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बज रहे हैं। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आपके साथ मैं फरहनाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रपति दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
1: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
2: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल हैं। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मोज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
3: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं देगा। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार के कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा लेंगे।
4: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, यूएई, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय एमएसएमई, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं जीएफएससी जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
0: महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राज्यीय परीक्षा रैकेट शामिल 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
5: जांच अधिकारियों ने लीक हुए प्रश्न पत्र के स्रोत का पता लगाने, वित्तीय लेन देन की जांच करने, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेचे जाने की छानबीन कराने तथा इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कराने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। टीईटी परीक्षा जो रविवार 28 जून को आयोजित होने वाली थी, भिवंडी पुलिस द्वारा परीक्षा से 1 दिन पहले पेपर लीक का भंडाफोड़ किए जाने के बाद स्थगित कर दी गई। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी ने दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप के मामलों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉक्टर वत्सला अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उपलेखा नियंत्रक नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा की पूरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है।
6: सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भाई बहन देवताओं को गर्भगृह से औपचारिक रूप से स्नान वेदी तक ले जाया गया। वहां वैदिक मंत्रों के उच्चारण, शंख की ध्वनि और भक्ति संगीत के बीच पवित्र जल के 108 घड़ों से उनका स्नान कराया जाएगा। देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं के सार्वजनिक दर्शन का मौका होता है। उत्सव को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है।
7: धेमाजी जिला प्रशासन ने तत्काल जन सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अवरुद्ध जल अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी तटों, नालों, अर्द्रभूमियों, तटबंधों तथा अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सरकारी निर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने तथा आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच पहाड़ी क्षेत्रों से आए तेज बहाव के पानी ने जिले के जोनाइको डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉक्टर रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112371 7117 और 0112341444। खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
8: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से जुड़ा समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द दिए हैं, हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने सेशल्स में कहा समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापेमारी का समाचार भी कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, आरोपियों के ठिकानों से संपत्ति के दस्तावेज जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 6 आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी। आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से आभूषण और नकदी बरामद। राजधानी दिल्ली में दोपहर में 51 डिग्री वाली तपिश, जून में पहली बार लू। कल और परसों आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 2 जुलाई से गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, नव भारत टाइम्स की खबर है। देशबंधु ने बढ़ते तापमान और कम बर्फबारी का समाचार प्रकाशित किया है। गर्मी की मार से तेजी से पिघल रहा हिमलिंग, अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन की बढ़ी चिंता। हिंदुस्तान ने मानसून में देरी पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, समस्या बढ़ाएगा कमजोर मानसून। पत्र लिखता है, भारत में चावल का पर्याप्त सरकारी भंडार है और वो मुख्य खरीफ फसल में कमी को पूरा कर सकता है, अलबत्ता दलहन और तिलहन पर अलनीनो का असर पड़ेगा। लोकसत्य ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से मची तबाही के समाचार सचित्र दिए हैं। पत्र लिखता है, 1,500 से अधिक विदेशी बचाव कर्मी पहुंचे, चारों ओर नजर आ रहा तबाही का मंजर। ईरान का ऐलान, अगले 30 दिन होर्मुज पर हमारा कब्जा, बहरीन कुवैत पर फिर हमला। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया, ईरान नहीं सुधरा तो वजूद मिटा देंगे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका ने अनोखा फॉर्मूला शीर्षक से नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के विशेषज्ञों की अपील से जुड़ा समाचार दिया है। पत्र लिखता है, माँ के लिए चाय की प्याली हो, बच्चे की सेहत की रखवाली भी हो, माँ को चाय में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 देने का सुझाव, अपंगता की बीमारी से बच सकेंगे नवजात।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: Akashwani presents Morning News. Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi attends Seychelles National Day celebrations as guest of honor. Also holds talks with his Mauritius counterpart Naveen Chandra Ramgulam. United States and Iran agree to halt counter-strikes and resume talks in Qatar's capital, Doha, tomorrow. President Draupadi Murmu to present gallantry awards at defense investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan today. IMD issues red alert for very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in hockey, India beat England 3-2 in penalty shootout to finish FIH Pro League campaign on a winning note. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi attended the National Day celebrations marking the 50th anniversary of the independence of Seychelles. Mr. Modi attended the celebrations as the guest of honour, becoming the first Indian Prime Minister to be accorded this honour. More from our correspondent.
10: An Indian marching contingent comprising Navy and Army teams participated in the parade. An Indian naval band also formed part of the Indian marching unit, underlining the close and special India-Seychelles partnership. In a special gesture, INS Tarkash and INS Ikshak were docked at Port Victoria, highlighting India's long-standing friendship with Seychelles. PM Modi conveyed India's warm wishes to the people of Seychelles on this historic occasion. Mr. Modi arrived in Seychelles on Saturday at the invitation of the President of Seychelles, Patrick Hermini, External Affairs Minister S. Jaishankar, National Security Advisor Ajit Doval, and Prime Minister of Mauritius Naveen Chandra Ramgulam were also present at the event. According to the Ministry of External Affairs, India and Seychelles share a long-standing partnership rooted in shared historical, cultural, and people-to-people ties. As a key maritime neighbor in the Indian Ocean region, Seychelles holds a special place in India's vision Mahasagar, mutual and holistic advancement for security and growth across regions, and a commitment to the Global South. The MEA said Mr. Modi's visit will reaffirm the strong and enduring friendship between India and Seychelles and reinforce the shared commitment of both countries to enhance the bilateral relationship across all sectors. Ashish Abraham, Akashwani News, Delhi.
9: Prime Minister Modi was conferred the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. The award, which was presented by President of Seychelles, Patrick Hermini, acknowledges PM Modi's long-standing push for sustainable growth and his green vision. PM Modi thanked the people and the government of Seychelles after being conferred the Guardian of the Blue Horizon. In a statement, Foreign Secretary Vikram Misri said the honour has been conferred upon Prime Minister for his green leadership and efforts towards advancing the interests of the developing countries and his long-standing commitment towards promoting blue economy, climate action and sustainable management of ocean resources.
11: At the State House, in a special gesture, President Dr. Patrick Hermini conferred upon Prime Minister the distinction, the Guardian of the Blue Horizon. This is the first time that this distinguished honor has been bestowed, and it was conferred on Prime Minister for his distinguished leadership and steadfast commitment towards sustainable development, climate resilience, blue economy, and advancing the aspirations of small island developing states, or as the Prime Minister calls them, large ocean countries.
9: Prime Minister Narendra Modi met his Mauritius counterpart Dr. Naveen Chandra Ram Gulam in Seychelles yesterday. The two leaders discussed the ongoing cooperation between India and Mauritius. They further reviewed the progress made in the implementation of the special economic package extended by India. The two prime ministers agreed on the significance of the India-Mauritius Enhanced Strategic Partnership under India's Vision Mahasagar and Neighbourhood First policy and their shared commitment to the global South. The United States and Iran have agreed to halt counter-strikes and resume talks in Qatar's capital Doha tomorrow. The move is aimed at resolving their dispute over the Strait of Hormuz after days of military escalation threatened to derail the fragile ceasefire. The announcement came after multiple rounds of strikes around the Strait of Hormuz. More in this report.
12: The U.S. carried out strikes on Iranian military targets after accusing Tehran of violating the ceasefire by attacking commercial vessels. Iran responded by launching ballistic missiles and drones at U.S. military bases in Bahrain and Kuwait, while both sides exchanged fresh warnings over further escalation. A second U.S. official said both sides would stand down for now and that vessels can move freely while discussions continue. The renewed fighting stemmed from differing interpretations of the Memorandum of Understanding, signed earlier this month to end the conflict. Particularly Article 5, dealing with navigation through the Strait of Hormuz. Under the agreement, Iran committed to making its best effort to ensure the safe passage of commercial vessels through the strategic waterway, while the United States agreed to lift its blockade of Iranian ports. Yashasvi Kiryal, Akashvani News, Delhi.
9: President Draupadi Murmu will present gallantry awards at the second Defence Investiture Ceremony of 2026 at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. The President will confer gallantry awards to personnel of the Defence Forces, Central Armed Police Forces and State UT Police in the evening. These awards are given away in recognition of exceptional acts of bravery by personnel of the Armed Forces, Central Armed Police Forces and other security agencies. The awards reflect India's continuing battle against terrorism, insurgency and hostile threats across Jammu and Kashmir, the northeast and along the country's borders, while also recognizing acts of extraordinary courage in aviation, maritime operations and humanitarian missions. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. In Gujarat, the fourth Vibrant Gujarat Regional Conference will begin today at GSFC University in Vadodara under the theme Regional Aspirations, Global Ambitions. Union Ministers Rajnath Singh, Manohar Lal Khattar, Mansukh Mandaviya, alongside key state ministers and global diplomats, will take part in the two-day conference which aims to boost industrial development in central Gujarat region. We have a report from our correspondent.
13: The two-day summit will host over 30 seminars with 151 experts and delegates from partner countries including Japan, Singapore, UAE, Ukraine and Rwanda. Focused on central Gujarat's economic growth, the event will focus on future-ready sectors like semiconductors, logistics, green hydrogen, quantum technology, AI in agriculture, aerospace and defense. A grand exhibition with over 150 stalls showcasing regional MSMEs, advanced tech startups and major enterprises like Amul and GFS will be one of the main highlights of the event. Aparna Khut, Akashvani News, Vadodara.
9: A sessions court in Bhiwandi has remanded the three accused arrested in Maharashtra teacher eligibility test paper leak case to police custody till the 6th of July. Investigators suspect the involvement of an interstate examination racket. More from our correspondent.
14: Bhiwandi police told the court that the accused had allegedly travelled from Delhi to Bhiwandi to sell the leaked TET question paper for 1 crore 50 lakh rupees. Investigators had sought 10 days of police custody to trace the source of the leaked paper, examine financial transactions, find out whether the paper was sold elsewhere in Maharashtra and identify other members of the racket. Shailaja Tiwale, Akashwani News, Mumbai.
9: In Odisha, lakhs of devotees thronged the pilgrim city of Puri this morning as the sacred Deva Snan Jatra or the Snan Jatra is being observed with traditional grandeur at the Sri Jagannath Temple. More from our correspondent.
15: The holy city of Puri in Odisha resonated with devotion this morning as thousands of pilgrims gathered to witness the sacred Snana Yatra of Lord Jagannath, Lord Balabhadra and Devi Subhadra. In keeping with centuries-old tradition, the sibling deities were ceremonially escorted from the Sanctum Sanctorium to the Snana Vedi, where they received the ritual ablution with 108 pitchers of sacrificed water amid the chanting of Vedic hymns, the blowing of conches and the devotional music. Observed on the auspicious occasion of Devasnana Purnima, the festival marked the ceremonial public appearance of the deities before the annual Rath Yatra. Following the sacred bathing ritual, the deities will enter the customary Anasara period of seclusion, remaining away from public view until their appearances during Navajovana Darshan ahead of the Grand Chariot Festival to begin from 16th of next month. Extensive security and crowd management arrangements have been made to ensure the smooth and orderly conduct of the celebrations. Prakash Das, Akashvani News, Bhubaneswar.
9: The India Meteorological Department or IMD has issued a red colour warning for very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim for today. The Met Department has said that conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into parts of Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar, Uttar Pradesh and Uttarakhand during the next 2 to 3 days. In Assam, fears of a major flood have intensified in Dhemaji district following reports of a temporary blockage in the upstream course of the Gai Nadi in the hill of Arunachal Pradesh. The obstruction is believed to have been caused by a massive landslide triggered by days of heavy rainfall in the region.
7: The Dhemaji District Administration has issued an urgent public advisory and warned that the blockage could trigger a sudden flash flood if the accumulated water is released downstream. Residents, particularly those living along riverbanks, streams, wetlands, embankments and low-lying areas, have been asked to remain on high alert. The District Disaster Management Authority has asked people to closely follow official advisories, cooperate with local authorities and remain prepared to move to a safer location if necessary. Meanwhile, torrential runoff from the hills has inundated many parts of the Jonai Koh district in the district, with flood waters flowing over National Highway 515 and completely disrupting vehicular movements. Rising waters have submerged homes and agricultural fields, causing significant damage to property and standing crops. Rakesh Dole, Akashvani News, Guwahati.
9: On to sports. In hockey, India defeated England 3-2 in the penalty shootout after a hard-fought goalless draw in the reverse fixture of the AFIH Pro League at the Lee Valley Hockey and Tennis Centre in London yesterday. Abhishek Sheelanand Lakhra and Hardik Singh converted their shootout attempts for India in a fiercely contested encounter. Defender Sanjay, who was named player of the match, led a resolute defensive effort while both goalkeepers made important contributions in preserving the clean sheet. And in the knockout stage of the FIFA World Cup, Canada beat South Africa 1-0 for its first knockout match victory at Los Angeles in the United States. Stephen Eustachio of Canada scored the goal in the second minute of the second half stoppage time. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
16: Thank you, Anuja. All the dailies have noticed the strengthening of India's maritime footprint in Seychelles with the Prime Minister's visit. PM Modi creates history with twin firsts, writes the Times of India. The first Indian PM to address Seychelles' National Assembly and the first to be honoured with the country's highest environmental honour. Lauding the support to austerity called by citizens, Prime Minister Modi backs self-reliance in aviation and defence sectors. Quoting the Prime Minister in his monthly radio programme, Mann Ki Baat, the Asian Age writes, "From seas to skies, India is becoming secure." In a significant transformation, Army set to establish operationalized first integrated battle groups next month, headlines the Indian Express. Government to amend rules for speedy approvals for medical services, states in the

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के खेलगांव में 1042 नवचयनित इंटर और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को प्रदान करेंगे नियुक्ति पत्र। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज करेंगे समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ। 3 साल तक के बच्चों को घर के पास मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शराब घोटाला मामले में राज्य के पूर्व मंत्री वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और उनके पुत्र को पूछताछ के लिए जारी किया समन। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के 20 जिलों में आज से 4 जुलाई तक बारिश आंधी और वज्रपात की जताई संभावना। और भारतीय जूनियर हॉकी टीम में झारखंड से 4 खिलाड़ियों का चयन। 5 से 14 जुलाई तक इंग्लैंड में टीम खेलेगी 7 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में 1042 नवचयनित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। इनमें पहली से पांचवीं कक्षा के लिए 274 तथा छठी से आठवीं कक्षा के लिए 768 सहायक आचार्य शामिल हैं। राज्य सरकार प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में 26,000 सहायक आचार्यों की चरणबद्ध नियुक्ति कर रही है, जिसके तहत अब तक 12,500 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यह योजना पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की सोच पर आधारित है। इसका मकसद जन्म से 3 साल तक के बच्चों को घर के पास बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने में अहम भूमिका निभा सकता है। एक कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने युवाओं से नौकरी मांगने की बजाय रोजगार देने वाला बनने का आह्वान किया। राज्य में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कल से शुरू हो जाएगा। इस कड़ी में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चतरा जिले में कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। इस मौके पर पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडेय ने पत्रकारों से बातचीत की।
1: झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार पूरे राज्य में दौरा करके और सभी जिलों में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद का कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया है, ताकि किसी भी तरह से वोटर का नाम उस लिस्ट से नहीं कटे जो पात्र है, जो पात्रता रखता है या जो 18 वर्ष जिसका आयु हो गया है उस आदमी का नाम वोटर लिस्ट में जुड़े।
0: रांची में महिला सशक्तिकरण को लेकर सामाजिक संस्था इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट 325 की ओर से प्रत्युषा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर होने के लिए प्रेरित किया।
2: ये लोग लगातार सोशल वर्क करते हैं, स्कूल में जाके हैप्पी स्कूल बनाते हैं, जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम रहता है उसको दूर करते हैं। और अभी यहाँ कुछ जैसे बुके वगैरह जो दिया गया वो बच्चों के द्वारा ही बना के दिया गया, महिलाओं के द्वारा बना के दिया गया, तो लगातार ये लोग फील्ड में काम कर रहे हैं।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शराब कारोबार और उससे जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में झारखंड के पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और उनके पुत्र रोहित उरांव को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। ईडी ने रोहित उरांव को आज तथा रामेश्वर उरांव को

0: यानी 30 जून को रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होने को कहा है। यह कार्रवाई योगेंद्र तिवारी से जुड़े शराब कारोबार मामले की जांच के क्रम में की जा रही है, जिसमें ईडी पहले भी संबंधित ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। रांची के पहाड़ी मंदिर से बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए 82 श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू के लिए रवाना हुआ। श्रद्धालु 3 जुलाई को अमरनाथ गुफा के लिए प्रस्थान करेंगे और 6 जुलाई को बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। साथ ही वैष्णो देवी, रघुनाथ मंदिर, खीर भवानी और स्वर्ण मंदिर सहित अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों का भी दर्शन करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देवघर स्थित एम्स ने पहली बार सफलतापूर्वक ओपन हार्ट सर्जरी कर स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह जटिल सर्जरी कार्डियो थोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी विभाग के डॉ. रजत अग्रवाल और एनेस्थीसियोलॉजी विभाग के डॉ. संजय कुमार के नेतृत्व में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई। रांची में कल 3 दिवसीय चित्रपट झारखंड फिल्म फेस्टिवल 2026 का समापन हुआ। विस्तृत ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: रांची स्थित सरला बिरला यूनिवर्सिटी में आयोजित 3 दिवसीय चित्रपट झारखंड फिल्म फेस्टिवल 2026 का कल सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, सम्मान समारोह और पुरस्कार वितरण के साथ समापन हुआ। समापन समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सहित कई शिक्षाविदों, फिल्मकारों और कलाकारों ने भाग लिया। इस अवसर पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड के कलाकार राज्य की संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता को देश दुनिया तक पहुंचाकर राज्य की ब्रांडिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वहीं विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सी. जगन्नाथ ने युवा फिल्मकारों से झारखंड की प्राकृतिक संपदा को फिल्मों के माध्यम से वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि अर्जुन मुंडा ने कहा कि सिनेमा समाज में रचनात्मक सोच विकसित करने का प्रभावी माध्यम है और नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। समारोह में विभिन्न श्रेणियों के विजेताओं और प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया तथा सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविष रहमान।
0: मॉनसून से पहले हजारीबाग नगर निगम ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस सिलसिले में महापौर अरविंद कुमार राणा ने शहर के स्कूलों समेत अन्य स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
2: मैं सारे निगम क्षेत्र के विद्यालयों का करने वाला हूँ विजिट। जहाँ भी आवास होगा हमारा विद्यालय को हम ठीक करेंगे। रोड और नली तो हमारा प्राथमिकता सूची में है। हम अभी 70 नलियों का और रोडों का काम करवाने वाले हैं। टेंडर हो गया हमारा, ये हमारा विद्यालय के सामने अतिक्रमण कर लिया है और पक्का अतिक्रमण है।
0: मौसम विभाग ने राजधानी रांची, रामगढ़, धनबाद समेत 20 जिलों में आज से 4 जुलाई तक बारिश और वज्रपात की आशंका जताई है। अधिकतर क्षेत्रों में तेज बारिश, वज्रपात और 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है। स्कूली खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI ने वर्ष 2025-26 के लिए 2 राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया है। परिषद को राष्ट्रीय चयन ट्रायल एवं कोचिंग कैंप के सफल आयोजन के लिए सराहना पुरस्कार तथा 69वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के उत्कृष्ट आयोजन के लिए सर्वश्रेष्ठ आयोजक श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। भारतीय जूनियर हॉकी टीम में झारखंड की 4 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इनमें से 3 रांची के बरियातू स्थित CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की छात्राएं हैं और 4थी खिलाड़ी सिमडेगा की है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित होने वाले अधिकतर प्रमुख अखबारों ने पूर्व वित्त मंत्री सह कांग्रेस नेता रामेश्वर उरांव और उनके बेटे को ईडी से मिले समन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित

किया है। हिंदुस्तान ने लिखा है, शराब घोटाले में पूछताछ के लिए रोहित को आज, रामेश्वर को कल बुलाया। प्रभात खबर की हेडलाइन है, खुद कार चलाकर जोन्हा पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पत्नी संग उठाया प्रकृति के मनोरम दृश्य का आनंद। दैनिक जागरण लिखता है, एसआईआर कल से गणना प्रपत्र लेकर घर घर पहुंचेंगे बीएलओ। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, झारखंड में 17 जिलों में कुपोषण की स्थिति गंभीर, 13 लाख महिलाओं बच्चों को 3 माह से पोषाहार बंद। और अब अंत में मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के खेल गांव में 1042 नवचयनित इंटर और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को प्रदान करेंगे नियुक्ति पत्र। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज करेंगे समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ। 3 साल तक के बच्चों को घर के पास मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शराब घोटाला मामले में राज्य के पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और उनके पुत्र को पूछताछ के लिए जारी किया समन। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के 20 जिलों में आज से 4 जुलाई तक बारिश, आंधी और वज्रपात की जताई संभावना। और भारतीय जूनियर हॉकी टीम में झारखंड से 4 खिलाड़ियों का चयन, 5 से 14 जुलाई तक इंग्लैंड में टीम खेलेगी 7 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

FM के 101.7 MHz पर यह आकाशवाणी का चयबासा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक। माटी की महक कार्यक्रम में श्रोताओं, आज हम आपको सुनवा रहे हैं उरांव लोकगीत। कलाकार हैं सुकरा भगत और साथी।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

अभी आप सुन रहे थे उरांव लोकगीत। कलाकार थे सुकरा भगत और साथी। इसके साथ ही लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 9 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विविधा।

0: श्रोताओं, विविधा कार्यक्रम में आज हम चर्चा के माध्यम से जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस के बारे में। जी हाँ श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस प्रत्येक वर्ष आज के दिन यानी कि 29 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2016 में की थी। इस दिवस का उद्देश्य उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के महत्व, उनकी जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों, जलवायु तथा वहाँ रहने वाले लोगों की चुनौतियों और अवसरों के बारे में हमें जागरूकता प्रदान करता है। श्रोताओं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित पृथ्वी का वह भाग है जहाँ पर पूरे वर्ष अपेक्षाकृत अधिक तापमान रहता है और अनेक स्थानों पर भरपूर वर्षा होती है। पृथ्वी की अधिकांश जैव विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही पाई जाती है जहाँ पर विश्व के अनेक जंगल, नदियाँ और सामुद्री पारिस्थितिक तंत्र पाई जाती है। श्रोताओं, इस क्षेत्र में लोगों की आजीविका कृषि, मत्स्य पालन और वनों पर निर्भर होती है। जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और प्रदूषण से इन क्षेत्रों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनाने का प्रमुख उद्देश्य यह है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के साथ ही जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा भी करनी है, साथ ही साथ स्थानीय समुदायों के जीवन स्तर में सुधार के प्रयासों को प्रोत्साहित करते हुए वहाँ के लोगों को रोजगार से जोड़ना है। श्रोताओं, भारत का अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। यहाँ घने वन, समृद्ध जैव विविधता, कृषि, मसाले, चाय, कॉफ़ी तथा अन्य वन्यजीव पाए जाते हैं, इसलिए इन प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हमारे देश भारत के लिए भी अति महत्वपूर्ण होती है। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस हमें यह संदेश देता है कि यदि हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के जंगलों, नदियों, समुद्रों और जैव विविधता की रक्षा करेंगे तो पृथ्वी का पर्यावरण संतुलित रहेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित एवं स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित किया जा सकेगा। श्रोताओं, अगर हम अपने क्षेत्र के जंगलों, नदियों की सुरक्षा करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे भविष्य के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि हमको हमेशा प्रकृति के साथ ही रहना है, उनके साथ रहकर ही अपना जीवन यापन करना है। तो हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि कम से कम प्रकृति को नुकसान पहुंचाने के साथ ही साथ अधिक से अधिक वृक्षारोपण जैसे अभियानों में शामिल होकर हम हमारे पृथ्वी की प्राकृतिक जैव विविधता को हम सुरक्षित कर सकते हैं। श्रोताओं, अभी हम चर्चा के माध्यम से जान रहे थे अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के बारे में।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत। भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

0: స్వయం ఇది కట్టుబడే భారతీయ సేన.
1: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ.
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है. नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है. इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है.
3: तीन नाले बड़ा परिवार जो तो बनवा इन मेरे बेटा क्रांति बेसरा आले वगे नेहर में ना बोले नुकन परिस्थिति रे बोले सब बड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे ना कहा कि हम बोले रुड़ तब में आले परिवार से मतलब पूरे ये ना
4: वरना मंगलोरा को गांव वरगरा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउका कहाँ मने आए वो लोग आउका वो जिंदा है ना मने जिंदा है कोई को ना हमरे सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखंड तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
5: नाम है रणबला देवी कहाँ बारे हत्तो तो कहाँ तो घर आई ने हमरे घर बहुत दुख के बात होते कम बात हो जाए
6: तुम लोग बुरा मिसिंग काम सोए अनुता तमसोय भरूपा ऐसा करना ऐसे दुकुरा में ना आया यापा में इरिया तपा में इरिया वाह बेटा निका
7: अन्य न तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम गुमरे कोड़ा अन्य हम दो कोदमरी कोड़ा उड़ो पटन पटन तुम कितने कोड़ा मैंने में बुरी ने बागिया तो कि ये दोनों से यार की कोलो पुलिस कोलो में लड़ाई चलाओ तमा दुर्गम गई अंदर जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काका मेरे मिया
8: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप इलेक्ट ना लिंग से जा हुरा रे मिना हीरो जिता हुरा रे मिना हीरो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आगे बिटा हुरा इनका अले आया न तुम ते ना मिला आप इलेक्ट ना.
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी. साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है. आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं. हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें. इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं.
9: विविध कार्यक्रम में श्रोताओं आइए अब सुनते हैं ऊर्जा संरक्षण विषय पर आधारित यह भेंटवार्ता. भेंटवार्ताकार है डॉक्टर अर्पित सुमन टुप्पो और उनसे बातें कर रही हैं बीएम मंजू बोद्रा.
10: तो कार्यक्रम पे आपका बहुत बहुत स्वागत है. आपको हमारी ओर से नमस्कार जोहार. सबसे पहले मैं आपसे चाहूंगी कि आप अपना परिचय खुद दें.
11: जी धन्यवाद. मैं डॉक्टर अर्पित सुमन टोप्पो सहायक प्राध्यापिका महिला कॉलेज चैबासा से हूं और मैं सहायक प्राध्यापिका के रूप में वर्ष 2012 से कुल्हान विश्वविद्यालय में कार्यरत हूं.
10: तो जैसे कि आज हमारे चर्चा का विषय है ऊर्जा संरक्षण, है ना? तो हम चाहेंगे कि आप बताएं ऊर्जा हम किसे कहेंगे.
11: जी, ऊर्जा यदि हम साधारण शब्दों में बात करेंगे तो किसी भी काम के करने की जो क्षमता होती है हम उसे ऊर्जा कहते हैं. वो शक्ति होती है जिसके द्वारा हम किसी काम को कर पाते हैं, वो ऊर्जा होती है. और जैसा आपने मुझसे कहा था कि 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस है, तो प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को भारत में ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है और यह दिवस ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा आयोजित किया जाता है जो ऊर्जा संरक्षण के महत्व और देश की उपलब्धियों को उजागर करता है।
10: अब हम चाहेंगे कि ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में आप बता दें।
11: हाँ हाँ, ऊर्जा के बहुत सारे प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से हम इसे दो भाग में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले नवीकरणीय ऊर्जा और उसके बाद अनवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा जो हमें प्राकृतिक स्रोतों से मिलती है और लगातार बनी रहती है, जैसे सूर्य की रोशनी से जो हमें ऊर्जा मिलती है, जैसे सौर ऊर्जा कहते हैं, ये नवीकरणीय ऊर्जा है। अनवीकरणीय ऊर्जा वही होते हैं जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इसे हम जीवाश्म ईंधन के द्वारा जो ऊर्जा मिलती है, हम ये भी कह सकते हैं। तो बेसिकली दो भाग होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। और इसके अंतर्गत यदि हम देखेंगे जो हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, जिसमें हम विद्युत ऊर्जा को जानते हैं, रासायनिक ऊर्जा है, ऊष्मीय ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, तो मनुष्य अपने जीवन में प्रतिदिन प्रति क्षण अपने दैनिक जीवन में ऊर्जा की मदद से ही अपने दैनिक कार्यों को कर पाता है। तो ये प्रकार है।
10: तो ये जो ऊर्जा है इसका जो हम प्रयोग करते हैं दैनिक जीवन में, वो किस ऊर्जा का प्रायः प्रयोग करते हैं?
11: जी बिल्कुल सही बात कही है कि हम दैनिक जीवन में किन किन ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। तो दैनिक जीवन में हम विद्युत ऊर्जा का प्रयोग बहुत ही साधारण शब्दों में समझ सकते हैं, जैसे विद्युत ऊर्जा का उपयोग हम अपने घर में पंखे, बल्ब, टीवी, कंप्यूटर और अन्य उपकरण चलाने में करते हैं, घरेलू के विभिन्न कार्यों में करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स चलाने के लिए करते हैं। हम रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग करते हैं जिसके अंतर्गत पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस और साथ में खाना पकाने वाले जो भी यंत्र हैं, ये हैं आपके रासायनिक ऊर्जा के स्रोत। बैटरी जो होती है जो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, इस तरीके के जो स्रोत हैं ये हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। जी, यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। बेसिकली यदि हम ऊर्जा को देखेंगे ना, तो इसे हम विज्ञान के शब्दों में देखेंगे तो ये बहुत बृहत रूप है, लेकिन दैनिक जीवन में बेसिकली हम समझने के लिए कह सकते हैं कि हम नित्य समय, हर समय हम ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, जो बेसिकली मैंने आपको बताया, बल्ब है, टीवी है, कंप्यूटर है, खाना बनाने के लिए भी जो इलेक्ट्रॉनिक सभी चीजें आ रही है, सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा के बारे में भी हम जान रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इसका प्रयोग करना चाहिए, संरक्षण की बात भी हो रही है, तो ये सब ऊर्जा के प्रकार है जिसका हम उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं।
10: तो मेरे ख्याल से जो भी चीज हम लोग उपयोग करते हैं उसका हम लोग संरक्षण करते हैं, तो क्या ऊर्जा का संरक्षण किया जा सकता है?
11: एकदम, ऊर्जा का संरक्षण ही होता है। यदि हम लोग विज्ञान की भाषा में देखेंगे तो ऊर्जा का ही ना नाश होता है ना ही हम उसका उत्पन्न कर सकते हैं। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में हस्तांतरित होता है, तो इसे हम ऊर्जा का संरक्षण ही कहते हैं, ठीक है ना। और हमें ऊर्जा का संरक्षण भी करना चाहिए, जैसे कि अभी हमने कहा कि मुख्य रूप से ऊर्जा के दो भाग होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, और जितने उसके बाद की ऊर्जा के बारे में बताया वो उसके और जो है अन्य भाग होते हैं। तो संरक्षण हमें इसलिए भी करना चाहिए, जैसे हम अभी जीवाश्म ईंधन की बात किए, पेट्रोल डीजल की बात किए, तो ये एक सीमित मात्रा में हमारे पास है जो ये हमारे ऊर्जा के स्रोत है, और यदि हम इसका संरक्षण नहीं करेंगे तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि हमें दिक्कत हो सकती है, ये समाप्त हो जाएंगे। जैसे हम खाना पकाने के लिए कोयले का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ये कोयला कब तक हमारे साथ है? ये जीवाश्म ईंधन का एक रूप है, और एक समय ऐसा आएगा कि ये कोयले समाप्त हो जाएंगे, हम समाप्ति की ओर आगे बढ़ेंगे, तो संरक्षण करने की आवश्यकता है। उसका अल्टरनेट हम देख सकते हैं, आज सरकार भी ये कहती है कि हमें सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। सौर ऊर्जा से भी बहुत सारे ऐसे नए नए आविष्कार हुए हैं कि सौर ऊर्जा का प्रयोग करके हम भोजन भी कर सकते हैं, मोबाइल को चार्ज करने में कर सकते हैं, या फिर सोलर लैम्प, लालटेन, बिजली से भी बल्ब भी बनाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से यदि हम संरक्षण कर रहे, एक उसके रूप से दूसरे रूप में हम उसका हस्तांतरण कर रहे हैं, तो ऊर्जा का संरक्षण बहुत जरूरी है।
10: तो इसके जो है इसको संरक्षण हमें करनी चाहिए, पर हम करें कैसे, इसके तरीके होंगे?
11: हाँ जरूर जरूर, जैसे कि मैं यहाँ पे उष्मीय ऊर्जा के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगी जो दैनिक जीवन में हम प्रयोग करते हैं। तो दैनिक जीवन में होने वाले उष्म ऊर्जा के रूप में हम अपने घर में मुख्य रूप से खाना पकाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए वाटर हीटर में करते हैं। और हम जैसे भी ठंड का मौसम है तो हम गीजर में पानी गर्म करते हैं, ठीक है, और स्टोव में खाना बनाते हैं, इस तरीके से हम इसका घरेलू उपयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग हम इस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि सूर्य की प्राकृतिक गर्मी का हम लाभ ले सकते हैं, कृत्रिम हीटिंग जो है वो हम कम करेंगे और जो प्राकृतिक गर्मी है उसका लाभ ले सकते हैं। घर की दीवारों, छत और खिड़कियों पर अच्छी इंसुलेशन लगाएं ताकि गर्मी बाहर ना निकले। शावर लेने के बजाय कम पानी से नहाएं। वाटर हीटर का यदि तापमान 50 to 60 degrees Celsius तक है तो ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म ना करें ताकि विद्युत ऊर्जा जो है उसकी बचत हो, है ना। और साथ में अनुपयोगी समय में गैस चूल्हा या हीटर बंद रखें और कुशल उपकरणों का प्रयोग करें। इस तरीके से हम उष्मीय ऊर्जा के द्वारा, ये एग्जाम्पल मैंने दिया, अपने दैनिक जीवन में करके उसका संरक्षण कर सकते हैं। बिजली की कम बचत होगी, कम खर्च होगी, बिजली की बचत होगी। जब हम कमरे में नहीं है तो उस कमरे में बल्ब ऑफ कर कर रखें, फैन ऑफ कर कर रखें। तो इस तरह से हम छोटे छोटे अपने इन कदमों के द्वारा ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं।
10: इसके अलावा और भी तरीके हैं?
11: हाँ जी,
10: इसके अलावा और भी तरीके हैं?
11: हाँ, इसके अलावा भी और भी तरीके हो सकते हैं। जैसे मैंने तो अभी आपको उसमें ऊर्जा के बारे में बताया, और इसके पहले मैंने आपको बताया था रासायनिक ऊर्जा के बारे में, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस जो रासायनिक ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। अभी बड़े शहरों में यह देखा गया है कि एक दिन इस तरीके का किसी भी कैंपस में या किसी भी ऑफिस में या किसी भी कॉलेज स्कूल में व्हीकल फ्री डे हम लोग मनाते हैं। इससे प्रदूषण को भी जो होती है वो कमी आती है और साथ साथ में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस की भी बचत होती है, ठीक है। इसके अलावा अभी बहुत सारे व्हीकल इलेक्ट्रिक वाले आ गए हैं जिससे थोड़ी सी उसमें भी बचत हो रही है। हालांकि ये भी हमारे इस क्षेत्र में थोड़े से कम देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी रासायनिक ऊर्जा की बचत हम कर सकते हैं कि बहुत अधिक हम गाड़ियों का प्रयोग ना करें, जब जरूरत हो तभी करें। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, ये वातावरण के लिए भी अच्छा है। और हम ये कोशिश करें कि कम से कम ऊर्जा का प्रयोग करें ताकि उसका संरक्षण हो सके, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक होता है।
10: तो सरकार की ओर से ऊर्जा संरक्षण के लिए कोई कदम भी उठाए जा रहे होंगे, इसके बारे में भी अगर आप थोड़ा चर्चा कर सकते हैं।
11: जैसा कि 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य ही है कि लोगों में ऊर्जा के कुशल उपयोग की किस तरह से प्रयोग करना है ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देता है और अनावश्यक ऊर्जा खपत को कम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। और मैं आपको बता दूं कि इसके लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए शिक्षण संस्थानों में या फिर अन्य ऑफिसों में भी वर्कशॉप हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, सम्मेलन हो रहे हैं, ताकि लोगों को यह जानकारी हो कि किस तरह से हम ऊर्जा का कुशल उपयोग कर सके, सही तरीके से उपयोग कर सके। और जैसे अभी मैंने बताया ग्लोबल वार्मिंग के बारे में या जलवायु परिवर्तन के बारे में, तो इन सारे ऊर्जा के उपयोग करने से प्रदूषण भी कभी कभी मतलब बढ़ जाते हैं। जैसे हम अभी देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण से जब गर्मी नहीं पड़नी है तो बहुत पड़ रही है, जब बारिश नहीं होनी है तो बहुत हो रही है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि हम जान रहे हैं। तो ये भी एक कारण है कि हम उसका कुशल उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य भी यही है कि कुशल उपयोग करें, और सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। इसके लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जो सरकार के द्वारा बनाया गया एक संस्था है जो इस पर कार्य कर रही है, और यह दिवस 2001 के भारतीय ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के बाद ही लागू हुआ था यह दिवस, यानी कि ये जो ऊर्जा संरक्षण दिवस है, और जो ऊर्जा नीतियों को मजबूत करने पर केंद्रित है, और 2025 में 35वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार इसी दिन विज्ञान भवन नई दिल्ली में वितरित किए जाएंगे, जिसमें राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी शामिल होंगी। और यह प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोग जागरूक हो और ऊर्जा का कुशल प्रयोग और जैसा आपने मुझसे पूछा अभी कि सरकार की ओर से क्या प्रयास कर रही है, तो काफी सारा प्रयास है, कुछ कानूनी व संस्थागत प्रयास है, उद्योग के क्षेत्र में भी प्रयास है, भवन और शहरी क्षेत्र के भी प्रयास है, और जागरूक करने के लिए काफी सारे नवीकरणीय ऊर्जा को प्रयोग करने के लिए कोशिशें की जा रही है।
10: जी, जी। तो हम अंत में चाहेंगे कि आप हमारे जो सुनने वाले श्रोता हैं, आम आदमी हैं, उनको कुछ संदेश दे दे ताकि वो भी ऊर्जा संरक्षण में अपनी सहभागिता निभा पाए।
11: ये ऊर्जा संरक्षण दिवस सरकार की ओर से एक प्रयास है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा ऊर्जा का संरक्षण किस रूप में करना चाहिए, ये एक प्रयास है, लेकिन ये प्रयास हम आम जनता के लिए, हम सभी के लिए है, और जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, ऊर्जा के कुशल उपयोग से वाकिफ नहीं होंगे, हम नहीं कर पाएंगे। तो जागरूकता ही सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर, और मुझे ऐसा लगता है कि छोटे छोटे प्रयास हमें अवश्य करने चाहिए। यदि हम कमरे में नहीं है तो वहाँ पे बल्ब ऑफ कर रखें, फैन ऑफ कर रखें, एसी ऑफ कर रखें। और हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हम जनता को भी ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर यह प्रण लेना चाहिए कि हम ऊर्जा के कुशल उपयोग को लेकर के जागरूक हों, क्योंकि हमारे प्रयास के द्वारा ही यह संभव हो पाएगा। सरकार की ओर से प्रयास किए जाएंगे, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का ये प्रयास है कि लोग जागरूक हो, लेकिन जब तक हम जागरूक नहीं होंगे ये नहीं हो पाएगा। और हमें छोटे छोटे प्रयास करने चाहिए, जैसे हम अपने घरों में बिना किसी कारण के कोई ऐसा ऊर्जा का प्रयोग ना करें कि वो उसका हानि हो, जैसे किसी खाली कमरे में ऐसे बल्ब या पंखा चला करके ना छोड़ दें, जब कोई व्यक्ति है तभी हम उसका प्रयोग करें, एसी का भी वैसा ही प्रयोग करें, हम प्राकृतिक गर्मी का प्रयोग करें, अभी ठंड का मौसम है, कृत्रिम हीटिंग से हम बचें, और इस तरह से छोटे छोटे अपने कदम के द्वारा हम ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं।
10: तो मैडम, आपसे ऊर्जा संरक्षण के बारे में बातें हुई, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जोहार।
11: धन्यवाद आपको भी।
9: अभी आप सुन रहे थे ऊर्जा संरक्षण विषय पर आधारित यह भेंट वार्ता। जानकारी दे रही थी डॉक्टर अर्पित सुमन टोप्पो, और उनसे बातें कर रही थी वीएम मंजू पोद्रा। तो श्रोताओं, इसी भेंटवार्ता के साथ आज का हमारा विविधा कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम से हमें विदा दें। नमस्कार।

रसरंजन के इस कार्यक्रम में पहला गीत सुनते हैं फिल्म हम सब चोर हैं से। आवाज़ें हैं कुमार शानू और अलका याग्निक की।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं संघर्ष फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं सोनू निगम और श्रद्धा पंडित की।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: आ गए सैलरी? नहीं झुमके
2: ना, पहले बचत,
1: पहले झुमके।
2: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
1: लेकिन झुमकों का क्या?
2: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: रसरंजन कार्यक्रम में श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं बाजीगर फिल्म का ये गीत, आशा भोसले और विनोद राठौर के स्वरों में।

बाजीगर फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 10 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं NCERT।

0: पतंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज जी ने। लिखते हैं,
2: पेड़ धरती के फेफड़े हैं, वे हवा को शुद्ध करते हैं और हमें नया जीवन देते हैं।
3: धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद के मासिक संस्करण का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है।
3: आप आगे लिखते हैं, कार्यक्रम में सीआईईटी एनसीईआरटी के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर भारती कौशिक और विमलेश जी की बातचीत प्रशंसा योग्य लगी। कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा पर सुनाई गई विस्तार पूर्वक जानकारी बेहद पसंद आई। ये जानकारी रिकॉर्ड करके परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को भी हमने सुनवाई
2: जी।
3: इस कार्यक्रम की सभी ने तारीफ की। समावेशी शिक्षा पर विस्तार पूर्वक जानकारी सुनवाने के लिए आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है
2: गांव ढाणी, कुतुबपुर, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, प्यारी बिटिया मीठी, अनाया गुर्जर और बेबी किरत ने। वो लिखते हैं,
3: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। आपका ये कार्यक्रम विविध जानकारी और मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा, भाषाई विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जून महीने के शुरुआती समय में उमंग प्रसारण का श्रोता संवाद कार्यक्रम एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया जिसने इस कार्यक्रम को अर्थपूर्ण बना दिया और एक प्रकार की नवीनता का संचार किया। सभी श्रोताओं को ये नवीन संस्करण अवश्य पसंद आया होगा।
3: आप आगे लिखते हैं, इस कार्यक्रम की परिचर्चा में आपने समावेशी शिक्षा जैसे अत्यंत प्रासंगिक असमकालीन विषय की ओर सभी श्रोता बंधुओं का ध्यान आकर्षित किया। प्रोफेसर भारती जी ने बड़ी सरलता से और विस्तार पूर्वक समावेशी शिक्षा का परिचय प्रस्तुत किया
2: जी।
3: अर्थ समझाया तथा समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा के बीच का अर्थ स्पष्ट किया। शिक्षा जगत में इन दिनों समावेशी शिक्षा की खूब चर्चा होती रहती है। उमंग कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में भी इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया। ये जानकर और कार्यक्रम सुनकर बहुत ही सकारात्मकता का अनुभव हुआ। आगे आप लिखते हैं,
2: श्रोता संवाद का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी के साथ जितने भी अंक प्रसारित किए गए हैं उन सभी ने श्रोताओं के मस्तिष्क पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। श्रोता संवाद हमारे और आपके बीच सक्रिय संवाद का एक विशेष सेतु है। आशा है कि उमंग प्रसारण में नवाचार, रचनात्मकता, आपसी संबंध और संवाद का ये क्रम चलता रहेगा।
3: आपको बहुत बहुत धन्यवाद योगेश ठाकुर जी, आपने बड़ी खूबसूरती से श्रोता संवाद कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपका धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है गोनियाना मंडी भटिंडा पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी का। लिखते हैं,
2: समावेशी शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। हमारी जानकारी भी बढ़ी और मैं ऐसे शिक्षाप्रद कार्यक्रम जरूर सुनता हूँ। आकाशवाणी भटिंडा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये प्रसारण हमारे लिए प्रस्तुत किया है।
3: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और आवासी परिवार के सभी सदस्य और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास। धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से बने रहिए आपके प्रिय शैक्षिक कार्यक्रम उमंग के साथ। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है?
2: इसका उत्तर है साथियों, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ठंडी होती हैं, लेकिन जब उनके बीच नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो गर्मी पैदा होती है।
3: हमारा दूसरा प्रश्न था, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी?
2: इसका उत्तर है साथियों, भीम बैठका की गुफाओं की खोज प्रसिद्ध पुरातत्वविद विष्णु वाकणकर जी ने की थी, जिसके लिए उन्हें नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
3: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कुटुंब सर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, इन गुफाओं की बनावट ऐसी होती है कि गुफाओं की दीवारें और छत ध्वनि तरंगों को परावर्तित या रिफ्लेक्ट करती हैं। गुफाएं गहरी हैं, इसलिए वहां बाहर का शोर भी लगभग नहीं के बराबर होता है, इसलिए वहां धीमी आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती है।
3: और अब हमारा अगला प्रश्न, हमने आपसे पूछा था बोर्रा गुफाओं की खोज किसने और कैसे की।
2: बोर्रा गुफाओं की खोज ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज द्वारा की गई थी।
3: जी, और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों?
2: सिजू गुफाओं में एक पैसेज को टूथ पैसेज कहते हैं क्योंकि वहां चट्टानों की बनावट मानव दांतों की श्रृंखला से मिलती जुलती है।
3: तो साथियों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है?
3: 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। साथ ही साथ CIET NCERT को इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना ना भूलिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है बुधनी गई है जंगल।
2: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा पेड़ पौधों के संरक्षण और पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: बहुत थक गया आज तो। बुधनी, अरे ओ बुधनी,
1: आई रे आई। आ गया बुधवा, ले आया लकड़ी।
2: इतनी सी चुब्बा कहाँ रह गया?
1: अम्मा अम्मा अम्मा देख कितने जामुन लाया हूँ जंगल से। इतना बड़ा पेड़ ढूंढा है मैंने आज जामुन का। कल से रोज जाऊंगा बापू के साथ जंगल, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं अम्मा। हाँ।
2: अरे चुप भी कर, क्या करूँ इतने सारे पेड़ों का। तेरा बापू तो एक भी पेड़ ना काट सकता। रोज यही जरी मरी सी सूखी टहनियाँ तोड़ लाता है बस।
0: फिर वही बात, अरे मैं क्यों काटूं पेड़ है? जब इतनी सारी लकड़ियों की टहनियाँ ऐसी मिल जाती है, काम तो चल जाता है ना।
2: काम चल जाता है, काम चल जाता है। हाँ नहीं तो, अरे ढेर लकड़ी लाओगे तो इतने सारे पैसे मिलेंगे बेचने से।
0: अच्छा,
2: कुछ कहना करिया, कुछ आड़े पकत के लिए कुछ समझता तो है ना। हाँ।
0: अरे भोली, जब तक जंगल है तब तक आड़ा बखत आएगा ही नहीं। ना लकड़ी की कमी, ना फल गंध की, बीमारी पड़ी तो जड़ी बूटी भी। रही गहना गरिया की बात, तो बुधनी ये जो तू जंगली फूल लगा लेती है ना कभी कभी, उसके सामने सच कहूं सारे गहना गरिया मात।
2: अब ना बहलती मैं तुम्हारी बातों से, कह देती हूँ। हाँ, या तो कल एक बड़ा सा पेड़ काट कर लाओ, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखो। हाँ,
0: अरे अरे रोने लगी। अरे सुन तो, अच्छा अच्छा सुन, आप चुप भी हो जा बुधनी, काट लाऊंगा एक पेड़ बड़ा सा। है तो ये पाप ही, हमारा ओझा भी यही कहता है कि पूरे विधि विधान के बाद ही काटो एक पेड़ और फिर लगाओ 10 पेड़, और पुरखों की भी यही रीत है। मगर तू कलह मत कर, मैं काटूंगा पेड़।
1: बापू दुख मत कर, कल हम पेड़ काटेंगे ही नहीं है? कोई बहाना बना देंगे, ठीक?
0: हाँ यही ठीक रहेगा। अरे तू तो बड़ा सयाना है रे चुब्बा।
2: क्या भूल मिलकर बातें कर रहे हो दोनों?
0: कुछ नहीं,
2: जरूर मुझे बुद्ध बनाने की बात होगी।
0: नहीं नहीं नहीं,
2: अब तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। अपने सामने कटवाऊंगी पेड़। अब तुम लोगों का कोई भरोसा है क्या?
0: नहीं नहीं नहीं, तू क्या करेगी जंगल में जाकर, हम काट लाएंगे ना एक अच्छा सा पेड़।
1: हाँ अम्मा, वहाँ ऐसे ऐसे भयानक जानवर होते हैं, ऐसे ऐसे जानवर होते हैं।
2: अरे चुप, जैसे मैं तो कभी जंगल गई ही नहीं, मैंने तो सोच लिया है मैं जंगल जाऊंगी ही। सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी करनी है, दिन भर का खाना बनाना है। अब चलो खाना खाकर जल्दी सो जाओ।

0: अरे चुब्बा चुब्बा क्या हुआ बेटा?
1: डर मत बच्चे, मैं यही हूँ तेरे पास।
0: अरे कोई डरावना सपना देखा क्या? क्या सपना देखा तूने?
2: मुझे डर लग रहा है अम्मा।
1: कोई डरावना सपना देखा होगा बच्चे? अरे क्या देखा तूने?
2: अम्मा अम्मा मैंने देखा कि हम जंगल में पेड़ काट रहे हैं और अम्मा पेड़ रोने लगा, मुझे मत काटो मत मारो, मुझे दर्द होता है, मेरी लकड़ी ले लो, पत्ते ले लो, फूल ले लो, फल ले लो, पर मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारा मीत हूँ माँ। माँ उसने ये कहा, उसने कहा माँ मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है अम्मा, और वो रोने लगा। अम्मा अम्मा जोर जोर से रोया, मगर हमने उसे काट ही दिया। वो चिल्लाया अम्मा, मैं भी चिल्लाया।
0: चुप्पा चुप्पा
1: सजा सजा बेटे सजा, डर मत, अरे वो तो सपना था। सजा सोचा बेटा, मैं तेरे पास ही तो लेटी हुई हूँ यहाँ है। सोचा बेटा सोचा सोचा, शाबाश, अच्छा बेटा है ना, चुप्पा तो सोएगा। सोचा सो गया, इसने तो मुझे डरा ही दिया। अरे कैसे कैसे सपने देखता है ये?
0: तो फिर कल पेड़ काटने नहीं जाना ना?
1: क्यों नहीं, बिल्कुल जाना है। जा जा सो जा, अरे वो तो सपना था, उससे क्या होता है। अरे सो जा, सुबह जल्दी उठना है।

0: चुब्बा, अरे ओ चुब्बा, अरे उठ बेटा, पुतवा उठो ना, भोर हो गई, मैं तैयारी करती हूँ चलने की।
1: अरे तो जाना ही पड़ेगा, तू मानेगी नहीं?
0: ना, मैं तो ना मानू, चल।
1: चल, तेरी यही हट है, तो चल, चल चुब्बा।
0: अरे कुल्हाड़ी तो ले लो, पेड़ के हाथों से काटोगे।
1: अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, आदत नहीं है ना।
0: आदत नहीं है, ये नियत ना है वो... चल चुब्बा, वो रस्सी उठा, लट्ठों को बांधना भी तो होगा ना।
2: अच्छा अम्मा।
0: अरे अब चलो भी।
1: चलो
2: चलो, चलो।

0: क्यों लटका रखा है बाप बेटे ने? पेड़ की लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे तुम्हारे लिए भी तो चीजें आएंगी अच्छी अच्छी।
1: अम्मा मुझे नहीं चाहिए अच्छी चीजें। हाँ
2: मुझे भी नहीं।
0: ठीक है तुम लोग मत लेना, सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं अपने लिए लाऊंगी बस। साड़ी लूंगी, गहना गरिया लूंगी, मैं तो साड़ी लूंगी, बढ़िया खाना खाऊंगी, मैं तो साड़ी लूंगी। अरे बाप रे, इस जंगल में शेर भी है क्या?
2: अरे शेर तो नहीं है, कोई बघेरा उघेरा होगा। अरे डर मत, ये कुल्हाड़ी है ना, वैसे भी इस तरफ आदमियों का आना जाना लगा रहता है, इससे जानवर इधर नहीं आते।
0: फिर भी
1: अम्मा तू भी चले वापस?
0: ना वापस तो फिर भी नहीं जाएंगे हम। हाँ
1: अम्मा क्या सोच रही है?
0: यही कि कौन सा पेड़ काटना ठीक रहेगा। क्यों बुधवा, ये जामुन कैसा रहेगा रे?
2: ये जामुन?
0: हाँ
2: चलो इसी को काट देते हैं।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा इसे नहीं, ये तो फलों से लदा है।
2: हाँ।
1: हर साल फल देता है, इसे मत काटो।
0: हाँ ये बात तो ठीक है, जामुन कहाँ से खाऊंगी? तो फिर फिर उस साल के पेड़ को काटते हैं चलो।
2: अरे रे क्या बात करती हो, वो तो अभी पूरा बढ़ा भी नहीं है, ये तो वैसे हुआ कि जैसे किसी को छुटपन में ही मरना पड़े।
0: अरे बात तो तुम्हारी सच है।
1: तो अम्मा ऐसा करते हैं, वो जो देवदार के बहुत सारे पेड़ है ना उनमें से एक को काट देते हैं।
0: अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। कितने सुंदर हैं ये पेड़, अरे उन्हें रहने दो। ये रोन का पेड़ कैसा रहेगा बुधवा?
2: ये
0: है भी काफी पुराना, फल भी नहीं है इस पर तो।
2: फूल तो हैं, फल भी आएंगे, अरे हजारों पक्षियों की भूख मिटाएंगे। नहीं नहीं नहीं नहीं ठीक नहीं रहेगा इसे काटना। चलो ठीक है काटना ही है तो ये नीम का पेड़ काट देते हैं।
0: अरे पागल हुआ है, ये नीम का पेड़ तो दवा दारू के काम आता है, कोई बीमारी नहीं जिसका इसके पास इलाज ना हो। हाँ
2: अच्छा तब तो अरार का पेड़ भी छोड़ना पड़ेगा है?
0: क्यों?
2: इसका भी नीम वाला हाल है, बल्कि ये तो सुना है सबकी किस्मत भी जानता है, इसे कौन काटे।
1: चलो आगे देखते हैं, कोई ना कोई बेकार पेड़ तो मिल ही जाएगा, ऐसा क्या है।
0: हाँ हाँ चलो चलो आगे चलकर देखते हैं। अब चलो
3: देखो ये पेड़
0: देख लो।
1: अम्मा अम्मा वो देखो ओक का पेड़, और वहीं बबूल भी है। चलो अम्मा काटे
0: चलो, इधर से निकल कर आओ।
1: अच्छा
0: आई, क्या हुआ चुप्पा?
2: क्या हुआ
1: अम्मा? अम्मा कांटा चुप गया। आई
0: अरे दिखा दो
1: अम्मा, लगता है पेड़ कह रहे हैं हमें मत काटो, हमें मत काटो। बापू इन्हें मत काटना, देखो ये रो रहे हैं।
2: ठीक है नहीं काटेंगे।
1: देखा अम्मा कैसे लहलाने लगे, जान बचने से खुश हो रहे होंगे है ना?
2: हाँ बेटा ये देखो, ये चीड़, देवदार, ओक, खजूर और तार।
0: हाँ।
2: ये तो है ही सदाबहार, इन्हें काटने से क्या फायदा?
0: अरे नुकसान भी क्या है?
2: बहुत नुकसान है, हमारे पुरखे कहते थे इन्हीं की बदौलत हवा पानी साफ रहता है, बरखा होती है, बाढ़ रुकती है। सोचो हमारी तरह सभी लोग चल दें पेड़ काटने तो कितना नुकसान हो जाए।
0: रहने दो अपनी बातें, कोई और पेड़ ढूंढो। ये कौन सा पेड़ है, ना फूल ना फल?
2: क्या पता, मुझे सबके नाम थोड़ी मालूम है, मगर मैं तो इसे नहीं काटूंगा।
0: क्यों?
1: देखो ना माँ, ये पेड़ हजारों लाखों कीड़ों का घर है, उन्हें दूध पिला रहा है।
0: और वो वाला, उसमें तो ना कीड़े दूध पी रहे हैं, ना फल है, ना फूल है, कुछ भी नहीं है उसमें, और ना ही उससे कोई लाभ है, उसे तो काटो कम से कम।
1: नहीं नहीं नहीं, नहीं अम्मा उसे छोड़ दो। देखो अम्मा इस पेड़ की घनी पत्तियों में सैकड़ों पंछियों का घोंसला है।
2: हाँ।
1: पेड़ कटा तो वो सब बेघर हो जाएंगे। सोचो माँ अगर हमारा कोई घर तोड़ दे तो हमें कैसा लगेगा?
2: हाँ बिल्कुल।
0: सचमुच इस पर तो कोयल भी रह रही है, बुधवा रहने दे इसको भी।
2: अच्छा।
0: मुझे कोयल का गाना बहुत अच्छा लगता है, तू रहने दे इस पेड़ को तो।
2: ठीक है। अरे सुन कोयल खुश होकर तुझे धन्यवाद दे रही है बुधनी।
1: अम्मा, जिन जिन पेड़ों को तुमने बचा लिया वो सभी तुम्हें दुआएं दे रहे होंगे।
0: मुझे बनाओ मत, मैंने अभी बदला नहीं है अपना इरादा। चलो ढूंढो काटने लायक पेड़। हाँ। लो, इसमें हंसने की क्या बात है, चलो ढूंढो ना।
2: अरे अब कहाँ से ढूंढे, जंगल के सारे पेड़ों को तो तूने बख्श दिया, अब किसे काटे।
0: क्या, सारे पेड़ों को बख्श दिया?
2: और क्या।
0: ना जी ना, अभी तो हजारों पेड़ होंगे इस जंगल में।
2: हाँ है तो सही, मगर वो सब भी इन्हीं के भाई बंद है, जो बात इनके साथ वही उनके साथ।
1: जीवा जीवा जी, अब तो पेड़ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा।
0: अरे चुप।
2: क्या हुआ?
0: अरे चुप्पा, पेड़ अब नहीं कटेगा, तो यही बात थी ना। तुम दोनों शाम को फुसफुसा कर यही बातें कर रहे थे ना, कि अम्मा को जंगल में बहला लेंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। है,
2: लेकिन अम्मा,
1: तू भी तो मान गई ना कि कोई भी पेड़ कटने लायक नहीं है। अब तू ही बता किसे काटे।
0: रहने दे रहने दे, तुम दोनों बड़े सयाने हो, मुझे हमेशा ऐसे ही बहला देते हो। मैं जिस भी पेड़ पर हाथ रखूंगी तुम उसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बनाओगे कि मुझे को दया आ जाएगी। हाय रे, मेरी इच्छाएं क्या कभी पूरी नहीं होंगी।
2: होंगी होंगी, जरूर होंगी, मगर ऐसे नहीं।
0: फिर कैसे?
2: चल घर, चलते चलते बताता हूँ कि कैसे।
0: चल।
2: सुन, हम सब मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाएंगे अपने घर के आगे, फिर हमें फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, बुलबुलें आएंगी, कोयल गाएंगी, गीत गाएंगी, महुआ सींचेंगे, हम फिर मेले जाएंगे, खूब काम करेंगे, हम तीनों मिलजुल कर ताल बनाएंगे, मछली पालेंगे, मछली, फल, सब्जी, महुआ, कटहल बेचेंगे। हाँ, पैसे पाएंगे, बुधनी को देंगे, बुधनी खुश होगी, कलह नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, झगड़ेगी भी नहीं। क्यों बुधनी, तब भी झगड़ेगी क्या?
1: क्यों अम्मा, तब भी झगड़ेगी?
2: बोल ना।
0: नहीं रे नहीं, मुझे क्या शौक है झगड़ने का। चल।

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम अर्जुन का निशाना।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए।
2: बात बहुत पहले की है। हमारे देश में एक राजा थे पांडु। पांडु के पांच पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते हैं। युधिष्ठिर इनमें सब में बड़े थे। युधिष्ठिर से छोटे थे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। भीम गदा चलाने में बहुत कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। गुरु द्रोणाचार्य समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने पेड़ पर मिट्टी की एक चिड़िया टांग दी। फिर राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने बारी बारी से अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा,
3: उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है?
2: किसी ने कहा,
4: गुरुजी, मुझे राजकुमार, पेड़ और चिड़िया सब कुछ दिखाई दे रहा है।
2: किसी ने कहा,
5: मुझे पेड़ और चिड़िया दिखाई दे रही है।
2: किसी ने कहा,
6: मुझे चिड़िया के पंख दिखाई दे रहे हैं।
2: अर्जुन की बारी आने पर द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा,
6: गुरुजी, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है।
2: अब द्रोणाचार्य ने बारी बारी से सभी को बाण चलाने का आदेश दिया। अर्जुन का निशाना तो ठीक आंख पर लगा, किंतु और भाइयों का निशाना चूक गया। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बताया,
3: क्या तुम लोग समझ गए कि अर्जुन का तीर निशाने पर क्यों लगा? जिसे केवल लक्ष्य दिखाई दे वही सफल होता है। तुम लोगों को लक्ष्य के साथ साथ और बहुत सी चीजें भी दिखाई दे रही थीं, इसलिए तुम्हारा ध्यान बट गया और निशाना ठीक नहीं बैठा। अर्जुन का ध्यान केवल चिड़िया की आंख पर था, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल ठीक बैठा और बाण ठीक चिड़िया की आंख पर लगा।
0: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम अर्जुन का निशाना, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे NCERT FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का चयभाषा केंद्र है।

श्रोताओं, दिन के 10:30 होने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: स्टूडियो में
1: हाँ,
0: और मैं रेनू और सुनीता आपका स्वागत करते हैं। आप सभी को हमारा
1: नमस्कार
0: नमस्कार
1: जोहार। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सुविचार से।
0: बिल्कुल अच्छी बात है, जब तक हम ना करें तब तक कैसे पता चलेगा कि हम आकाशवाणी से अच्छी अच्छी बातों का प्रसारण करते हैं।
1: अरे वाह सुनीता, देखो जीवन में इतना व्यस्त रहना चाहिए ना कि चिंता नफरत दुख डर के समय ही न बचे।
0: हाँ, और जीवन में ना जानते हैं रेनू जी, जब खाली होता है ना समय इंसान के जीवन में, तब व्यक्ति ज्यादा दुखी होता है। अगर आपके पास काम बहुत सारा है और इन केस मान लीजिए आपके पास कभी काम नहीं है, तो कोशिश करिए उस बीच में पढ़ने की और अपना जो शौक है आपको ना उसे पूरा करने का। अगर ये सारी चीजें हम करने लगे और अपने आप को व्यस्त रखे ना, तो समझिए दुख कभी नहीं होगा।
1: बिल्कुल,
0: और खुश रहने का एक ही मंत्र होता है, पता है क्या? बताइए।
1: अरे लोगों से बातचीत करते रहिए, मिलते जुलते रहिए, अपनी सोच को साफ रखिए, कोई क्या बोल रहा है उसको अपने दिल पर मत रखिए।
0: बिल्कुल है। क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत तरह के लोग आपको जीवन में मिलेंगे, कुछ अच्छी बातें करेंगे, कुछ शायद बुरी बातें भी कर दे जो आपको बुरी लगे, तो ऐसी बातों को लोड लेने का नहीं है, उसको मत अपने जीवन से किनारे रखिए। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और साथ ही साथ हमारा कार्यक्रम सुनिए, और फिलहाल सुनिए ये गीत।

0: रेनू जी गाना हमने सुन लिया, अब बातें कर लेते हैं मौसम। अभी आप आ रही थी तो बाहर कैसा मौसम ये बताइए।
1: खुशनुमा मौसम था,
0: खुशनुमा
1: मतलब कल से मौसम थोड़ा बदल गया है।
0: कल से मौसम थोड़ा बदल गया है और अब अच्छी बात यह है कि राज्य में ना कल से 16 जिलों में भारी बारिश के आसार की संभावना भी जताई
1: होना भी चाहिए,
0: बहुत जरूरी है। लेकिन वैसे भी इस बार बारिश कम हो रही है, तो कैसा रहेगा मौसम हमारे आसपास ये बताएं अपने श्रोताओं को।
1: देखिए मौसम में लगातार उतार चढ़ाव के कारण मौसम की जो बारिश है ना वो अच्छे संकेत दे रहे हैं।
0: अच्छी बात है।
1: झारखंड में मंगलवार से आसमान में घने बादल छाएंगे और लगभग सभी जिलों के बारिश होने की पूर्वानुमान जताया जा रहा है।
0: और 30 जून और 1 जुलाई को राज्य में आधे से अधिक जिलों में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम केंद्र के अनुसार 16 जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने के आसार हैं। सोमवार से आंधी गरज के साथ वातावरण में बदलाव देखना शुरू हो जाएगा।
1: और दूसरी ओर पलामू, चतरा और गढ़वा को छोड़कर राज्य के अधिकांश जिलों में आंधी चलने के साथ कहीं कहीं वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है।
0: देखिए वज्रपात का अलर्ट जब जारी किया जाता है ना, तो श्रोताओं को ये जरूर समझना चाहिए कि इससे बहुत सारी जाने जाती हैं। तो अगर आपको अलर्ट में मिल रहा है कि वज्रपात की संभावना आपके आसपास है, तो उससे बचने की कोशिश करिए। और जिस समय ऐसी परिस्थितियां बने, वज्रपात हो या बिजली कड़के आसमान में, तो उस दौरान जो भी सावधानियां हैं उसे जरूर बरतें।
1: जैसे
0: और मौसम
1: पेड़ के नीचे
0: ना रहे,
1: खेत खलिहान में काम कर रहे हैं तो
0: खुले में ना रहे,
1: लेट जाएं।
0: और अगर बीच में अगर आप हैं ही तो जमीन पे लेट जाएं। और मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बारिश होने से झारखंड राज्य में मॉनसून कुछ हद तक मजबूत होगा। हालांकि झारखंड में मॉनसून की स्थिति अभी भी कमजोर बनी हुई है, जिससे खेती के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन कई जगहों पर भारी बारिश की भी चेतावनी है।
1: हाँ, ये तो जैसे संताल परगना प्रमंडल के सभी 6 जिलों समेत गिरिडीह और धनबाद में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। और बुधवार को रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और संताल के सभी जिलों में कहीं कहीं बारिश होने की भी चेतावनी जारी की गई है।
0: और बात कर ले बीते 24 घंटों में रांची समेत राज्य के अधिकांश जगहों पर मौसम साफ रहा है। और रविवार की दोपहर में रांची का मौसम बदला, आसमान में बादल छाए और अभी भी आसमान में हल्के बादल छाए हैं, बादलों की आंख मिचौली है। और रांची के मौसम वैज्ञानिक की माने तो मौसम राज्य में अगले 4 दिनों के दौरान मानसून के और सक्रिय होने के संकेत मिले हैं, ऐसे में अच्छी बारिश की उम्मीद है। वहीं सोमवार मंगल को रांची समेत अधिकांश जिलों में आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। तो ये मौसम जो है ना अभी बहुत घालमेल है, कहीं कुछ है, लेकिन मानसून है तो इन सारी चीजों का सामना करना
1: और जो भी रहे हम लोग को तो मौसम के साथ साथ गीत संगीत का भी आनंद लेते रहना है।
0: हम लोग जब बातें करते हैं ना नॉन स्टॉप बोलते रहते हैं, तो ऐसे में श्रोताओं कहीं अपना चैनल ना बदल दे, इससे पहले हमने जल्दी से एक गीत सुनवाए।

रेनू जी, बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपने सुनाया है, मौसम की बात की है, और आज हम आज के दिन की बात ना करें तो ये तो बिल्कुल सही बात नहीं है। तो आज पता है, हम अपने श्रोताओं को बताएंगे कि आज इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स है, यानी अंतर्राष्ट्रीय

0: उष्णकटिबंधीय दिवस है।
1: हाँ, ये हर साल 29 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य उष्णकटिबंधीय देशों के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों पर प्रकाश डालना और इन क्षेत्रों की असाधारण जैव विविधता और सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाना है।
0: और अपने श्रोताओं को हम ये भी बताएं कि इस दिवस से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें भी हैं कि शुरुआत इसकी हुई संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 जून 2016 को एक प्रस्ताव पारित करके 29 जून को इस दिवस के रूप में घोषित किया था। और इसका ऐतिहासिक महत्व इसलिए भी है कि यह तारीख 2014 में स्टेट ऑफ द ट्रॉपिक्स रिपोर्ट के पहले प्रकाशन की वर्षगांठ का प्रतीक है।
1: उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का महत्व, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का जो है ना, पृथ्वी की कुल सतह का कुल 40% हिस्सा शामिल है। यहाँ दुनिया का लगभग 80% जैव विविधता और 95% से अधिक मैंग्रोव प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
0: मैंग्रोव जो की जो प्रजातियां हैं ना, ये बहुत जगहों में विश्व में पाई जाती हैं और ये पर्यावरण के लिए भी जरूरी है। और जैव विविधता की बात अगर हम करें ना, तो आज तो बहुत ही कुछ चीजें बदल गई हैं। शायद इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए और लोगों को जागरूक करने के लिए कि हर चीज का अपना महत्व है, आज का यह दिन हम मनाते हैं और जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स। तो इतनी जो जानकारी थी हमारे पास, हमने साझा करने की कोशिश की है। फिलहाल एक गीत सुनवा दीजिए।

0: सुनीता, अब इतिहास से थोड़ी बातें हो जाए कि आज क्या घटनाएं घटी।
1: इतिहास में बातें हम करेंगे, लेकिन एक खास दिन और है, आप भूल जा रहे हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले याद कराया था, पता है आज क्या
0: है?
1: नेशनल स्टेटिक्स डे।
0: अरे हाँ, तो याद आया, ये 29 दिन का ना, ये भारतीय इतिहास में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में जो दर्ज है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और यह दिवस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महाल नोविस की जयंती के उपलक्ष में मनाया जाता है, जिन्हें हम भारतीय सांख्यिकी के जनक के रूप में जानते हैं।
0: हाँ, इसका उद्देश्य भी यही है कि सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति निर्धारण में सांख्यिकी के महत्व के बारे में जन जागरूकता फैलाना।
1: बिल्कुल, स्टेटिक्स आज हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है रेणु जी। बिना इसके कोई गणना नहीं होती, बिना इसके कोई काम नहीं होता, बिना इसके कोई मैथ नहीं बनता, तो बहुत सारी चीजें हैं। और वैसे भी भारत हमारा जो देश है ना, तो हर चीज के लिए जाना जाता है। और स्टेटिक्स की बात हो रही है तो हम अपने देश
0: और उनका ये जो है ना, वो जन्मदिन के उपलक्ष्य पे ये मनाया जाता है, जो इनका जन्म जो हुआ था 29 जनवरी 1893 में हुआ था। और ये जो प्रोफेसर पीसी महालनोविस ने 1931 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता की स्थापना की थी, और इसके अलावा भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल महालनोविस मॉडल उन्हीं के नाम पर आधारित है।
1: तो चलिए, ये भी अच्छी बात है हमारे
0: हमारे भारत ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत ने दिग्गज महापुरुषों को
1: जन्म भी दिया, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ बहुत सारी ऐसे खोज किए, आविष्कार किए, जो मील का पत्थर आज भी साबित है। और अगर जीरो की बात कर ले तो जीरो भी तो भारत की देन है ना। तो चलिए इसी बात पे एक गाना सुन लेते हैं।

0: और बात कर रहे हैं आज के दिन की, तो आज के इतिहास पे भी नजर डालना जरूरी है रेणु जी।
1: हाँ,
0: तो चलिए नजर डालते हैं आज कौन कौन सी बातें हुई हैं इतिहास के पन्नों में।
1: तो 2005 में भारत और अमेरिका में समग्र 10 वर्षीय समझौता हुआ था,
0: और 2008 में आज ही के दिन पर्यावरण से जुड़ी गैर सरकारी संस्था जनहित फाउंडेशन को पर्यावरण क्षेत्र का प्रसिद्ध पुरस्कार आईकॉम पुरस्कार प्रदान किया गया था।
1: हाँ, 2014 में साइना नेहवाल ने ऑस्ट्रेलियन सुपर सीरीज जीती थी।
0: और 2011 में दुनिया के प्रमुख विकसित और विकासशील देशों में आज की भागदौड़ और आपाधापी से होने वाले तनाव के बारे में किए गए भारतीय महिलाएं के सर्वेक्षण के अनुसार भारत की सर्वाधिक महिलाएं तनाव में रहती हैं, जो कि सही में रहती हैं।
1: हाँ,
0: बहुत रहता है, लेकिन फिर भी वो मस्त रहती है अपने काम में। दुनिया भर में महिलाएं खुद को बेहतर साबित कर सकती हैं, और इस तरह आज का दिन इतिहास में दर्ज है उनके नाम पे।
1: हाँ, 2011 में मानव तस्करी की निगरानी सूची वॉच लिस्ट से भारत को बाहर कर दिया गया था। 6 साल के अंतराल के बाद अमेरिका ने भारत को

0: मानव तस्करी की निगरानी सूची से बाहर कर दिया।
1: चलिए बात कर लेते हैं उनके जो आज हमारे बीच नहीं रहे, आज यानी आज जिनका निधन हुआ था। तो आज ही के दिन 2016 में के.जे. सुब्रमण्यम भारतीय मूर्तिकार और भित्ति चित्रकार थे, उनका निधन हुआ था।
0: और 1988 में गौरी देवी का निधन हुआ, जो राजस्थान की प्रसिद्ध गायिका थी।
1: माइकल मधुसूदन दत्त बंगला भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, उनका निधन भी आज के दिन 1873 में हुआ था।
0: 1966 ईस्वी में दामोदर धर्मानंद कोसाम्बी भारत के प्रसिद्ध विद्वान, भाषा वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे,
1: उनका निधन भी आज के दिन हुआ था। हाँ। और आज ही के दिन निधन हुआ भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ एवं प्रथम रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह का 1961 में।
0: और 1931 ईस्वी में मेहता लज्जाराम का निधन हुआ, जो भारतीय साहित्यकार और पत्रकार थे।
1: और बात कर लेते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है। 1901 में अमल कुमार सरकार भारत के भूतपूर्व 8वें मुख्य न्यायाधीश थे, उनका जन्म हुआ था।
0: 1861 ईस्वी में देवकी नंदन खत्री, जो हिंदी के प्रथम तिलिस्मी लेखक थे, उनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ था।
1: और आज ही के दिन 1893 में पीसी महालनोबिस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद थे, उनका भी जन्मदिन है।
0: और ये जब सर आशुतोष मुखर्जी की बात हो रही है, उनका जन्म जो है वो ख्याति प्राप्त बैरिस्टर और शिक्षाविद थे। ये बंगाल के शेर कहे जाने वाले सर आशुतोष मुखर्जी बैरिस्टर के साथ गणितज्ञ और शिक्षाविद भी थे, जैसा आपने कहा। और आज के दिन राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का जन्म 1901 ईस्वी में हुआ था, जो काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 ईस्वी के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे।
1: तो बात कर ले अगर हम क्रांतिकारियों की, तो बहुत ही हमारे देश में इतने सारे क्रांतिकारी हैं जिनके ही बूते आज हम आजादी के हवा में सांस ले रहे हैं। तो ये हो गई आज इतिहास के पन्नों पर नजर। और फिलहाल अब
0: जिसके जो तकदीर में है
1: वही होगा और वही होता है। प्रयास हम करते हैं कि हम अपनी कोशिश करते हैं कि जो भी करें अच्छा करें और उसका परिणाम भी
0: आज
1: अच्छा
0: का भी कोई इतिहास बन जाए।
1: हाँ, आज का दिन भी हम और आप कल मिले थे, ये भी इतिहास हो जाएगा। फिलहाल अपने श्रोताओं को गाना सुनवाते हैं।

0: रेनु जी,
1: हाँ
0: बातें कर रहे हैं जोहार रांची में बहुत सारी, और अपने झारखंड की बात ना करें क्यों, जरूरी जानकारी अपने श्रोताओं को ना दें तो इसका ये कार्यक्रम बेमानी हो जाएगा। हाँ। तो हम अपने श्रोताओं को बताएं, सबको बताएं कि एसआईआर का काम चल रहा है। अब झारखंड में कल से यानी आज से 29 जुलाई तक एसआईआर पर काम शुरू हो रहा है।
1: हाँ, और जो है ये 29 जुलाई तक होने वाले एसआईआर में बीएलओ घर घर जाकर मैपिंग का कार्य करेंगे। दो मतलब इतने करोड़ से
0: 2.6 करोड़ यानी 2.64 करोड़ जो मतदाता हैं हमारे, तो
1: उनमें से 1.63 करोड़ मतदाताओं का किसी प्रकार का वेरिफिकेशन नहीं होगा और ना ही उन्हें कोई दस्तावेज देने होंगे।
0: अच्छा, मतलब इनका नाम ना 2003 के लिस्ट में है ना, उनके लिए उतना प्रॉब्लम नहीं है।
1: अच्छा,
0: लेकिन अभी उसके बाद जो लिस्ट में जुड़े हैं उनके लिए उनको कुछ कागज देने पड़ेंगे।
1: अच्छा,
0: और अगर एक से अधिक वोटर कार्ड वाले हैं जिनका निधन हो गया है, जो दूसरी जगह पर चले गए हों, जिन्होंने मैपिंग नहीं कराया किसी वजह से, जो गैर भारतीय नागरिक या भारतीय नागरिकता त्याग चुके हैं, उनका नाम एसआईआर से हटा दिया जाएगा और एक महीने तक इन्यूमेशन फेज के दौरान बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं

0: आंशिक रूप से भरे हुए इन्मुनेशन फॉर्म बांटेंगे और मतदाताओं के वर्तमान रंगीन फोटो के साथ उनकी ओर से सिग्नेचर किया हुआ भी फॉर्म उन्हें संकलित करना है।
1: तो एक बार तिथियां बता देते हैं कि कौन कौन सा है। बीएलओ का घर घर का दौरा 30 जून से 29 जुलाई तक चलेगा। प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 5 अगस्त को होगा और दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक होगी और नोटिस और सत्यापन की अवधि 5 अगस्त से 3 अक्टूबर तक होगी। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 अक्टूबर 2026 को होगा।
0: तो इतनी जो जानकारी है इसलिए दी जा रही है कि एसआईआर में आपका नाम ना कटे अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं तो ये जरूर कराएं, ये हमारे लिए बेहद
1: जरूरी बातें हैं,
0: दस्तावेज होगा। बात झारखंड के लिए कर रहे हैं तो अपने श्रोताओं को बताएं कि खेल के लिए झारखंड को पता है 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI की दिल्ली में बीते रात शनिवार को हुई वार्षिक आम बैठक में झारखंड को 2 सम्मान मिले हैं। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को वर्ष 2025-26 के दौरान राष्ट्रीय स्कूली खेलों के सफल आयोजन और राष्ट्रीय स्कूली खिलाड़ियों के विकास में योगदान के लिए सम्मान दिया गया है।
1: विभाग का पहला सम्मान सराहना पुरस्कार के रूप में प्रदान किया गया। ये सम्मान भारतीय स्कूली टीमों के राष्ट्रीय चयन ट्रायल और कोचिंग कैंपों के उत्कृष्ट आयोजन, प्रभावी समन्वय और युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए दिया गया। और दूसरा सम्मान जो है
0: 69वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल के सर्वश्रेष्ठ आयोजक के लिए द्वितीय स्थान से सम्मानित किया गया है। झारखंड की ओर से राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीर सेन ए सोरेंग और खेल कोषांग के चंद्रदेव सिंह ने सम्मान लिया और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारे राज्य को 2 पुरस्कार मिले हैं। तो ये खुशी की बात है और इसी खुशी की बात पे शाबाशियां हम
1: बनती है
0: झारखंड के लिए तो कर ही सकते हैं।

0: वेणु जी, पता है आज बहुत खास दिन है।
1: हाँ, आज जगन्नाथ जी ना का एकांत वास है।
0: स्नान पर्व है जिसे देव स्नान पूर्णिमा भी कहा जाता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को यह देव स्नान पूर्णिमा मनाया जाता है। यह महाप्रभु जगन्नाथ के प्राकट्य दिवस के रूप में भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आपने बताया कि उन्हें स्नान कराया जाता है और 108 कलशों के पवित्र जल से उन्हें स्नान कराया जाता है।
1: और इतने कलश के बाद ना उनको इतना स्नान किया जाता है ना कि वो बीमार पड़ जाते हैं।
0: हालांकि जो स्नान किया जाता है ना,
1: उसके कुछ परंपराएं
0: हैं और बहुत सारे सुगंधित जड़ी बूटियों से ही द्रव युक्त से उन्हें स्नान कराया जाता है। लेकिन फिर भी इतना नहाने के बाद तो कोई भी इंसान बीमार हो सकता है। तो भगवान आज से थोड़े बीमार हो जाते हैं और एकांतवास में 15 दिनों के लिए चले जाते हैं, है ना।
1: हाँ, आज के बाद फिर ये इस पावन स्नान के बाद भगवान को बुखार आने की मान्यता है। इसके पश्चात 15 दिनों के बाद अनवसर काल में चले जाते हैं, जहाँ से एकांत में विश्राम करते हैं और सामान्य भक्तों को उनके दर्शन नहीं होते।
0: और उसके बाद जब रथ यात्रा का प्रारंभ होगा, जो कि पूरा वर्ल्ड फेमस रथ यात्रा है, उस समय फिर भगवान लोगों के बीच आएंगे। अभी वो एकांतवास में हैं, तो ऐसे एकांतवास में बस यही हम कर सकते हैं, उनका नाम जप कर सकते हैं। और वो सबके आराध्य हैं, उनके भगवान विष्णु के ही कई रूप है, भगवान कृष्ण के ही कई रूप है। तो चलिए हम भी नाम जप कर लेते हैं भगवान, क्योंकि आज एकांतवास में है और वो मतलब थोड़े बीमार भी हैं, सर्दी खांसी भी हो गई। वैसे सर्दी खांसी की बात बताए ना,
1: ये मौसम
0: से सब लोगों को, बहुत लोगों को आज मैंने सुना है कि उनकी तबीयत अचानक से
1: खराब हो गई। मौसम भी ऐसा ही चल रहा है ना, कि जब हमारे पालन करता सृष्टिकर्ता सब जो
0: बीमार हो रहे हैं, तो हम कौन सी बड़ी चीज है, हम भी बीमार हो सकते हैं। लेकिन बीमार मत होइए, थोड़ा ख्याल रखिए और फिर
1: जब तप नाम करते रहिए,
0: नाम जप करिए। और ये जो भी 15 दिन भगवान एकांतवास में है, तो उन्हें हम स्मरण करें। जरूरी नहीं है कि हम सामने जाकर ही उनका दर्शन करें, हम मन से भी स्मरण,
1: बस नारायण नारायण
0: बिल्कुल। चलिए,

0: रेनू जी देखिए, बातें करते कार्यक्रम करते गाना सुनाते हम अब अंतिम पड़ाव पे हैं। और जैसा कि हमने कहा कि आज से भगवान जी भी बीमार हो गए हैं, यानी भगवान बीमार हो सकते हैं तो हम तो इंसान है, कभी भी बीमार हो सकते हैं। और मौसम बदल रहा है, मॉनसून ने दस्तक दे दी है, तो ऐसे में हमें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी है,
1: खासकर भोजन पर।
0: हाँ बिल्कुल,
1: बासी खाना को तो एकदम दूर ही कर दें,
0: अभी से तो बिल्कुल एकदम ना कर देना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में ना बैक्टीरिया ज्यादा
1: तो लोगों का ये तो अधिकांश देखा जाता है ना सुनीता, कि अधिकांश लोग थोड़ा भी ज्यादा बच गया तो फ्रिज में रख दिए, फिर उसको गर्म करके फिर खा लिए, तो वो शरीर के लिए स्वास्थ्य के लिए नुकसान।
0: बिल्कुल, और खाने को बार बार गर्म करने से ना उसकी पौष्टिकता
1: भी खत्म होती है, तो जितना मन हो उतना मतलब बनाया जाए। तो
0: बिल्कुल, जब हम फ्रेश बनाते ही है खाना तो उस हिसाब से बनाए कि खाना बचे ना, और बच भी जाता है तो थोड़ा बहुत एक बार चल सकता है।
1: हाँ, सुबह का शाम खा ले,
0: लेकिन उसके बाद उसको 3 दिन तक खाते रहना ये बहुत गलत बात है। और साथ ही साथ अभी जो बारिश शुरू हो गए ना, तो फल सब्जियां ना उसे भी बहुत अच्छे से धो के खाना पड़ेगा।
1: हाँ, अभी तो सीजन फल कितना अच्छा है, जामुन है,
0: आम है और जामुन जरूर खाना चाहिए। ऐसे एक बार मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, डॉक्टर ने कहा कि जामुन जब तक मिले ना तब तक खाइए। हाँ। जामुन की तासीर बहुत अच्छी होती है, और गलती से अगर आपके खाने में कभी बाल आपके पेट में अगर चला गया है ना, तो कुछ उसे नहीं निकाल सकता, लेकिन अगर लगातार आप जामुन खाती है ना तो बाल उससे गल जाते हैं।
1: अरे वाह, तो बहुत अच्छी जानकारी दे रही है भाई, तो हमारे श्रोता भी इससे लाभान्वित होंगे।
0: हाँ, बिल्कुल, तो जामुन जरूर खाइए, और आम भी बहुत मिल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत आम खाना है, आम हिसाब से खाइए, और कोशिश करिए ना आम या तो सुबह या दिन में खाए,
1: क्योंकि ज्यादा अच्छा सुबह ही रहता है,
0: और दिन में भी
1: 12 बजे के पहले तक।
0: रात में जब हम आम खाते हैं तो मेटाबॉलिज्म जो है ना वो कम होता है, रात में
1: भारी हो जाता है,
0: शुगर बढ़ने की संभावना रहती है, तो कोशिश करिए कि आम दिन में खाए।
1: हाँ, शुगर बोली तो इस पर ख्याल आया कि हाँ जामुन से वो भी कंट्रोल में रहता है,
0: जामुन से वो भी कंट्रोल में होता है, इसीलिए मैंने कहा ना कि जामुन अमृत फल है, अभी इस सीजन में जब तक मिले आप जरूर खाइए, साथ ही अभी जो फल सब्जियां आ रही हैं उसको बेहद अच्छे से धो कर खाइए, और नाशपाती भी अभी सीजन में आ गया है, जिसे हम जिसमें सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं,
1: ज्यादा फाइबर भी है उसमें,
0: तो जरूर
1: खाइए, से पेट के लिए भी काफी अच्छा।
0: खान पान में अगर आप सही रहते हैं ना तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी, और साथ ही आधा घंटा या 15 मिनट एक्सरसाइज जरूर करिए।
1: हाँ, और पानी की मात्रा बढ़ाते रहिए,
0: पानी अच्छे से पीजिए, और आप पानी उबाल कर पीना शुरू कीजिए, फिल्टर अगर है तब तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं है तो पानी उबाल कर शुद्ध पानी पिए, अपने आप को स्वस्थ रखें, खुश रहें, और मस्त रहे अपने जीवन में। और देखते देखते घड़ी हमें जाने का इशारा कर रही है, तो अपने श्रोताओं से हम इस गीत के साथ ही विदा लेंगे और कहेंगे
1: नमस्कार, जोहार।

हम आकाशवाणी रांची से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। शुरुआत करते हैं फिल्म लिबास के इस गीत से। लता मंगेशकर की आवाज है।

कार्यक्रम का अगला गाना आप श्रोताओं के नाम आप हैं रामगढ़ से विजया अमन प्रतिमा शैलेश गुड़िया खुशी और घर के सारे सदस्य पटना से अर्चित श्वेता मनीष सुनीता उमंग अटल गगन मगन और घर के सारे सदस्य अहमदाबाद से आभा और उनके सारे दोस्त उनके दोस्तों में हैं सरोज मनीष साहिल ऋषीन और लोकेश चेपाकला बड़कागांव से बाबूलाल ठाकुर सबिया ठाकुर मंजू ठाकुर विकास आशा देवी अनुराधा रुक्मणी प्रियंका दीपिका जितेश और आदर्श आप सबके पसंद से सुनते हैं फिल्म मौसम से ये गाना लता मंगेशकर की आवाज है धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने

फरमाइशी गीतों का अगला गाना आप श्रोताओं का नाम निवारणपुर आश्रम रांची से जमीला खातून, अंजुम गुड्डू मुख्तार मोहम्मद मोइन, बड़का काना से अंजुम जमाल टिंकू मोहम्मद इकबाल सहनाज, लोहाडी नामकुम से कृष्ण कुमार राजकुमार भुवनेश्वर सुमित बजरंगी अरविंद नकुल अनिल संतोष और सभी सदस्य, ग्राम और मांझी से ललित ठाकुर अशोक पांडे अनिल कुमार ललन ठाकुर मोहन वर्मा सीताराम गोपी और जगेश्वर सिंह, आप सबके पसंद से सुनते हैं फिल्म कहो ना प्यार है से ये गाना, आवाजें उदित नारायण और अलका याग्निक की है, शब्दों में पिरोया है विजय अकीला ने, संगीत पर माफ कीजिएगा शब्दों में पिरोया है इब्राहिम अश्क ने,

कार्यक्रम का अगला गाना आप श्रोताओं के नाम महादेव घाट अमलेश्वर से डुमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, रक्षनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, ददरिंगी से भागवत वर्मा। आप सबकी पसंद से सुनते हैं फिल्म जोश से ये गाना। अभिजीत की आवाज है। इस गीत को लिखा समीर ने, संगीतबद्ध किया अनु मलिक ने।

कार्यक्रम का आखिरी गाना आप श्रोताओं के नाम जतुका किशनपुर से आलम दिलकश शवाना नाज रिजवान राही इमरान राजा आलम शेख और चांदनी नाज नरकोपी बाजार से फैजुल आलम नौशाद आलम खुर्शीद आलम गुड़िया और पप्पू आइए आप सबकी पसंद से सुनते हैं फिल्म दिलवाले से ये गीत आवाजें उदित नारायण और अलका याग्निक की है शब्द रचना समीर की धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

इसी गीत के साथ फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। आज का ये कार्यक्रम नागपुरी भाषा में।

0: कार्यक्रम सुनवाइया सब श्रोता बहन बन के सुमन बहन बटले जोहार और आशा करी ल कि हमरे जो सुनवाइया बहन मन हो वे उमनक सबकर हाल खबर नगद नगद होवी है नी वंदा बहन और वंदा बहन रोड को हो जोहार
1: जोहार सुमन दी और कार्यक्रम सुनवाइया सब बहन मन के वन्ना राय बटले जोहार और हमो आशा करी ल कि हमरे कर सब सुनवाइया बहन मन नगद नगद हो वे
0: सही कहती। और देखो वंदा बहन, जीवन में जब सब कुछ सुचारू रूप से चले लनी तबे घर परिवार में खुशहाली रहेला, और अगर कोनवे तरीकर समस्या होलक तो घर कर जो माहौल होएला वो पूरा अस्त व्यस्त हो जाएला। इकरे से एगो बहुत बड़ समस्या है कि हमरे कर समाज में एगो देखब कि नशा कर प्रवृत्ति जो है बहुत तेजी से बढ़त है, और नशा कर जो समस्या है महिला मन की स्थिति के कई तरी से प्रभावित कर देवेला, जैसे कि उमन कर शारीरिक भेलक, मानसिक, और ये महिला मन के आर्थिक रूप से भी कमजोर बनाएला। घरेलू महिला जो घरेलू है हिंसा इकर भी शिकार बनत है, और नशा कर चलते हैं समाज में छवि जो है वो धूमिल होवे लागेला।
1: एकदम सही कहली। देखो आगे हमरे मन देखत रहे कि खाली पुरुष मन नशा कर आदि होवे ना, लेकिन आजकल तो देखते कि महिला मन भी कर आदि होते जाते हैं, और ये जो नशा कर समस्या है और महिला मन कर इकर से जो जुड़ाव है वो बहुत संवेदनशील मुद्दा है।
0: सही कहा।
1: महिला मन के ना खाली नशा कर लत से जूझे पड़ेला, बल्कि उमन के जो पुरुष प्रधान समाज है उकर में पुरुष कर तुलना में कहीं बगरा शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक चुनौती कर भी सामना करे पड़ेला।
0: सही कहा थी।
1: और जानी ला कि महिला मन में जो नशा कर लत कर हमरे मन शुरुआत देखत है, बहुत कारण है, जैसे कि पारिवारिक और भावनात्मक जो तनाव हुएला, मैंने परिवार में मानो कोनो कला हुआ थे, चाहे हिंसा होते, चाहे बहुत बेसी समाज कर दबाव उनकर ऊपर है, तो महिला मन तनाव में या अवसाद में चल जाए ना, जिकर चलते उन्हें नशा कर सहारा लेवे ना। और महिला मन कर जे खिलाफ होए वाला अपराध मन है, जैसे कि वह घरेलू हिंसा चाहे यौन हिंसा होलक, वो सबसे उमन का जो मानसिक स्वास्थ्य है बहुत बुरा तरह से प्रभावित होएला, जेकर से कि उमने शराब या ड्रग्स जैसे नशा कर बटे अपन दिमाग के लगाए ना।
0: एकदम सही कहा थी। और जानी लो वंदा बहिन, इकर में जे सबसे ज्यादा नुकसानदायक हमके बुझाएल कि शारीरिक और जो मानसिक स्वास्थ्य ऊपर तो यही है, संगे मन में जे हार्मोनल चक्र होवेल ये भी बिल्कुल पुरुष मन कर तुलना में नशा कर लत जो है इमन के बगरा कर हो कर अधिक बढ़ाएल खतरा करवाएल। और बगरा नशा कर सेवन से जो महिला मन में है हृदय का रोग देखब, लीवर का क्षति है, प्रजनन क्षमता कर कमी है, और कैंसर नियर कई गो खतरनाक बीमारी होवे कर खतरा बढ़ जाएला। और संघे है ये भी हमरे कहिले कि नशा जो है कई एक गो कारण से अगर घर में गिन परिवार में कोई भी पुरुष है तो उकर चलते भी महिला मन घरेलू हिंसा का शिकार हो जाए ना, और हमें अगर महिला खुदे नशा कर गिरफ्त में है तो परिवार में महिला कर शोषण और दुर्व्यवहार कर खतरा भी और बगरा बढ़ जाएगा। संघे नशा कर लत कर चलते परिवार कर देखभाल करे वाला जो गृहिणी कर भूमिका भी प्रभावित हुए लागेला, और घरनी खुद नशा में रही तो अपन घर परिवार छुआ पुता मन के कालक है ध्यान रखे पार में बिल्कुल नहीं रख सके ना, तो परिवार जो है टूटे कर कगार में आ जाएला, और घर परिवार कर जो खर्चा है वो भी बढ़ जाएला, और परिवार कर आर्थिक रूप से भी कमजोर होवे लागेला है नहीं।
1: कर ली, देखो महिला जो होवेला वो तो परिवार कर दूरी होवेला, उकरे ऊपर पूरा परिवार का जिम्मेदारी होवेला, अगर उमने ई नशा कर लत कर बटे जाए ना तो पूरा परिवार तहस नहस हो जाला। और देखो ना इकर से उमन का स्वास्थ्य कर बटे भी बहुत खतरा होवेला, जैसे कि गर्भावस्था कर दौरान अगर उमने कोनो तरह का नशा करे ना तो उमन कर जे भ्रूण कर विकास होवेला उकर में बहुत तरह का परेशानी आवेला, चाहे जे नवा शिशु है उमने नशा कर लत कर चलते बहुत तरह कर बीमारी से भी जूझ है ना।
0: बिल्कुल
1: हाँ। और नशा कर जे प्रभाव है के जे कीने ना जे महिला मने वो महिला मन के यौन शोषण बटे जाय कर बेसी जोखिम बढ़ जाएला, और का बोलब कि घर जे तहस नहस होवेला से तो है ये है छुआ और दोसर लाइन में चल जाए, ये भी एगो बहुत कारण है उकर बिगड़े कर अगर नशा महिला मन करे ना तो।
0: बिल्कुल
1: तो से ले महिला मन के नशा से दूर रह चाहिए।
0: एकदम सही कहती। देखो जैसे कि लगातार नशा कर लत है इकर से तो पैसा कर भी खर्चा बगरा होवेला, और घर में आर्थिक समस्या भी दिन पर दिन बढ़ते जाएला, तो गरीबी और कर्जा कर बोझ भी इकर से बढ़ते जाएला। संगे नशा कर चलते जे भी काम धंधा आदमी मन करे ना ओहो सब छूटते चल जाए रहा, ये भी देखब की। और महिला मन का जो बढ़त नशा कर लत है एगो सबका बढ़ जी कर एगो कारण हमरे देखी ला कि पाश्चात्य जे संस्कृति है ई जीवन शैली में आधुनिक बने कर चक्कर जे होड़ है ई बहुत जोर महिला मन में खन देखे ले पावत ही हमरे एकर चलते इमन जे है से नशा कर अपन जीवन में जोखिम में डाला था नशा करके और ये बहुत ही गलत है। संगे पुरुष कर जो बराबरी करे कर भी कारण है कह सके हमरे तो जे अगर रोहिन पुरुष से बराबरी करे के चाहे कोनो भी है तो इकर ले बेस काम के करू ना कि कोई और दोसर नशा के अपनो चाहे शिक्षा कर है सोच विचार कर निर्णय है चाहे हाँ चाहे कोई भी चीज के लेवे के अगर मान लो कि गृहस्थी में चलाए लेकिन कालक ही चले तो ये सब कर बारे में रोरे बढ़िया से घर में अपन गोठियो करूँ और आगे बढ़ू अपन सोच विचार के बढ़िया करूं ना कि नशा कर बटे जाऊ और सब में अपन खास स्थान रखू ये सब सब काम करे में और नशा घर परिवार ले जीवन कर खातिर सबसे बेकार चीज है के इकर से दूरी रखू और घर ने ही जे होवेला से घर कर एगो धूरी है गए घर कर जे घर नहीं है से और एक महिला अपन घर कर सबसे बड़ धूरी हो ना कहिला हमरे तो ये बात के ध्यान रखू कि सबसे बगरा रखे चाहिए कि हमरे नशा से दूर रहू और
1: अपन परिवार के बढ़िया से
0: अपन स्वास्थ्य कर ध्यान रखू तबे अपन घर परिवार के बेस से संभराय पारब छुआ पुता के पढ़ाई लिखाई के आदमी बनाए पारब ये घर नहीं कर सबसे बड़ जिम्मेवारी लागे और ये बटे जरूर ध्यान रखे चाहिए।
1: तो चलो ये तो हमरे मन जानकारी कर ली कि नशा कर समस्या से जो महिला मन कर स्थिति बिगड़त है उकर बारे में और आप हमरे मन सुनब कि एगो नागपुरी लोकगीत जानकी देवी और संगी मन कर गावल।

0: ई रहे जानकी देवी और संगी मनकर गावल नागपुरी लोकगीत। चलो अब एक जानकारी कर ले वेला भेंटवार्ता। बदलता मौसम और खान पान इकर बारे बताते हैं रिसिता रॉय, जे की एगो डाइटिशियन है और इनका से बातचीत कर रहे वंदना बहिन।
1: हुए मौसम में हमारे शरीर को नए तापमान और वातावरण के अनुसार खुद को ढालना पड़ता है। इस दौरान हमारी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वह कमजोर हो जाती है, जिससे सर्दी, खांसी, बुखार, एलर्जी और संक्रमण जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमें खान पान पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। तो चलिए आज हम जानकारी करते हैं इसी के बारे में, और हमें बताएंगी रिशिता रॉय कि हमें बदलते हुए मौसम में अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना क्यों जरूरी है। तो रिशिता जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। रिशिता जी, सबसे पहले आप हम बहनों को बताएं कि बदलते मौसम में हमें खान पान पर विशेष ध्यान देना क्यों आवश्यक है।
2: बदलते मौसम में खान पान पर ध्यान देना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वह शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाए रखता है। पाचन तंत्र को मौसम के तापमान के अनुसार संतुलित रखकर बीमारियों को दूर रखने में मदद करता है। बदलते मौसम के साथ अपने खान पान में बदलाव करना इसलिए जरूरी होता है। उसके कुछ मुख्य कारण यह है कि वो इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है। मौसम बदलने के साथ शरीर को बदलते तापमान के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है। ऐसे में पौष्टिक और मौसमी आहार लेने से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, जिससे हम जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। पाचन क्षमता को सही रखना है। मौसम के में बदलाव, विशेषकर नमी या आध्यात्मिक गर्मी ठंड पर सीधा असर हमारे पाचन शक्ति पर पड़ता है। हल्का और मौसम के अनुकूल खाना खाने से पेट से जुड़ी समस्याएं से बचा जा सकता है। संक्रमण से बचाना, बदलते मौसम में कीटाणु और बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं जो गले में खराश, खांसी और जुकाम का कारण बनते हैं। खान पान में बदलाव और हेल्दी ईटिंग हैबिट्स अपना कर इन समस्याओं से बचा जा सकता है। बदलते मौसम के लिए कुछ टिप्स

0: अपना सकते हैं, जैसे कि ताजा और हल्का भोजन करना, हमेशा घर का बना हुआ खाना खाना, विटामिन सी से भरे फल खाना, मौसमी फल, खट्टे फल जैसे कि संतरे, मौसमी, नींबू का सेवन करना जिससे विटामिन सी मिले शरीर को, हाइड्रेटेड रहना, बदलते मौसम में एक पर्याप्त मात्रा में पानी पीना और फास्ट फूड से बचना।
1: मौसम बदलने पर शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकताएं कैसे बदलती हैं?
0: मौसम बदलने पर तापमान, धूप की अवधि और शारीरिक गतिविधियों में बदलाव के कारण पोषण संबंधी जरूरतें और पाचन क्रिया बदल जाती है। इस दौरान शरीर को बाहरी वातावरण के अनुसार ढालना पड़ता है, जिससे पोषण तत्वों की मांग और बदलाव में बदलाव आता है। मौसम के अनुसार पोषण में होने वाले मुख्य बदलाव इस प्रकार हैं। सर्दियों में शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे भूख और पाचन शक्ति बढ़ जाती है। इस समय वसा और भारी आहार आसानी से पच जाता है, जबकि गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने के लिए रक्त का संचार त्वचा की ओर ध्यान और अधिक होता है, जिससे कि पेट की ओर कम ध्यान दिया जाता है और पाचन शक्ति धीमा हो जाता है, जिससे भूख कम लगती है और हल्का भोजन जैसे फल और सलाद पचाने में आसानी होती है। सर्दियों में हाइड्रेशन के लिए प्यास कम लगती है, उसके बावजूद शरीर को पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है, जबकि गर्मियों में पसीना अधिक आने से शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। इस समय नारियल पानी, नींबू पानी, ओआरएस जैसे पदार्थ का सेवन करना जरूरी होता है।
1: हमें बदलते हुए मौसम में कौन-कौन से मौसमी फल और सब्जियां खाना लाभदायक हो सकता है, और इस मौसम में किन खाद्य पदार्थों से हमें बचना चाहिए और क्यों?
0: बदलते मौसम में मौसमी फल और सब्जियां खाना सबसे ज्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि यह शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, पाचन तंत्र को सही रखता है और मौसम की मार से बचाता है। गर्मियों के मौसम में फल जैसे कि आम, तरबूज, लीची और खरबूजा यह शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है, और सब्जियां जैसे कि खीरा, ककड़ी, टमाटर और लौकी यह सब खाया जा सकता है। और बरसात के मौसम में फल जैसे कि जामुन, नाशपाती और अनार का आहार किया जा सकता है।
1: क्या हमें मौसम के अनुसार पानी पीने की मात्रा में भी बदलाव करना चाहिए? में बच्चों और बुजुर्गों के खान पान में हमें क्या विशेष सावधानियां रखनी चाहिए? और मौसम बदलने पर बार बार होने वाली सर्दी, खांसी और बुखार से बचने के लिए हमें कैसा आहार लेना चाहिए?
0: जी हाँ, मौसम के अनुसार पानी पीने की मात्रा और आदतों में बदलाव करना बेहद जरूरी है। बदलते मौसम के साथ शरीर का तापमान और पसीनों के रूप में पानी का निकलना कम ज्यादा होता रहता है, जिससे संतुलित रखना आवश्यक जरूरी होता है। विभिन्न मौसमों के अनुसार पानी पीने के कुछ प्रमुख नियम भी हैं, जैसे गर्मी के मौसम में तापमान अधिक होने के कारण शरीर में पसीना बहुत निकलता है। इस कारण डिहाइड्रेशन से बचने के लिए सामान्य से अधिक लगभग 2.5 से 3 लीटर पानी पीने की आवश्यकता होती है। बदलते मौसम में बच्चों और बुजुर्गों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, इसलिए उनके खान पान में सुपाच्य और ताजा भोजन, पर्याप्त हाइड्रेशन, मौसमी फल सब्जियों का सेवन शामिल करें और बाहर के जंक फूड व दूषित पानी से बचे। ये सबसे बचने के लिए कुछ विशेष सावधानियां अपनाई जा सकती हैं। जैसे बुजुर्गों के लिए विशेष सावधानियां यह है कि वो हल्का और सुपाच्य भोजन करें। बदलते मौसम में बुजुर्गों का पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, उन्हें आसानी से पचने वाली चीजें जैसे दलिया, खिचड़ी, सूप और उबली हुई सब्जियां दें। उनके हाइड्रेशन से बचने के लिए हाइड्रेशन में ध्यान दें, उन्हें समय से गुनगुना पानी, नारियल पानी, नींबू पानी दें।

0: कब्ज से बचने के लिए उन्हें आहार और मौसमी फल जैसे पदार्थ शामिल करें। बासी खाना, अधिक तेल मसालेदार खाना ना दें। और बच्चों के लिए विशेष सावधानियां, जैसे कि पोषण से भरपूर डाइट, बच्चों के तेजी से विकास के लिए उनके आहार में प्रोटीन जैसे अंडे, दाल, विटामिन और फाइबर जैसे ओट्स, हरी सब्जी शामिल करें। सर्दी खांसी और बुखार से बचने के लिए अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखना सबसे जरूरी है। इसके लिए अदरक, लहसुन, हल्दी, नींबू और तुलसी का सेवन किया जा सकता है या करें। पर्याप्त गर्म पानी पिए, बाहर के ठंडे या प्रोसेस्ड खाने से बचें। अपने आहार में कुछ चीजों को शामिल करें, जैसे कि तुलसी और अदरक। बदलते मौसम में होने वाले इन्फेक्शन से बचने के लिए अदरक की चाय या तुलसी के पत्तों का काढ़ा पिए। यह बलगम को निकालने और गले की खराश दूर करने में मदद करता है। विटामिन सी से भरपूर फल खाएं, संतरा, नींबू और आंवला जैसे फल इम्यूनिटी बढ़ाती है और शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत देती है। हल्दी का दूध पिए। रात को सोने से पहले गुनगुने दूध में हल्दी मिलाकर पीने से शरीर की सूजन कम हो जाती है।
1: क्या स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभदायक होते हैं? और अगर ये अधिक लाभदायक होते हैं तो क्यों होते हैं?
0: स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक होता है। यह खाद्य पदार्थ न केवल अधिक ताजा और पोषण तत्वों से भरपूर होता है, बल्कि इनको सेवन करने से हानिकारक रसायनों की मात्रा भी कम हो जाती है। स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थ के लाभ और कारण। उच्च पोषक तत्व और स्वाद। जब फल और सब्जियां प्राकृतिक रूप से मौसम में पकती हैं, तो उनका पोषण स्तर, विटामिन और खनिज और स्वाद अपने चरम पर होती है। लंबी दूरी और अत्यधिक खाद्य पदार्थ का पकने से पहले तोड़ लेना, यह उसके पोषण तत्व को खो देता है। कम हानिकारक रसायन। गैर मौसमी और अत्यधिक खाद्य पदार्थ को ताजा दिखाने के लिए, खराब होने से बचने के लिए अक्सर मोम और कृत्रिम रसायनों का लेप लगाया जाता है। ऋतुओं की आवश्यकता के अनुरूप, प्रकृति मौसम के अनुसार हमारे शरीर की जरूरतों को समझती है।
1: हमें स्वस्थ रहने के लिए बदलते हुए मौसम में खान पान के साथ और किन किन आदतों को अपनाना चाहिए?
0: के लिए खान पान के साथ साथ पर्याप्त हाइड्रेशन, नियमित व्यायाम, अच्छी नींद और व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। यह आदतें मौसमी बीमारियों से बचाव में मदद करता है। बदलते मौसम को अपनाने के लिए कुछ प्रमुख आदतें इस प्रकार हैं, जैसे हाइड्रेशन। मौसम बदलने के दौरान पानी पीने की मात्रा कम ना करें। दिन भर में 2 से 3 लीटर पानी पिए, जो शरीर को स्वस्थ बनाने में मदद करता है। सादे पानी के अलावा आप नींबू पानी और नारियल पानी का सेवन भी कर सकते हैं। नियमित शारीरिक गतिविधि। मौसम चाहे जो भी हो, खुद को सक्रिय रखें। रोजाना कम से कम 30 मीटर की हल्की सैर या योग करना इम्यूनिटी के लिए जरूरी होता है और बीमारियों के खतरे को कम करता है। पर्याप्त नींद, जैसे प्रतिदिन 7-8 घंटे की गहरी नींद।
1: तो ऋषिता जी, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी कि बदलते हुए मौसम में हम अपने खान पान पर कैसे ध्यान दे सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ई रहे ऋषिता रॉय जे हमरे के जानकारी करवात रहे कि बदलता मौसम और खान पान का लखे रहे चाहिए, और बातचीत कर रहे वंदा बहन। और चलो हमरे फिर एक गीत सुन ले, यशोदा देवी और संगी बनकर कावल।

0: ई रहा यशोदा देवी और संगीवन कर गावल नागपुरी लोकगीत। और चलो अब एक जानकारी फिर लेला कि जैसे नशा के बारे, नशा मुक्त भारत अभियान के बारे में। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय बटले 15 अगस्त 2020 के शुरू करल नशा मुक्त भारत अभियान एगो राष्ट्रव्यापी पहल है। एकर मुख्य उद्देश्य युवा मन के शिक्षण संस्थान और समुदाय में मादक पदार्थ कर दुष्प्रभाव कर प्रति जागरूक करे है और नशा मुक्त भारत कर निर्माण करे है।
1: ये अभियान है, कुछ प्रमुख बिंदु और गतिविधि मन है, जैसे कि जागरूकता और शिक्षा, स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय कर बटे विशेष ध्यान देवल जाते, जेकर चलते युवा मन कर बीच में नशा कर रोकथाम ले जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करल जाते। समुदाय आधारित पहुँच कर जरिया नशा पीड़ित मन कर पहचान, उमन कर परामर्श और अस्पताल में उपचार कर सुविधा देवे है। तो हमरे मन के अपन देश के नशा मुक्त करे के कर में सबके जागरूक होवे खोवी और जरूर जागरूक होवे भी चाहिए। तो सुमन बहन अब हमरे कर जाए कर बेरा होते, तो अगला सोमवार कर अपन बहन मन कर संगे फिर से हमरे मन कोठियाब। तब तक खातिर देव विदा, जोहार, जोहार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। शुरुआत करते हैं फिल्म अभिमान से। ये गाना आवाज़ लता मंगेशकर और किशोर कुमार की है। शब्दों में पिरोया है मजरूह सुल्तानपुरी ने। संगीत पद किया एसटी परमन ने।

कार्यक्रम का अगला नगमा फिल्म चुपके चुपके से, आवाज लता मंगेशकर की, शब्द रचना आनंद बख्शी के, इस गीत को संगीतबद्ध किया एसटी परमन ने।

कार्यक्रम का आखिरी नगमा फिल्म सावन को आने दो से यशुदास की आवाज, फख्र जामी की रचना और संगीतबद्ध, राज कमल का।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब से थोड़ी देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी देश सेशल्स की अपनी यात्रा के तीसरे दिन आज विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायकर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले

अंतिम भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री 3 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कल सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लिया। ये सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ है। श्री मोदी विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हराइजन से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों एक ऐसे विश्व के लिए प्रयासरत हैं जहां विकास अधिक समावेशी हो और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं समकालीन वास्तविकताओं पर ध्यान केंद्रित करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जन विश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुकदमों को कम करना और विश्वास आधारित नियामक के ढांचे को मजबूत करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे और पात्र मतदाताओं से भरे हुए आवेदन पत्र एकत्र करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज नई दिल्ली के संसद भवन में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन ने श्री खड़गे को शपथ दिलाई। श्री खड़गे कर्नाटक से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण बड़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक दोपहर में लगभग 0.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स 425 अंक गिरकर 76,676 पर और निफ्टी 112 अंक कम होकर 23,944 पर था। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन जुस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: His statue is situated at Peace Park. He has since departed for India after concluding his successful three-day visit to Seychelles. Yesterday, Prime Minister Modi attended the National Day celebrations of Seychelles, marking the 50th anniversary of independence of the country. Mr. Modi attended the celebrations as the guest of honour, becoming the first Indian Prime Minister to be accorded this honour. The Prime Minister was conferred the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction, for leadership in environmental conservation and sustainable development. He also addressed the National Assembly of Seychelles, where he emphasized that Seychelles and India both seek a world where development is more inclusive and where international institutions reflect contemporary realities. President Draupadi Murmu will present gallantry awards at the second Defence Investiture Ceremony of 2026 at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. The President will confer gallantry awards to personnel of the Defence Forces, Central Armed Police Forces and to State and Union Territory Police. These awards are given away in recognition of exceptional acts of bravery by personnel of the Armed Forces, Central Armed Police Forces and other security agencies. The government has introduced the Improvement Notice Mechanism under the Legal Metrology Act 2009 through the Jan Vishwas Amendment of Provisions Act 2026. Under the new mechanism, businesses committing specified first-time procedural or regulatory non-compliances will be given an opportunity to rectify the deficiency before penal proceedings are initiated. The Ministry of Consumer Affairs said the reform aims to promote ease of doing business by encouraging voluntary compliance, reducing unnecessary litigation, and supporting a more trust-based regulatory framework while maintaining strong consumer protection. The Ministry added that the mechanism applies to manufacturers, importers, packers, dealers, repairers, traders, MSMEs, and other regulated entities. The Supreme Court today refused an urgent hearing on a PIL seeking a court-monitored probe and forensic audit into alleged financial irregularities in donations received by the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust. The bench of Justices M.M. Sundresh and Sheel Nagu questioned the urgency and directed that the plea be listed after the court reopens following the summer vacation. A Delhi court today extended till July the 11th the judicial custody of 10 accused in the NEETUG 2026 paper leak case. Being investigated by the Central Bureau of Investigation, CBI, the accused were produced before the Rouse Avenue court through video conferencing on the expiry of their earlier judicial custody. The CBI has so far arrested 13 accused in the case and is investigating an alleged network involved in procuring and circulating NEETUG question papers. Congress President Mallikarjun Kharge today took oath as a member of the Rajya Sabha at the Parliament House in New Delhi. Vice President and Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan administered the oath to Mr. Kharge, who got re-elected to the upper house from Karnataka. The house-to-house distribution of electoral enumeration forms to voters in the National Capital Territory of Delhi will begin tomorrow. Chief Electoral Officer of Delhi, Ashok Kumar, announced this while briefing the media in New Delhi today. He said booth-level officers will visit every household from tomorrow till the 29th of next month to distribute the enumeration forms and collect the duly filled applications from eligible electors. In Assam, fears of a major flood have intensified in Dhemaji district following reports of a temporary blockage in the upstream course of the Gai Nadi in the hills of Arunachal Pradesh. The obstruction is believed to have been caused by a massive landslide triggered by days of heavy rainfall in the region. The Dhemaji district administration has issued an urgent public advisory and warned that the blockage could trigger a sudden flash flood. In the FIFA World Cup, Canada beat South Africa 1-0 in the first knockout match at Los Angeles in the United States. And with that, we end this news bulletin.
1: Akashwani Ranchi se prastut hai pradeshik samachar. Namaskar. प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से कुछ देर में 1042 नव चयनित इंटर और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को प्रदान करेंगे नियुक्ति पत्र। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की खामियां दूर करेगी राज्य सरकार। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा ऋण सीमा बढ़ाने पर भी होगा विचार। झारखंड में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू। बीएलओ घर घर जाकर वितरित करेंगे गणना प्रपत्र। 29 जुलाई तक चलेगा अभियान। राज्य में नया बिजली कनेक्शन लेना हुआ महंगा। 1 किलोवाट घरेलू कनेक्शन के लिए अब देने होंगे 4825 रूपये। और मानव हाथी संघर्ष के कारणों का अध्ययन करेगा IIM अहमदाबाद। पायलट स्टडी के बाद राज्य भर के लिए तैयार होगी रणनीति। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से कुछ देर में रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में 1042 नव चयनित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। इनमें पहली से पांचवीं कक्षा के लिए 274 तथा छठी से आठवीं कक्षा के लिए 768 सहायक आचार्य शामिल हैं। राज्य सरकार प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में 26,000 सहायक आचार्यों की चरणबद्ध नियुक्ति कर रही है, जिसके तहत अब तक 12,500 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। राज्य सरकार ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना से जुड़ी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। राजधानी रांची में आयोजित समारोह में एक छात्रा द्वारा रीइंबर्समेंट और 15 लाख रुपए की ऋण सीमा का मुद्दा उठाए जाने पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि योजना की कमियों को दूर किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर ऋण सीमा बढ़ाने पर भी विचार होगा। इधर कार्यक्रम में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि आज के दौर में प्रतिस्पर्धा अधिक बढ़ गई है, इसलिए सफलता के लिए खुद को आगे रखने की जरूरत है।
2: यही जनरेशन जो है वो आने वाले समय में हमारे समाज को, हमारे देश को आगे लेके जाने वाली है। इनको उस लायक भी बनना होगा, उस लायक बन सकते हैं ये लोग जहाँ ये लोग देश का नेतृत्व कर पाए सभी सेक्टर में। मुझे विश्वास है और भरोसा भी है कि आने वाले समय में बहुत अच्छा करेंगे ये।
1: झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत कल से होगी। इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र देंगे और उनका सत्यापन करेंगे। यह अभियान 29 जुलाई तक चलेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि मतदाताओं को केवल गणना प्रपत्र सही ढंग से भरकर हस्ताक्षर सहित बीएलओ को लौटाना होगा।
3: आने वाला इनमरेशन फेस 30 जून से 29 जुलाई तक होंगे। कमीशन का इंस्ट्रक्शन पूरा स्टेट में, पूरा कंट्री में एक ही है, इसलिए अलग अलग स्टेट का अलग अलग प्रोसेस नहीं। आपका कहाँ तक डॉक्यूमेंटेशन का संबंध है, कमीशन का बहुत ही इंस्ट्रक्शन क्लियर है, इनमरेशन फेस में भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेना है।
1: शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी से समन मिलने के बाद राज्य के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता रामेश्वर उरांव ने पूछताछ के लिए अतिरिक्त समय की मांग की है। समन के अनुसार पूर्व मंत्री को आज अपने पुत्र रोहित उरांव के साथ एजेंसी के कार्यालय में पेश होना था। ईडी ने संबंधित दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण कागजात के साथ दोनों को हाजिर होने के निर्देश दिए थे। राज्य में नया बिजली कनेक्शन लेना अब महंगा हो गया है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड यानी JBVNL ने नए बिजली कनेक्शन के लिए संशोधित शुल्क सूची जारी कर दी है, जो 1 मई से लागू है। नई दरों के अनुसार शहरी क्षेत्र में 1 किलोवाट के घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को 4,825 रूपये का भुगतान करना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड में मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती घटनाओं के कारणों का अध्ययन अब भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद करेगा। देश में पहली बार किसी प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान ने इस विषय पर अध्ययन का प्रस्ताव दिया है। पहले चरण में गोला और गोमिया को पायलट अध्ययन के लिए चुना गया है और वन विभाग और IIM की टीम क्षेत्र का दौरा भी कर चुकी है। दोनों संस्थानों के बीच जल्द MOU होने और अध्ययन शुरू किए जाने की उम्मीद है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक PCCF वन्य प्राणी रवि रंजन ने बताया कि इस अध्ययन से मानव हाथी संघर्ष को प्रभावी ढंग से कम किया जा सकेगा। धनबाद में जल्द ही 4 नए टाउन हॉल का निर्माण किया जाएगा। जिले के उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि जिले की आबादी को ध्यान में रखते हुए नए टाउन हॉल की जरूरत महसूस की जा रही थी।
4: धनबाद में जो टाउन हॉल की कमी है, जिसमें 200 से ज्यादा जैसी संख्या हुई तो कोई भी अच्छा हॉल, जिला परिषद का एक टाउन हॉल है, सर्किट हाउस का भी अपग्रेडेशन चालू कर दिया है। उसके सामने जो IB बंगलो है उसके लिए भी राज्य सरकार ने 80 लाख रुपए आवंटित किए हैं, उसका भी रिनोवेशन चालू है, वो भी अपग्रेड हो जाएगा तो वो भी हम लोग यूज करेंगे।
1: श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। श्री अमरनाथ यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार तीर्थ यात्रा के आधिकारिक प्रारंभ से पहले सुरक्षा व्यवस्था, काफिले की आवाजाही और समग्र तैयारियों के आकलन का जायजा लिया गया। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर देवघर जिला प्रशासन की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस बार एक नई पहल की गई है। देवघर के सिविल सर्जन डॉ. रमेश कुमार ने बताया कि पहली बार श्रावणी मेले के दौरान टोटो एम्बुलेंस सेवा शुरू की जा रही है।
5: सावन में भीड़ को देखते हुए हमने टोटो एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई है ताकि भीड़ में ये टोटो एम्बुलेंस आसानी से चला जाए और वहाँ पे जो भी आवश्यकता होगी उनको वहाँ से लेके हम टेंडर निकाले हैं। कुछ दवाइयाँ भी रहेगी, अगर हल्का फुल्का होगा तो निकटवर्ती सेंटर में ले जाएंगे, अगर विशेष दिक्कत होगी जिसमें हम लोग सदस्यता ला चुकेगा।
1: रांची के धुरवा स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा महापर्व की तैयारियां तेज हो गई हैं, जहां आज देव स्नान यात्रा के साथ धार्मिक अनुष्ठान शुरू होंगे और इसके बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 15 दिन के अनासर यानी एकांतवास में चले जाएंगे। 16 जुलाई को भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सुबह 4 बजे पूजा आरती के बाद दोपहर 2:30 बजे विग्रहों को रथारूढ़ कर शाम 5 बजे रथ संचालन शुरू किया जाएगा। रथ शाम 6 बजे मौसीबाड़ी पहुंचेगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 152 अंक गिरकर 76,948 पर और निफ्टी 26 अंक कम होकर 24,030 पर आ गया। इधर राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,34,900 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,28,000 रुपए प्रति किलो है। मौसम मौसम विभाग ने राजधानी रांची, रामगढ़, धनबाद समेत 20 जिलों में आज से 4 जुलाई तक बारिश और वज्रपात की आशंका जताई है। अधिकतर क्षेत्रों में तेज बारिश, वज्रपात और 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से कुछ देर में 1042 नव चयनित इंटर और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को प्रदान करेंगे नियुक्ति पत्र। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की खामियां दूर करेगी राज्य सरकार। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा ऋण सीमा बढ़ाने पर भी होगा विचार। झारखंड में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू। BLO घर घर जाकर वितरित करेंगे गणना प्रपत्र। 29 जुलाई तक चलेगा अभियान। राज्य में नया बिजली कनेक्शन लेना हुआ महंगा। 1 किलोवाट घरेलू कनेक्शन के लिए अब देने होंगे 4825 रुपए। और मानव हाथी संघर्ष के कारणों का अध्ययन करेगा IIM अहमदाबाद। पायलट स्टडी के बाद राज्यभर के लिए तैयार होगी रणनीति। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी रांची से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.5 पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। कलाकार हैं अनीता सेन। इनसे सुनते हैं बंदिश और टप्पा।

अभी आप डॉक्टर अनीता सेन से बंदिश और टप्पा सुन रहे थे। संगत कलाकार थे ओंकार गुरवाड़ी, सारंगी पर लियाकत अली खान, बांसुरी पर रोनू मजुमदार, धनपुरा पर अन्ना जोशी और त्रिकुण जोशी। इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत, इसमें सुनते हैं पॉप सॉन्ग्स।

मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है जिसके लिए मैं सांस लेता हूँ।

सोनू निगम के गाए इसी पॉप सॉन्ग्स के बाद सुगम संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब से थोड़ी देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार सुनेंगे।

0: Piyush Goyal is leading a high-level Indian business delegation to Athens in Greece after concluding his visit to the United Kingdom with a focus on strengthening trade, investment and strategic economic cooperation, the Commerce and Industry Ministry said. During the visit to Greece, the delegation will participate in presentations and startup pitches at the Athens Startup Business Incubator. The delegation will also hold focused roundtable discussions with Indian and Greek industry leaders at the Athens Chamber of Commerce and Industry, covering infrastructure, digitalization and defense, and food and agriculture. Former Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina has said she will return to Bangladesh before the end of this year, despite facing legal cases, a death sentence, and a ban on the political activities of the Awami League, raising fresh questions over the exclusion of one of the country's largest political parties from the political process. In an interview with a TV channel, Hasina described the cases against her as politically motivated and accused the current authorities of using the judiciary to eliminate the Awami League from Bangladesh's political landscape. Hasina's remarks came as the Awami League observed its 77th founding anniversary amid a nationwide ban on its activities and extensive security measures. China has imposed new export controls on 40 Japanese entities, accusing them of contributing to Japan's remilitarization as tensions between the two countries continue to rise. China's Commerce Ministry placed 20 entities on an export control list. In the knockout stage of the FIFA World Cup, Canada beat South Africa 1-0 for its first knockout match victory at Los Angeles in the United States. Stephen Eustachio of Canada scored the goal in the second minute of second half stoppage time. Co-hosts Canada hung on with strong defensive play in the final minutes and advanced to face the Netherlands or Morocco in Houston on Saturday, July the 4th. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. The Met Department also predicted heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Kerala and Mahe till Wednesday. And now before we end the bulletin, once again, voluntary awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi this evening. Three-decade pending Yamuna water-sharing project between Haryana and Rajasthan gets approval today. Supreme Court refuses urgent hearing on PIL seeking court-monitored probe into alleged financial irregularities in Ram Mandir donations case. CBSE exempts current class 10th batch from three-language policy. Government introduces improvement notice mechanism to promote ease of doing business. SIR set to begin in Delhi tomorrow. And in FIFA World Cup, Canada beat South Africa 1-0 in first knockout match at Los Angeles. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. Aakashvani se dopahar samachar ke saath, main Kanaklata. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी योजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। विमान असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनयगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, समता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। यात्रा के दौरान UPI, स्वास्थ्य, कृषि, नौवहन, अंतरिक्ष सहयोग, प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से भी सम्मानित किया गया। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशल्स नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। विशाल और विष्णु के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत के हिस्से का पानी मानसून के दौरान हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
4: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा का अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट UG परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच के अंतर्गत 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। लागू की है ये प्रावधान जन विश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
5: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के एम नागराज, पंजाब से भाजपा नेता तरुण चुग, गुजरात से मानसिंह मेरामन परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया, राजस्थान से डॉ अलका सिंह, मणिपुर से अधिकारी मयूम शारदा देवी और महाराष्ट्र से एनसीपी नेता राजेंद्र हीरालाल जैन शामिल हैं। तमिलनाडु में करूर से एआईएडीएमके विधायक एमआर विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले एआईएडीएमके विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
6: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें बीएलओज एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर को फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं और सभी पे बीएलओज अपॉइंटेड हैं, तो सभी बीएलओज को उनके इनोमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
1: मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित 2 दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का आज वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ योजना के कारण भारत ने इस ग्रीष्मकाल में 271 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को पूरा किया। अन्य कार्रवाई रोकने और कलकत्ता की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
7: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष से अमीषा।
1: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कानूनी मामलों, मौत की सजा और आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद वे इस वर्ष के अंत तक बांग्लादेश लौटेंगी। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में शेख हसीना ने अपने खिलाफ जारी मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न्यायपालिका के बल पर आवामी लीग को देश के राजनीति से बाहर करने का प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह का माहौल रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरी में वार्षिक देव स्नान पूर्णिमा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए।
1: आज पुरी में लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के पवित्र देव स्नान पूर्णिमा समारोह देखा, जो इस साल की रथ यात्रा की उत्सव की औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सुना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नव जौवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन न्यूस्ट्राकियो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी रांची से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज़ FM 100.5 पर प्रस्तुत है फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय भारती। शुरुआत करते हैं भारतीय सेना को समर्पित इस गीत से। गीत संगीत और गायक कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए देश के।

0: ಸ್ವಯಂ ಈ ಕಟ್ಟಪಡೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ.
1: फौजी भाइयों, आइए सुनते हैं फिल्म कर्मा से ये गाना. आवाजें राधा पौडवाल और मनहर उदास और सुखविंदर सिंह की है. शब्द रचना आनंद बख्शी के, संगीत वर्किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने.

फौजी भाइयों, आइए सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में फिल्म नाम से ये गाना। शब्दों में पिरोया है आनंद बख्शी ने, संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम का आखिरी नगमा सुनते हैं फिल्म पूरब और पश्चिम से। लता मंगेशकर महेंद्र कपूर, मनहर उदास और साथियों की आवाज है। शब्दों में पिरोया है संतोष आनंद ने, संगीतबद्ध किया कल्याण जी आनंद जी ने।

इसी गीत के साथ फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय भारती यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रादेशिक समाचार बस थोड़ी ही देर में।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत इंडो स्टेडियम में 1042 नव चयनित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इनमें पहली से पांचवी कक्षा के लिए 274 तथा छठी से आठवीं कक्षा के लिए 768 सहायक आचार्य शामिल हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी द्वेष भाव से दूर रहकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें।
1: यहाँ पर 1000 से अधिक सहायक शिक्षकों की बहाली हो रही है, नियुक्ति पत्र आपको दिए जा रहे हैं। ये मैं मानता हूँ कि सरकार की प्रथम जिम्मेवारी हर विषयों पर हो, लेकिन उसके अंदर राज्य के नागरिकों की भी एक जिम्मेवारी है कि हम अपने इर्द गिर्द ऐसे वातावरण को जन्मने ना दें, पनपने ना दें, जहाँ हम एक दूसरे को एक अलग अलग नजरों से देखें।
0: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने धनबाद जिले के भूली बस्ती स्थित मतदान केंद्र संख्या 38 उत्क्रमित मध्य विद्यालय तथा मतदान केंद्र संख्या 210 गुरु नानक मध्य विद्यालय पर बीएलओ द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में किए जा रहे कार्य एवं कार्य योजना की समीक्षा की। वहीं दूसरी ओर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने धनबाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी आदित्य रंजन के साथ सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जिले के वेयर हाउस का निरीक्षण किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि शिक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। CBSE ने कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं के जिन छात्रों ने पहले ही दो विदेशी भाषाएं चुन ली है, उन्हें एक अतिरिक्त भारतीय मातृभाषा का अध्ययन करते हुए अपनी विदेशी भाषाओं को जारी रखने की अनुमति होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भगवान जगन्नाथ के मंदिर का दरवाजा आज से श्रद्धालुओं के लिए बंद हो गया। मान्यता है कि पूर्णिमा के स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अस्वस्थ माने जाते हैं। बोकारो स्टील सिटी स्थित जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान को 108 कलश पवित्र जल से स्नान कराया गया। मंदिर के पुजारी लंबोदर उपाध्याय ने बताया कि इसके बाद वे करीब 15 दिनों तक विश्राम करते हैं। इस अवधि को अनवसर काल कहा जाता है।
2: दुनिया में जहां भी जगन्नाथ मंदिर है वहाँ पर ये कार्य होता है। इसके बाद 15 दिन अभी इनका दर्शन साधन ग्रंथारण के नहीं रहेगा। पंक्तियों के दर्शन के लिए अब मंदिर नहीं, वो आ जाएंगे भक्तजनों के पास। रथ यात्रा के दिन पहले नवयुग दर्शन होता है, यह शुभ माना आता है।
0: सरायकेला खरसावां जिले में देवस्थान पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्री जगन्नाथ सेवा समिति द्वारा लगभग 300 वर्ष से अधिक पुरानी धार्मिक परंपरा का निर्वहन श्रद्धा एवं विधि विधान के साथ किया गया। इस अवसर पर भगवान श्री जगन्नाथ, उनके अग्रज बलभद्र एवं बहन सुभद्रा का पारंपरिक शाही स्नान सम्पन्न कराया गया। परंपरा के अनुसार नगर के 7 जलाशयों से एकत्रित पवित्र जल से भगवान का महाअभिषेक किया गया। हजारीबाग के मिशन अस्पताल के पास कल देर रात एक बेकाबू कार ने

0: सड़क किनारे मौजूद कई लोगों को अपनी चपेट में लेने के बाद बिजली के पोल और चापाकल में टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में 6 से अधिक लोग घायल हो गए, जबकि कार चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद सभी घायलों को तत्काल इलाज के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेजा गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सुनवा चक्रधरपुर मुख्य मार्ग पर आज सुबह एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक घंटे आधारित शिक्षिका गंभीर रूप से घायल हो गई। यह हादसा निश्चितपुर स्कूल के पास हुआ, जहां सड़क पर जा रहे शिक्षिका को ट्रैक्टर ने जोरदार टक्कर मार दी। पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसे पुलिस ने जांच के लिए अपने कब्जे में लिया है। मौसम। राजधानी रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में दोपहर बाद से ही हो रही बारिश से तापमान में कमी आई है और लोगों को गर्मी से निजात मिली है। मौसम विभाग ने राजधानी रांची, रामगढ़, धनबाद समेत 20 जिलों में 4 जुलाई तक बारिश और वज्रपात की आशंका जताई है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का राज्य केंद्र है। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज जी ने। लिखते हैं,
2: पेड़ धरती के फेफड़े हैं, वे हवा को शुद्ध करते हैं और हमें नया जीवन देते हैं।
0: धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद के मासिक संस्करण का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है।
0: आप आगे लिखते हैं, कार्यक्रम में सीआईईटी एनसीईआरटी के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर भारती कौशिक और विमलेश जी की बातचीत प्रशंसा योग्य लगी। कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा पर सुनाई गई विस्तार पूर्वक जानकारी बेहद पसंद आई। ये जानकारी रिकॉर्ड करके परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को भी हमने सुनवाई
2: जी।
0: इस कार्यक्रम की सभी ने तारीफ की। समावेशी शिक्षा पर विस्तार पूर्वक जानकारी सुनवाने के लिए आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, प्यारी बिटिया मीठी, अनाया गुर्जर और बेबी किरत ने। वो लिखते हैं,
0: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। आपका ये कार्यक्रम विविध जानकारी और मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भाषाई विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जून महीने के शुरुआती समय में उमंग प्रसारण का श्रोता संवाद कार्यक्रम एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया, जिसने इस कार्यक्रम को अर्थपूर्ण बना दिया और एक प्रकार की नवीनता का संचार किया। सभी श्रोताओं को ये नवीन संस्करण अवश्य पसंद आया होगा।
0: आप आगे लिखते हैं, इस कार्यक्रम की परिचर्चा में आपने समावेशी शिक्षा जैसे अत्यंत प्रासंगिक असमकालीन विषय की ओर सभी श्रोता बंधुओं का ध्यान आकर्षित किया। प्रोफेसर भारती जी ने बड़ी सरलता से और विस्तार पूर्वक समावेशी शिक्षा का परिचय प्रस्तुत किया
2: जी।
0: अर्थ समझाया तथा समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा के बीच का अर्थ स्पष्ट किया। शिक्षा जगत में इन दिनों समावेशी शिक्षा की खूब चर्चा होती रहती है। उमंग कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में भी इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया। ये जानकर और कार्यक्रम सुनकर बहुत ही सकारात्मकता का अनुभव हुआ। आगे आप लिखते हैं,
2: श्रोता संवाद का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी के साथ जितने भी अंक प्रसारित किए गए हैं, उन सभी ने श्रोताओं के मस्तिष्क पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। श्रोता संवाद हमारे और आपके बीच सक्रिय संवाद का एक विशेष सेतु है। आशा है कि उमंग प्रसारण में नवाचार, रचनात्मकता, आपसी संबंध और संवाद का ये क्रम चलता रहेगा।
0: आपको बहुत बहुत धन्यवाद योगेश ठाकुर जी, आपने बड़ी खूबसूरती से श्रोता संवाद कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपका धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है गोनियाना मंडी भटिंडा पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी का। लिखते हैं,
2: समावेशी शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। हमारी जानकारी भी बढ़ी और मैं ऐसे शिक्षाप्रद कार्यक्रम जरूर सुनता हूँ। आकाशवाणी भटिंडा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये प्रसारण हमारे लिए प्रस्तुत किया है।
0: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अबासी परिवार के सभी सदस्य और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास। धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से बने रहिए आपके प्रिय शैक्षिक कार्यक्रम उमंग के साथ। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है?
2: इसका उत्तर है साथियों, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ठंडी होती हैं, लेकिन जब उनके बीच नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो गर्मी पैदा होती है।
0: हमारा दूसरा प्रश्न था, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी?
2: इसका उत्तर है साथियों, भीम बैठका की गुफाओं की खोज प्रसिद्ध पुरातत्वविद विष्णु वाकणकर जी ने की थी, जिसके लिए उन्हें नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
0: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, इन गुफाओं की बनावट ऐसी होती है कि गुफाओं की दीवारें और छत ध्वनि तरंगों को परावर्तित या रिफ्लेक्ट करती हैं। गुफाएं गहरी हैं, इसलिए वहां बाहर का शोर भी लगभग नहीं के बराबर होता है, इसलिए वहां धीमी आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती है।
0: और अब हमारा अगला प्रश्न, हमने आपसे पूछा था बोर्रा गुफाओं की खोज किसने और कैसे की।
2: बोर्रा गुफाओं की खोज ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज द्वारा की गई थी।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों?
2: सिजू गुफाओं में एक पैसेज को टूथ पैसेज कहते हैं क्योंकि वहाँ चट्टानों की बनावट मानव दांतों की श्रृंखला से मिलती जुलती है।
0: तो साथियों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है?
0: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। साथ ही साथ CIET NCERT को इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना ना भूलिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है बुधनी गई है जंगल।
2: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा पेड़ पौधों के संरक्षण और पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: बहुत थक गया आज तो। बुधनी, अरे ओ बुधनी,
1: आई रे आई। आ गया बुधवा, ले आया लकड़ी।
2: इतनी सी चुब्बा कहाँ रह गया? अम्मा अम्मा अम्मा देख कितने जामुन लाया हूँ जंगल से। इतना बड़ा पेड़ ढूंढा है मैंने आज जामुन का। कल से रोज जाऊंगा बापू के साथ जंगल, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं अम्मा।
1: अरे चुप भी कर, क्या करूँ इतने सारे पेड़ों का। तेरा बापू तो एक भी पेड़ ना काट सकता, रोज यही जरी मरी सी सूखी टहनियाँ तोड़ लाता है बस।
0: फिर वही बात, अरे मैं क्यों काटूँ पेड़ है? जब इतनी सारी लकड़ियों की टहनियाँ ऐसी मिल जाती है, काम तो चल जाता है ना।
1: काम चल जाता है, काम चल जाता है। हाँ नहीं तो, अरे ढेर लकड़ी लाओगे तो इतने सारे पैसे मिलेंगे बेचने से।
0: अच्छा,
1: कुछ कहना करिया, कुछ आड़े पकत के लिए कुछ समझता तो है ना। हाँ
0: अरे भोली, जब तक जंगल है तब तक आड़ा बखत आएगा ही नहीं, ना लकड़ी की कमी ना फलकंद की। बीमारी पड़ी तो जड़ी बूटी भी। रही गहना गरिया की बात, तो बुधनी ये जो तू जंगली फूल लगा लेती है ना कभी कभी, उसके सामने सच कहूँ सारे गहना गरिया मात।
1: अब ना बहलती मैं तुम्हारी बातों से, कह देती हूँ हाँ, या तो कल एक बड़ा सा पेड़ काट कर लाओ, नहीं तो
2: मेरा मरा मुंह देखो।
0: अरे अरे रोने लगी। अरे सुन तो, अच्छा अच्छा सुन, आप चुप भी हो जा बुधनी, काट लाऊंगा एक पेड़ बड़ा सा। है तो ये पाप ही, हमारा ओझा भी यही कहता है कि पूरे विधि विधान के बाद ही काटो एक पेड़ और फिर लगाओ 10 पेड़, और पुरखों की भी यही रीत है। मगर तू कलह मत कर, मैं काटूंगा पेड़।
1: बापू दुख मत कर, कल हम पेड़ काटेंगे ही नहीं है? कोई बहाना बना देंगे ठीक।
0: हाँ यही ठीक रहेगा। अरे तू तो बड़ा सयाना है रे चुब्बा।
1: क्या भूल मिलकर बातें कर रहे हो दोनों?
0: कुछ नहीं,
1: जरूर मुझे बुद्ध बनाने की बात होगी।
0: नहीं नहीं नहीं,
1: अब तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, अपने सामने कटवाऊंगी पेड़। अब तुम लोगों का कोई भरोसा है क्या?
0: नहीं नहीं नहीं, तू क्या करेगी जंगल में जाकर, हम काट लाएंगे ना एक अच्छा सा पेड़।
3: हाँ अम्मा, वहाँ ऐसे ऐसे भयानक जानवर होते हैं, ऐसे ऐसे जानवर होते हैं अम्मा की।
1: जैसे मैं तो कभी जंगल गई ही नहीं, मैंने तो सोच लिया है मैं जंगल जाऊंगी ही। सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी करनी है, दिन भर का खाना बनाना है। अब चलो खाना खाकर जल्दी सो जाओ।

0: चुप्पा क्या हुआ बेटा?
1: डर मत बच्चे, मैं यही हूँ तेरे पास।
0: अरे कोई डरावना सपना देखा क्या? क्या सपना देखा तूने?
2: अम्मा मुझे डर लग रहा है अम्मा।
1: कोई डरावना सपना देखा होगा बच्चे? अरे क्या देखा तूने?
2: अम्मा अम्मा मैंने देखा कि हम जंगल में पेड़ काट रहे हैं और अम्मा पेड़ रोने लगा, मुझे मत काटो मत मारो, मुझे दर्द होता है, मेरी लकड़ी ले लो, पत्ते ले लो, फूल ले लो, फल ले लो, पर मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारा मीत हूँ माँ। माँ उसने ये कहा, उसने कहा अम्मा मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है अम्मा, और वो रोने लगा। अम्मा अम्मा जोर जोर से रोया, मगर हमने उसे काट ही दिया, काट ही दिया। वो चिल्लाया अम्मा, मैं भी चिल्लाया।
1: डर मत, अरे वो तो सपना था। सोचा सोचा बेटा, मैं तेरे पास ही तो लेटी हुई हूँ यहाँ। सोचा सोचा, शाबाश सोचा बेटा, है ना? चुप्पा तो सोएगा। सो गया, इसने तो मुझे डरा ही दिया। अरे कैसे कैसे सपने देखता है ये?
0: तो फिर कल पेड़ काटने नहीं जाना ना?
1: क्यों नहीं, बिल्कुल जाना है। जा जा सो जा। अरे वो तो सपना था, उससे क्या होता है। अरे सो जा, सुबह जल्दी उठना है।

0: चुब्बा, अरे ओ चुब्बा, अरे उठ बेटा, बुधवा उठो ना, भोर हो गई, मैं तैयारी करती हूँ चलने की।
1: अरे तो जाना ही पड़ेगा, तू मानेगी नहीं?
0: ना, मैं तो ना मानू, चल
1: चल, तेरी यही हट है तो चल चल चुब्बा।
0: अरे कुल्हाड़ी तो ले लो, पेड़ क्या हाथों से काटोगे?
1: अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, आदत नहीं है ना।
0: आदत नहीं है, ये नियत ना है वो। चल चुब्बा, वो रस्सी उठा, लट्ठों को बांधना भी तो होगा ना।
2: अच्छा अम्मा।
0: अरे अब चलो भी,
1: चलो
2: चलो।

0: लटका रखा है बाप बेटे ने। पेड़ की लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे तुम्हारे लिए भी तो चीजें आएंगी अच्छी अच्छी।
1: अम्मा मुझे नहीं चाहिए अच्छी चीजें। हाँ
2: मुझे भी नहीं।
0: ठीक है तुम लोग मत लेना, सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं अपने लिए लाऊंगी बस।
3: मैं तो गहना लूंगी, मैं तो साड़ी लूंगी, गहना गरिया लूंगी, मैं तो साड़ी लूंगी, बढ़िया खाना खाऊंगी।

0: साड़ी लूंगी।
1: अरे बाप रे, इस जंगल में शेर भी है क्या?
2: अरे शेर तो नहीं है, कोई बघेरा वगैरह होगा। अरे डर मत, ये कुल्हाड़ी है ना, वैसे भी इस तरफ आदमियों का आना जाना लगा रहता है, इससे जानवर इधर नहीं आते।
1: फिर भी
3: अम्मा तू भी चले वापस?
1: ना वापस तो फिर भी नहीं जाएंगे हम। हाँ
3: अम्मा क्या सोच रही है?
4: यही कि कौन सा पेड़ काटना ठीक रहेगा। क्यों बुधवा, ये जामुन कैसा रहेगा रे?
2: ये जामुन?
4: हाँ
2: चलो इसी को काट देते
3: हैं। नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा, इसे नहीं, ये तो फलों से लदा है।
2: हाँ।
3: हर साल फल देता है, इसे मत काटो।
4: हाँ ये बात तो ठीक है, जामुन कहाँ से खाऊंगी। तो फिर उस साल के पेड़ को काटते हैं चलो।
2: अरे रे क्या बात करती हो, वो तो अभी पूरा बढ़ा भी नहीं है, ये तो वैसे हुआ कि जैसे किसी को छुटपन में ही मरना पड़े।
4: हाय रे, बात तो तुम्हारी सच है।
3: तो अम्मा ऐसा करते हैं, वो जो देवदार के बहुत सारे पेड़ है ना, उनमें से एक को काट देते हैं।
4: अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। कितने सुंदर हैं ये पेड़, अरे उन्हें रहने दो। ये रोन का पेड़ कैसा रहेगा बुधवा?
2: ये
4: है भी काफी पुराना, फल भी नहीं है इस पर, तो
2: फूल तो हैं, फल भी आएंगे। अरे हजारों पक्षियों की भूख मिटाएंगे। नहीं नहीं नहीं नहीं ठीक नहीं रहेगा इसे काटना। चलो ठीक है, काटना ही है तो ये नीम का पेड़ काट देते हैं।
4: अरे पागल हुआ है, ये नीम का पेड़ तो दवा दारू के काम आता है, कोई बीमारी नहीं जिसका इसके पास इलाज ना हो। हाँ
2: अच्छा, तब तो अरार का पेड़ भी छोड़ना पड़ेगा है?
4: क्यों,
2: इसका भी नीम वाला हाल है, बल्कि ये तो सुना है सबकी किस्मत भी जानता है, इसे कौन काटे।
3: चलो आगे देखते हैं, कोई ना कोई बेकार पेड़ तो मिल ही जाएगा, ऐसा क्या है।
4: हाँ हाँ चलो चलो, चलो। आगे चलकर देखते हैं। चलो
2: ये देखो ये पेड़।
4: देख लो।
3: अम्मा अम्मा वो देखो, ओक का पेड़। और वहीं बबूल भी है। चलो अम्मा काटे
4: चलो। इधर से निकल कर आओ।
3: अच्छा
2: घर से बेटा।
4: आई क्या हुआ चुप्पा?
2: क्या हुआ
3: अम्मा? अम्मा कांटा चुप गया। आई
4: अरे दिखा तो
3: अम्मा, लगता है पेड़ कह रहे हैं हमें मत काटो, हमें मत काटो। बापू इन्हें मत काटना, देखो ये रो रहे हैं।
2: ठीक है नहीं काटेंगे। हाँ।
3: देखा अम्मा कैसे लहलाने लगे, जान बचने से खुश हो रहे होंगे है ना।
2: हाँ बेटा ये देखो, ये चीड़, देवदार, ओक, खजूर और ताड़।
4: हाँ।
2: ये तो है ही सदाबहार, इन्हें काटने से क्या फायदा
1: और नुकसान भी क्या है।
2: बहुत नुकसान है, हमारे पुरखे कहते थे इन्हीं की बदौलत हवा पानी साफ रहता है, बरखा होती है, बाढ़ रुकती है। सोचो हमारी तरह सभी लोग चल दें पेड़ काटने तो कितना नुकसान हो जाए।
4: रहने दो अपनी बातें, कोई और पेड़ ढूंढो। ये कौन सा पेड़ है, ना फूल ना फल।
2: क्या पता, मुझे सबके नाम थोड़ी मालूम है, मगर मैं तो इसे नहीं काटूंगा।
3: क्यों? देखो ना माँ, ये पेड़ हजारों लाखों कीड़ों का घर है, उन्हें दूध पिला रहा है।
4: और वो वाला, उसमें तो ना कीड़े दूध पी रहे हैं, ना फल है, ना फूल है, कुछ भी नहीं है उसमें, और ना ही उससे कोई लाभ है, उसे तो काटो कम से कम।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा, उसे छोड़ दो। देखो अम्मा, इस पेड़ की घनी पत्तियों में सैकड़ों पंछियों का घोंसला है।
2: हाँ।
3: पेड़ कटा तो वो सब बेघर हो जाएंगे। सोचो माँ, अगर हमारा कोई घर तोड़ दे तो हमें कैसा लगेगा।
2: हाँ बिल्कुल,
4: सचमुच इस पर तो कोयल भी रह रही है। बुधवा रहने दे इसको भी।
2: अच्छा।
4: मुझे कोयल का गाना बहुत अच्छा लगता है, तू रहने दे इस पेड़ को तो।
2: ठीक है। अरे सुन, कोयल खुश होकर तुझे धन्यवाद दे रही है बुधनी।
3: अम्मा जिन जिन पेड़ों को तुमने बचा लिया वो सभी तुम्हें दुआएं दे रहे होंगे।
4: मुझे बनाओ मत, मैंने अभी बदला नहीं है अपना इरादा। चलो ढूंढो काटने लायक पेड़। हाँ। लो, इसमें हंसने की क्या बात है, चलो ढूंढो ना।
2: अरे अब कहाँ से ढूंढे, जंगल के सारे पेड़ों को तो तूने बख्श दिया, अब किसे काटे।
4: क्या सारे पेड़ों को बख्श दिया?
2: और क्या।
4: ना जी ना, अभी तो हजारों पेड़ होंगे इस जंगल।

0: है तो सही, मगर वो सब भी इन्हीं के भाई बंद हैं। जो बात इनके साथ वही उनके साथ।
1: जीवा जीवा जी, अब तो पेड़ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा।
2: अरे चुप।
0: क्या हुआ?
1: अरे चुप्पा, हाँ, पेड़ अब नहीं कटेगा। तो यही बात थी ना, तुम दोनों शाम को फुसफुसा कर यही बातें कर रहे थे ना, कि अम्मा को जंगल में बहला लेंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। हैं,
0: लेकिन अम्मा,
2: तू भी तो मान गई ना कि कोई भी पेड़ कटने लायक नहीं है। अब तू ही बता किसे काटे।
1: रहने दे रहने दे, तुम दोनों बड़े सयाने हो, मुझे हमेशा ऐसे ही बहला देते हो। मैं जिस भी पेड़ पर हाथ रखूंगी, तुम उसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बनाओगे कि मुझी को दया आ जाएगी। हाय रे, मेरी इच्छाएं क्या कभी पूरी नहीं होंगी?
0: होंगी होंगी, जरूर होंगी, मगर ऐसे नहीं।
1: फिर कैसे?
0: चल घर, चलते चलते बताता हूँ कि कैसे।
1: चल।
0: सुन, हम सब मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाएंगे अपने घर के आगे। फिर हमें फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, बुलबुलें आएंगी, कोयल गाएंगी, गीत गाएंगी, महुआ सींचेंगे, हम फिर मेले जाएंगे, खूब काम करेंगे। हम तीनों मिलजुल कर ताल बनाएंगे, मछली पालेंगे, मछली, फल, सब्जी, महुआ, कटहल बेचेंगे। हाँ, पैसे पाएंगे, बुधनी को देंगे, बुधनी खुश होगी, कलह नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, झगड़ेगी भी नहीं। क्यों बुधनी, तब भी झगड़ेगी क्या?
2: क्यों अम्मा, तब भी झगड़ेगी?
0: बोलना।
1: नहीं रे नहीं, मुझे क्या शौक है झगड़ने का। चल।

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम अर्जुन का निशाना।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए।
2: बात बहुत पहले की है। हमारे देश में एक राजा थे पांडु। पांडु के पांच पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते हैं। युधिष्ठिर इनमें सब में बड़े थे। युधिष्ठिर से छोटे थे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। भीम गदा चलाने में बहुत कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। गुरु द्रोणाचार्य समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने पेड़ पर मिट्टी की एक चिड़िया टांग दी। फिर राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने बारी बारी से अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा,
3: उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है?
2: किसी ने कहा,
4: गुरुजी, मुझे राजकुमार, पेड़ और चिड़िया सब कुछ दिखाई दे रहा है।
2: किसी ने कहा,
5: मुझे पेड़ और चिड़िया दिखाई दे रही है।
3: हाँ?
2: किसी ने कहा,
6: मुझे चिड़िया के पंख दिखाई दे रहे हैं।
2: अर्जुन की बारी आने पर द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा,
7: गुरुजी, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है।
2: अब द्रोणाचार्य ने बारी बारी से सभी को बाण चलाने का आदेश दिया। अर्जुन का निशाना तो ठीक आंख पर लगा, किंतु और भाइयों का निशाना चूक गया। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बताया,
3: क्या तुम लोग समझ गए कि अर्जुन का तीर निशाने पर क्यों लगा? जिसे केवल लक्ष्य दिखाई दे वही सफल होता है। तुम लोगों को लक्ष्य के साथ साथ और बहुत सी चीजें भी दिखाई दे रही थीं, इसलिए तुम्हारा ध्यान बट गया और निशाना ठीक नहीं बैठा। अर्जुन का ध्यान केवल चिड़िया की आंख पर था, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल ठीक बैठा और बाण ठीक चिड़िया की आंख पर लगा।
0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम अर्जुन का निशाना और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार। उमंग, उमंग।

अभी आप NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है कार्यक्रम रांची मेलोडीज। शुरुआत करते हैं फिल्म साहिब बीबी और गुलाम से। ये गाना आवाज आशा भोसले की है। शकील बदायनी ने इस गीत को लिखा, संगीत वट किया हेमंत कुमार ने।

एस एच बिहारी का लिखा गाना सुनते हैं फिल्म सावन की घटा से। लता आशा भोसले की आवाज है, संगीत पर किया ओपी नैयर ने।

आइए सुनते हैं फिल्म मेरा साया से ये गीत। अशोक भोसले की आवाज़ है, राजा मेहंदी अली खान की रचना, संगीत बत किया मदन मोहन ने।

आइए सुनते हैं फिल्म कारवां से ये गीत। आवाजें आशा भोसले और राहुल देव बर्मन की है। शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की, धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम रांची में लौटेस यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखरा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में 1042 नव चयनित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इनमें पहली से पांचवी कक्षा के लिए 274 तथा छठी से आठवीं कक्षा के लिए 768 सहायक आचार्य शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने धनबाद जिले के भूली बस्ती स्थित मतदान केंद्र संख्या 38 उत्क्रमित मध्य विद्यालय तथा मतदान केंद्र संख्या 210 गुरु नानक मध्य विद्यालय पर बीएलओ द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में किए जा रहे कार्य एवं कार्ययोजना की समीक्षा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। खूंटी अंचल सभागार में आज जन वितरण प्रणाली PDS के सभी डीलरों के साथ BSO खुशबू तिर्की ने बैठक की। इस बैठक में उन्होंने सभी डीलरों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक माह 1 से 20 तारीख के बीच शत प्रतिशत राशन वितरण हर हाल में सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि राशन वितरण में अनियमितता करने वाले डीलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरायकेला खरसावा जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में अवैध बालू परिवहन के खिलाफ पुलिस ने आज कार्रवाई करते हुए एक हाईवा को जब्त किया। थाना प्रभारी अंजनी कुमार के अनुसार आज तड़के टोल ब्रिज के पास गश्त के दौरान हाईवा को पकड़ा गया, जिस पर क्षमता से अधिक बालू लदा था और उस पर कोई नंबर प्लेट नहीं लगी थी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सुनवा थाना क्षेत्र में आज सवेरे हुए एक सड़क हादसे में घायल 23 वर्षीय शिक्षिका वंदना महतो की मौत हो गई है। विद्यालय जाते समय तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए चाईबासा सदर अस्पताल रेफर किया गया था। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार,
0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आओ साथ चले, चर्चा सीखें, निखरें और आगे बढ़ें। साथ ही सुनेंगे भेंट वार्ता, कौशल विकास, अवसर, आत्मविश्वास और मुख्य धारा से जुड़ाओ। भेंट वार्ता कर हरप्रीत सिंह अहलुवालिया, भेंटकर्ता सिंधु मिश्रा, प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की, प्रस्तुति सौर सिंधु मिश्रा।

0: कार्यक्रम आवाज़ जिले में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। स्वीकार करें कार्यक्रम की सहयोगी सिंधु मिश्रा का नमस्कार। हमारा कार्यक्रम विभिन्न विषयों से संबंधित जानकारी आप तक पहुंचाता है, जिनमें विकास एक महत्वपूर्ण विषय है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरे देश भर में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विकास हेतु बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, और श्रोताओं इन योजनाओं से हमारे ग्रामीण बंधु जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं अपने हुनर के आधार पर एवं जो स्वरोजगार हेतु सरकारी योजनाएं उनके लिए लाभकारी हैं उनसे जुड़कर लाभ ले रहे हैं। देश, राज्य, समाज, हमारा ग्रामीण क्षेत्र और जन जन तक इन योजनाओं को पहुँचाने का सफल प्रयास विभिन्न सरकारी एवं निजी संस्थानों द्वारा किया जा रहा है। ऐसी ही एक संस्था है जेवियर समाज सेवा संस्थान, और उसके एक विभाग ग्रामीण उद्यमिता विकास केंद्र द्वारा सुदूर ग्रामीण इलाके के ग्रामीणों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर उन्हें अपने स्वयं का रोजगार प्राप्त करने में सफल प्रयास कर रहा है। साथ ही साथ उनके हुनर का विकास हो रहा है और हमारे ग्रामीण रोजगार के सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं। ग्रामीण उद्यमिता विकास केंद्र किस प्रकार प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दे रहा है और विकास हेतु उनका किस प्रकार सहयोग कर रहा है, इन्हीं विषयों पर हमारी बातें हुई ग्रामीण उद्यमिता विकास विभाग के विभागाध्यक्ष श्री हरप्रीत सिंह से। नमस्कार सर।
1: नमस्कार
0: सर। सबसे पहले आपसे ये मैं जानना चाहूंगी कि ये ग्रामीण उद्यमिता विकास केंद्र की स्थापना किन उद्देश्यों के साथ की गई और इसमें कौन कौन से क्रियाकलाप होते हैं?
1: ये जेवियर समाज सेवा संस्थान का ग्रामीण उद्यमिता विकास संस्थान जो है, इसकी शुरुआत हुई थी 1974 में। उस समय जो हमारे निदेशक थे फादर MVD बॉगर्ड, उस समय विचार आया ये मन में कि इस ओर काम करना चाहिए, जो हमारे देश के हमारे समाज में जो युवा युवती हैं जो बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं, तो इस समस्या को दूर करने के लिए कुछ करना चाहिए। तो ये उनके मन में उस समय विचार आया था, तो 1974 में इस विभाग की शुरुआत हुई थी। तो 1974 से लेके अभी तक ये विभाग लगातार उद्यमिता के क्षेत्र में हर तरीके के काम, चाहे वो प्रशिक्षण का काम हो, चाहे कौशल विकास का काम हो, उद्यमिता विकास का काम हो, या मूल्यांकन का काम हो, शोध का काम हो, या शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का काम हो, जागरूकता का काम हो, उद्यमिता से संबंधित हर तरीके के कार्यक्रम, हर तरीके के प्रोग्राम यहाँ पर चलाए जा रहे हैं।
0: सर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ग्रामीण उद्यमिता विकास, तो ग्रामीणों की उद्यम के अनुसार इसमें डेवलपमेंट के वर्क हो रहे हैं या फिर हुनरमंद जो हमारे ग्रामीण भाई बहन हैं उनको भी इसमें शामिल किया जा रहा है?
1: जी बिल्कुल, उद्देश्य जैसा मैंने कहा कि इसमें युवक युवतियों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना, इसमें ज़्यादा हम लोगों का फोकस रहता है ग्रामीण क्षेत्र के जो युवक युवतियां हैं उन लोगों पर, और जो आदिम जनजाति के लोग हैं या अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, इस तरीके के वर्ग के लोगों को ज़्यादा हम लोग इस और प्रेरित करने का हम लोगों का शुरू से प्रयास रहा है इस विभाग का। इसीलिए विभाग का नाम भी वही रखा गया है, ग्रामीण उद्यमिता विकास संस्थान। तो ये शुरू से ही फोकस एरिया हम लोगों का रहा है कि उन्हीं लोगों को हम लोग ज़्यादा इस और शामिल करें, जिससे कि वो लोगों को भी जो सरकार की जो इस क्षेत्र में जो योजनाएँ हैं, जो स्कीम्स हैं, उसका वो लोग भरपूर लाभ उठा सकें।
0: यानी ग्रामीण उद्यमिता विकास केंद्र को सरकारी जितनी भी योजनाएं विकास हेतु चलाई जा रही हैं उन कल्याणकारी योजनाओं से इस केंद्र को भी जोड़ा गया है। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि केंद्र और राज्य सरकार की किन किन योजनाओं को इसमें शामिल किया गया है विकास के लिए?
1: ये आपने सही पूछा, जितने भी हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम चलाते हैं अपने विभाग में, ये सब हम लोग अनुरोध कार्यक्रम चलाते हैं, यहाँ पे प्रायोजित कार्यक्रम चलाते हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग मंत्रालय मंत्रालय हैं उनके अनुरोध पर हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम चलाते हैं। और जैसे अभी हम लोगों के सीरीज में लगातार हम लोग एक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं अलग अलग ट्रेड्स पर, विशेषकर दो ट्रेड पर ज़्यादा हम लोग चला रहे हैं। ये हम लोग राज्य सरकार का जो कल्याण विभाग है उसका एक जो उपक्रम है ट्राइबल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उनके अनुरोध पर हम लोग यहाँ पर लगातार कौशल विकास का कार्यक्रम चला रहे हैं। और फिलहाल अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक मंत्रालय है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनके अनुरोध पर हम लोग उद्यमिता पर जागरूकता कार्यक्रम और फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम वो हम लोग लगातार कर रहे हैं। इसमें हम लोग अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक के जो फैकल्टीज हैं उन लोगों को हम लोग कार्यक्रम में शामिल करते हैं और उद्यमिता विकास के बारे में जानकारी देते हैं फैकल्टीज लोगों को भी और स्टूडेंट लोगों को भी। फैकल्टी लोगों को इसलिए भी जानकारी दी जा रही है क्योंकि सरकार का इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि वो लोग उद्यमिता विकास के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें और फिर आगे जाके अपने जो उनके कॉलेज में इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक में जो विद्यार्थी हैं उन लोगों को फिर उद्यमिता विकास के बारे में जानकारी दें, जिससे कि जो हमारे अभी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उन लोगों को ये भी एक रास्ता है, इसकी भी जानकारी मिले, नौकरी के अलावा अपना भी हम कुछ काम कर सकते हैं डिग्री प्राप्त करने के बाद, डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद। तो इस उद्देश्य से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है जो हम लोग लगातार चला रहे हैं।
0: ये बात

0: बिल्कुल सही कही आपने सर कि कौशल विकास के भी कार्यक्रम उद्यमिता विकास केंद्र में तो चल ही रहे हैं, बाकी और भी बहुत सारे केंद्रों में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और साथ ही साथ ये सरकार की एक बेहद कल्याणकारी योजना है ग्रामीणों में दृढ़ता और आत्मबल बढ़ाने के लिए। तो सर कौशल विकास से संबंधित कौन-कौन से कार्यक्रम यहाँ पे चलाए जा रहे हैं और किस तरह के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं?
1: फिलहाल अभी हम लोग कौशल विकास पर दो ट्रेड पर कार्यक्रम चला रहे हैं। एक है कंप्यूटर हार्डवेयर असिस्टेंट का, 3 महीने का ये आवासीय कार्यक्रम है, सीखने वालों के लिए निशुल्क है। और दूसरा ट्रेड है इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंसेस, इस पर ये भी 3 महीने का आवासीय सीखने वालों के लिए निशुल्क कार्यक्रम है। ये अभी फिलहाल ये दो ट्रेड पर हम लोग कौशल विकास कार्यक्रम चला रहे हैं।
0: तो आपको क्या लगता है सर कि ग्रामीण क्षेत्र के कितने लोग इसमें शामिल होते हैं और कितनी जागरूकता उनमें है?
1: इसमें जैसे एक बैच में हम लोगों को 30 जन हम लोग रखते हैं, तो 30 बैच तो हम लोग 30-30 करके ट्रेनिंग देते जा रहे हैं, बल्कि हमारा एक बैच खत्म नहीं होता है और अगले बैच के लिए आवेदन पहले से ही आ जाते हैं। और चूंकि ये पहले से चले आ रहा है और हमारे संस्थान में, हमारे विभाग में इस तरीके का प्रशिक्षण कई सालों से दिया जा रहा है, तो हमारे यहाँ पे लोगों को जानकारी है कि इस तरीके की प्रशिक्षण दी जाती है। तो बहुत बार तो लोग अपने से ही आते हैं हम लोगों के यहाँ कि जो इच्छा रखते हैं प्रशिक्षण की, और कई बार हम लोग भी अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं कि लोगों को जानकारी मिल सके कि इस तरीके की कल्याणकारी योजना के तहत जो प्रशिक्षण कार्यक्रम हम लोग यहाँ पर चला रहे हैं उसका ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ उठा सके।
0: तो सर इस केंद्र के मार्फत जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं विकास संबंधी, तो कौशल विकास के अलावा और कौन-कौन से कार्यक्रम हैं जो कि विकास संबंधी हमारे ग्रामीणों के लिए चलाए जा रहे हैं?
1: वैसे तो हमारे संस्थान में ऐसे और भी कई अलग अलग विभाग हैं जो कि कल्याणकारी और अलग अलग कार्यक्रम वगैरह चलाते हैं, लेकिन उद्यमिता विकास जो ये जो विभाग में हम लोग उद्यमिता से संबंधित ही कार्यक्रम चलाते हैं। ऐसे नहीं तो हमारे यहाँ और भी अलग अलग और भी कई विभाग हैं जो अलग अलग विकास के कार्यक्रम वो लोग तो चलाते हैं, वो लोग करते हैं।
0: सर आपको क्या लगता है केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो ये विकास संबंधी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं या योजनाएं लागू की गई हैं, कितना अभी धरातल पर वो उतर चुका है, कितना क्रियान्वित हो चुका?
1: इस पर काम तो बहुत हो रहा है और अच्छा काम हो रहा है, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि इस पे और काम होना अभी बाकी है, बल्कि और तेजी से और काम होना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 1974 में हमारे उस समय जो निदेशक थे उनका ये विजन था, जो उस समय उन्होंने इस विभाग की शुरुआत की, उस समय शायद उद्यमिता शब्द से बहुत लोग वाकिफ नहीं थे, जानकारी नहीं थी जो उन्होंने इस काम की उस समय शुरुआत की। और उस समय से लेके और अब लोगों को पिछले कुछ सालों से सरकार का भी ध्यान इस ओर बहुत गया है और लोगों को अब जानकारी हो रही है इसकी अहमियत और इसका जो इम्पोर्टेंस है, इसकी ज़रूरत पर लोगों को अब ज़्यादा ध्यान आ रहा है, इसलिए अब इस ओर काफ़ी काम किया जा रहा है, काफ़ी इस क्षेत्र में काम किए जा रहे हैं, लेकिन अभी और काम की अभी आवश्यकता है। इसलिए सरकार की भी इस क्षेत्र में इस तरह की योजनाओं पर, इस तरीके के कार्यक्रम पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है आजकल।
0: सर अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपके केंद्र से जुड़कर यानी ग्रामीण उद्यमिता विकास केंद्र से जुड़कर अब तक कितने उद्यमी लाभ प्राप्त कर चुके हैं या कितने प्रशिक्षणार्थी लाभ प्राप्त कर चुके हैं?
1: अभी तक हम लोगों ने 325 के लगभग कार्यक्रम यहाँ पे चलाया है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम या कौशल विकास कार्यक्रम या उससे संबंधित कार्यक्रम, इतने लाभान्वित हम लोगों के यहाँ से प्रशिक्षण लेके जा चुके हैं अब तक। करीब एक बैच में हम लोग वही करीब 35-30 पार्टिसिपेंट रहते हैं, तो उस हिसाब से अभी तक इतने सालों में बहुत प्रशिक्षणार्थी यहाँ से, हमारे यहाँ से प्रशिक्षण ले जा चुके हैं।
0: आपको क्या लगता है सर कि रांची से सटे हुए जो ग्रामीण इलाके हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनके कितने गांव वासी अब तक ट्रेनिंग ले चुके, यहाँ लाभ प्राप्त कर चुके?
1: ये तो संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन ये करीब 7,500 के लगभग यहाँ से, उससे ऊपर ही, उससे ज्यादा लोग यहाँ से, हमारे यहाँ से प्रशिक्षण ले जा चुके हैं अभी तक, 1974 से लेके अभी तक।
0: तो आपको क्या लगता है सर जब ग्रामीण वासी यहाँ से जाते हैं ट्रेनिंग प्राप्त करके और खुद का यानी स्वरोजगार जब वो अपनाते हैं, तो कैसा उनमें रुझान दिखता है, वो क्या कहते हैं?
1: वो तो कहते हैं जो मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि हम लोग भी उनमें जो बदलाव महसूस करते हैं वो बहुत ज्यादा बदलाव उनमें आ जाता है हमारे यहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद। जैसा मैंने आपको पहले कहा कि हम लोग का ज्यादा फोकस रहता है ग्रामीण क्षेत्र के युवक युवतियों को प्रशिक्षण देना, या जो जाति विशेष में आते हैं उन लोगों को हम लोग यहाँ पर प्रशिक्षण देते हैं। तो हमारे यहाँ प्रशिक्षण के लिए कई लोग ऐसे आते हैं जो कभी शहर में भी नहीं आए रहते हैं, और वो लोग जब शुरू शुरू में यहाँ पर आते हैं तो जैसा कि हम लोग उन लोगों को देखते हैं कि बहुत हैरान होते हैं यहाँ की चीजों को देखकर, और जो उन्होंने कभी पहले देखी नहीं रहती है। फिर जब प्रशिक्षण प्राप्त करके वो लोग जाते हैं तो वो खुद में वो लोग भी अपना बहुत बदलाव महसूस करते हैं, और हम लोग तो खैर देखते ही हैं उनमें बहुत सा बदलाव। और वही प्रशिक्षणार्थी, कई बार ऐसे प्रशिक्षणार्थी बहुत से ऐसे रहते हैं जो हिंदी बोलना नहीं जिनको आता ठीक से, वो लोग यहाँ पर हमारे यहाँ पर प्रशिक्षण में शामिल होते हैं। और हम लोग के यहाँ पर प्रशिक्षण लेने के बाद हम लोग का प्रशिक्षण का तरीका भी ऐसा है कि प्रशिक्षण, चाहे वो उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण हो या कौशल विकास का प्रशिक्षण हो, उसके साथ ही साथ हम लोग जो व्यक्तित्व विकास के बारे में भी हम लोग उन लोगों को जानकारी देते हैं, जिससे कि ओवरऑल डेवलपमेंट उनमें आ सके, विकसित हो सके उनमें। तो बहुत बदलाव उनमें आता है, और वही लोग फिर प्रशिक्षण के बाद फिर अपना काम भी वो लोग कई लोग करते हैं, और कई लोग नौकरी में भी जाते हैं। यहाँ तक कि बीच बीच में राज्य सरकार इस तरीके के हमारे प्रशिक्षणार्थियों के लिए सीधी नियुक्ति का भी प्रावधान रखती है कि राज्य सरकार के कई विभाग में जब नियुक्ति के लिए आता है आवेदन, तो हमारे यहाँ से जो प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए प्रशिक्षणार्थी अगर अप्लाई करते हैं तो उनके लिए कोई टेस्ट, साक्षात्कार या ऐसा कुछ भी नहीं लिया जाता। ये हमारे संस्थान की क्रेडिबिलिटी को लोग जानते हैं, समझते हैं। तो हमारे यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए प्रशिक्षणार्थियों को कई बार उनके लिए सीधी नियुक्ति का तरीका अपनाया जाता है, और उन लोगों को सीधी नियुक्ति दी जाती है राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों से।
0: चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और लोग अच्छे से विकास कर सकें, हमारे विशेषकर ग्रामीण इलाके से जो हमारे ग्रामीण भाई बंधु हैं उनका विकास अच्छे से हो सके, इसके लिए हम सब प्रयासरत हैं। एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि ग्रामीण उद्यमिता विकास केंद्र में जो सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसके अलावा क्या गैर सरकारी संस्थानों का भी सहयोग इसे प्राप्त होता है?
1: कार्यक्रम चलाने में हम लोग तो सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही के अनुरोध पर हम लोग कार्यक्रम चलाते हैं, लेकिन ज्यादा सरकारी जो सरकार के मंत्रालय हैं, सरकार के मंत्रालय के अलग अलग विभाग हैं उन्हीं के अनुरोध पर ही हम लोग चलाते हैं। ऐसे गैर सरकारी संस्थाएं भी हैं, उनके अनुरोध पर भी हम लोग कार्यक्रम यहाँ पर चलाते हैं।
0: सर, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने कहा कि ऐसे लोग भी यहाँ आते हैं प्रशिक्षण प्राप्त करने, ऐसे गांव से भी आते हैं जिन्होंने कभी यहाँ की तकनीकों को नहीं देखा, वो अच्छे से बोलना भी नहीं जानते, तो अति पिछड़े इलाके से लोग आते हैं। तो सर, मैं जानना चाहूंगी विशेष तौर से उनके विषय में कि किस प्रकार का उनका हाव भाव आपको जब वो प्रथम मुलाकात होती है तो किस तरह से उनका इंटरेस्ट आपको नजर आता है?
1: जब यहाँ पर आते हैं तो उनका हाव भाव कुछ अजीब सा रहता है, जिससे कि हम लोगों को इस बात का पता चलता है कि शायद इस तरीके के वातावरण में वो लोग कभी गए नहीं हैं, और वो लोग आदि नहीं हैं इस तरह के वातावरण से, इस तरीके के माहौल से। जैसे जब शुरू में कोई आया और अगर फोन में बात करने के लिए उसे कहा जाता है तो फोन पकड़ना भी नहीं आता है उनको, और आते साथ ही आके रोड में खड़े होके बहुत गौर से गाड़ियों को देखना, लोगों को देखना और दुकानों में देखना बहुत हैरानी से, और उनसे बातचीत करके भी हम लोगों को पता चलता है, उन लोगों वो लोग बोलते भी हैं कि हम लोग ऐसा कभी हम लोगों ने देखा नहीं है। तो इस वजह से वो लोग को कभी ऐसा मौका नहीं मिला था कि हम लोग इस तरीके के माहौल में जाएं और प्रशिक्षण प्राप्त करें। और लेकिन प्रशिक्षण के बाद फिर जो हम लोग उन लोगों में बदलाव देखते हैं कि वही लड़का जो पहले ठीक से बात नहीं कर पाता था और चीजों को देख के हैरान होता था, वही लड़का फिर ट्रांसफार्मर के ऊपर चढ़ के और ट्रांसफार्मर वो रिपेयर करता है और रिपेयर उसको बनाता है, खराब हुई चीजों को उसको दुरुस्त करता है, सही करता है। तो वो हमें भी खुशी होती है और उसके साथ साथ उसे भी बहुत खुशी होती है। तो ये खुशी और ये ज्ञान और इस तरीके का प्रशिक्षण प्राप्त करके हमारे प्रशिक्षणार्थी यहाँ से जाते हैं।
0: सर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है आपने बताई। एक बात और मैं जानना चाहूंगी कि इनमें साक्षरता का अभाव रहता है, लेकिन जब आप यहाँ प्रशिक्षण देते हैं तो क्या समस्याएं देखी जाती हैं, कैसे उनको समझा पाने में आप सफल होते हैं?
1: आपने सही कहा कि अलग-अलग प्रशिक्षणार्थियों के लिए उनको प्रशिक्षण देने का तरीका भी अलग होना चाहिए। हमारे जो प्रशिक्षणार्थी, जैसे मैंने कहा कि जो दूर दरार ग्रामीण क्षेत्र के जो युवक युवतियां हैं, जो उतने साक्षर नहीं हैं और उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, वो लोगों के लिए जो हमारी जो प्रशिक्षण का या टीचिंग मेथोडोलॉजी रहती है वो अलग रहती है। हम लोग बहुत उन लोगों को लिखा नहीं सकते, तो हम लोग उन लोगों को समझाने का काम ज़्यादा करते हैं और अलग-अलग मेथड से, जैसे पार्टिसिपेटरी मेथड से हम लोग उन लोगों को हम लोग प्रशिक्षण देते हैं, पिक्टोरल मेथड हम लोग ज़्यादा प्रयोग करते हैं और अभ्यास, एक्सरसाइज, गेम्स, खेल के द्वारा हम लोग उन लोगों को जानकारी देने का प्रयास करते हैं, जिससे कि उनको रुचि भी बनी रहे और उनको हमारी बात समझने में आसानी हो और जल्द हमारी बात समझ सकें। और उनके साथ इस तरीके के, इस लेवल के प्रश्नार्थियों के साथ मेहनत जरूर ज़्यादा करनी पड़ती है। हमें किसी एक बात को समझाने के लिए हो सकता है कि कभी कभी 2 बार 3 बार नहीं, 8 बार 10 बार बोलना पड़ता है, तब
0: सही
1: उनके
0: बात
1: समझ में बात आती है।
0: जी।
1: तो इस तरीके से हम लोगों को उनके लेवल को समझते हुए हम लोगों को अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में बदलाव लाना पड़ता है।
0: सर, यहाँ ग्रामीण उद्यमिता विकास केंद्र में बहुत सारे प्रशिक्षणार्थी आपके सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। हमारे राज्य की एक और बेहद गंभीर समस्या है और वो है मुख्य धारा से भटकाव की। मुख्य धारा से अक्सर देखा जाता है कि बेरोजगारी की वजह से कहें या फिर गरीबी की वजह से, अशिक्षा के अभाव में हमारे जो युवक युवतियां हैं, महिलाएं हैं और जो ग्रामीण भाई बंधु हैं, वो भटक जाते हैं। तो आप ऐसे ग्रामीण भाई बहनों के लिए अपनी ओर से क्या कहेंगे?
1: मैं हमारे ऐसे भाई बंधु जो हैं, जो मुख्य धारा से भटक जा रहे हैं, उनको यही कहना चाहूंगा कि इस तरीके के कार्यक्रम सरकार के सहयोग से हम लोग इसलिए ही चला रहे हैं कि आप इस तरीके का जरिया अपना सकते हैं, दूसरी गलत चीजों पर ध्यान नहीं देकर इस ओर आप ध्यान दें, जिससे कि आप अपना, अपने परिवार का, अपने क्षेत्र का, अपनी समाज का विकास कर सकें और समाज के विकास में आप भागीदार बन सकें। और हमारा इस तरीके का कार्यक्रम चलाने का एक उद्देश्य ये भी है कि हमारे यहाँ से प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण लेने के बाद हमारा ये प्रयास रहता है कि वो स्वरोजगार हो, वो
0: बिल्कुल
1: अपना कुछ काम करे, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति स्वरोजगार होता है तो उसे अपना व्यवसाय, अपना कारोबार चलाने के लिए अन्य लोगों की भी, कुछ और लोगों की भी मदद की आवश्यकता पड़ती है। तो जब हमारे यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करके कोई व्यक्ति अपना कारोबार अगर शुरू करता है, अपना व्यवसाय शुरू करता है, अपना उद्योग अगर शुरू करता है, और उस अपने कारोबार में, अपने व्यवसाय में, अपने उद्योग में जब वो और लोगों को भी शामिल करता है और वो करना पड़ता भी है, तो उससे दोहरा लाभ मिलता है।
0: बिल्कुल
1: एक तो वो व्यक्ति खुद स्वरोजगार हो रहा है और दूसरा वो और अन्य लोगों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करता है।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: तो ये शुरू से ही हमारा ये उद्देश्य रहा है कि स्वरोजगार के प्रति ज्यादा हम लोग फोकस करते हैं, ज्यादा इम्फेसिस देते हैं, ज्यादा प्रेरित करते हैं लोगों को, जिससे कि वो और लोगों को भी अपने व्यवसाय में या और लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर प्रदान करे और रोजगार सृजन करे और लोगों के लिए।
0: सर, आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि स्वरोजगार अपनाने के लिए अगर हम थोड़े से प्रशिक्षण ले लेते हैं तो हमें दृढ़ता भी आती है, आत्मबल बढ़ता है और सचमुच स्वावलंबन भी हमारा बढ़ता है और साथ ही साथ आर्थिक, पारिवारिक और सामाजिक स्थिति भी सुदृढ़ होती है। सर, अंत में जो श्रोता भी रेडियो के माध्यम से आपको सुन रहे हैं, मैं चाहूंगी कि आप उन श्रोताओं से ग्रामीण उद्यमिता विकास केंद्र से जुड़ने के लिए अगर वो हुनरमंद है, अगर उनमें भी स्वरोजगार करने की ललक है, तो वो किस प्रकार इस केंद्र से जुड़ सकते हैं, इस विषय पे आप उन्हें थोड़ा बताएं।
1: हमारे जो युवक युवतियाँ अगर लाभ उठाना चाहते हैं, मैं कहूँगा कि जरूर लाभ उठाएं सरकार के इस तरीके की योजनाओं से, या हमारे संस्थान में इस तरीके का जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसका जरूर लाभ उठाएं, और उसके लिए हमारे संस्थान में आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये अलग अलग कार्यक्रम हमारे यहाँ चलते हैं, अलग अलग ट्रेड्स पर, अलग अलग तकनीक पर कौशल विकास या उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है। जो इच्छुक रखते हैं इस ओर प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो वो हमारे संस्थान में आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और मुझे खुशी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों, और जो सरकार का जो उद्देश्य है, हमारा जो उद्देश्य है, इस ओर जो ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठाएं।
0: सही बात है, समाज का हर तबका अगर इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से अगर जुड़ता है, और केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं, जो कल्याणकारी योजनाएं हमारे पूरे देश भर में चलाई जा रही हैं, अगर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीण भी अगर इससे जुड़ते हैं तो सचमुच विकास होगा और प्रगति के उच्चतम शिखर को हम जरूर पा सकेंगे। सर, आपने कीमती वक्त अपना निकाला और इस कार्यक्रम से आप जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आओ साथ चलें। इस बातचीत के बाद आइए आपको लिए चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनवाते हैं एक गीत।

श्रोता मित्रों, इस गीत के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम आवसा चने का वक्त अब यहीं समाप्त होता है। सिंधु मिश्रा को दें इजाजत। नमस्कार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है।

श्रोताओं, आइए आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर में यानी 4:35 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ सरगम। 5 बजे का समय होगा प्रादेशिक मुख्य समाचारों का। शाम 5:02 पर युववाणी, 5:30 पर श्रमिक लोक कार्यक्रम, शाम 6 बजे प्रादेशिक मुख्य समाचारों का प्रसारण किया जाएगा, 6:02 पर खेती बारी। शाम 6:30 पर हमारी दुनिया, शाम 7 बजे प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण किया जाएगा। 7:15 का समय होगा आदिवासी अखड़ा कार्यक्रम का। 7:45 पर प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद का प्रसारण किया जाएगा। रात्रि 8 बजे रजनीगंधा, 8:30 पर सुर्खियों में, 8:45 से समाचारों का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। रात्रि 9:30 पब्लिक स्पीक, रात्रि 10 बजे का समय होगा सुनहरी यादें कार्यक्रम का। 10:30 शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के तहत आज हम आपको सुनवाएंगे वीजी जोग का वायलिन वादन। रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचारों का प्रसारण किया जाएगा। तो ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में जानकारी।

0: Dominate the Rift with Aubrey.
1: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत. ये गीत है फिल्म 1942 अ लव स्टोरी से.

कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म रोजा से, संगीत है ए आर रहमान का और इसे गाया है एस पी बालसुब्रमण्यम।

और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। ये गीत है फिल्म डेढ़ इश्किया से। गायक हैं रेखा भारद्वाज और बोल हैं गुलजार के।

इस गीत के साथ ही हमारा आज का सांझ सरगम कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है।

0: श्रोताओं, आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। इनमें आरोग्य सेतु के दूसरे चरण, आयुष्मान सारथी चैटबॉट, आयुष्मान ऐप, ई सुश्रुत क्लिनिक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा विनिमय और भारत के डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य मानक शामिल हैं। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा, महेशपुर और पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में 30 जून से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम शुरू होगा। बूथ लेवल अधिकारी, राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट, वॉलंटियर एवं बीएलओ सुपरवाइजर को पूरी पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया संपन्न कराने का प्रशिक्षण दिया गया है। लोहरदगा में उपायुक्त संदीप कुमार मीणा ने आपूर्ति विभाग की समीक्षा करते हुए सभी मार्केटिंग अफसरों को 30 जून तक 100% खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि कोई भी पात्र लाभुक राशन से वंचित नहीं रहे। बैठक के अंत में सहकारिता सप्ताह के तहत उपायुक्त ने अधिकारियों और कर्मियों को सहकारिता की शपथ दिलाई। गिरिडीह जिले में आज पुलिस ने एक कार्यक्रम आयोजित कर 211 लोगों को उनका मोबाइल वापस लौटा दिया। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि आपका मोबाइल फिर से आपका कार्यक्रम के तहत खोया हुआ मोबाइल पुलिस ने आम आदमी को वापस की है। उन्होंने बताया कि इसके पहले भी 400 से अधिक मोबाइल आम आदमी को लौटाया गया है। पवित्र अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यह यात्रा 28 अगस्त को संपन्न होगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में गर्जन के साथ बारिश, आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम के मिजाज को देखते हुए राज्य के कई हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से FM के 101.7 MHz पे। सांध्यकालीन सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। आज के सभा में आप सब के साथ मैं हूँ राधा। नमस्कार। सबसे पहले जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम के 5:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गायक मुकेश के गाए चंद फिल्मी गाने। शाम के 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती गृहस्थी। कार्यक्रम के साथ होंगे आज कमलेंदु महतो। कंद वर्गीय सब्जियों की खेती कैसे करें इस पर चर्चा सुनेंगे। साथ ही लोकगीतों का आनंद लेंगे। रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों का स्वास्थ्य पर प्रभाव पर जानकारी प्राप्त करेंगे मनोज हेमरम से। शाम के 6 बजे आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम के 6:02 पर आप सुनेंगे क्षेत्रीय भाषा का कार्यक्रम हो अकड़ा। बकरी पालन से लाभ, इस विषय पर जानकारी देंगे गंगाराम कंडयांग। साथ ही इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे मिशन बात्सल्य योजना पर जानकारी और आनंद लेंगे लोक गीतों का। शाम के 6:30 पर सुनेंगे युवाओं का कार्यक्रम युवाणी। शाम के 6:55 पर हम आपको शामिल करेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम के 7:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे फरमाइसी फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। समाचार संध्या में क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे आकाशवाणी।

दिल्ली केंद्र से रात्रि के 8:45 पर, रात्रि 9:15 पर हम आपको पुनः शामिल करेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र के कार्यक्रमों में। गजलों का कार्यक्रम महफिल के साथ हम होंगे आपके साथ रात्रि के 10:00। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग आप सुनेंगे रात्रि के 10:30 पर। रात्रि 11:00 सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और सभा समापन की घोषणा हम करेंगे रात्रि के 11:10 पर। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गायक मुकेश के गाए चंद गीत। कार्यक्रम के साथ मैं हूँ राधा, नमस्कार। पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है फिल्म आनंद से। गीत रचना योगेश की है, संगीत दिया है सलील चौधरी ने।

कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 870-001-4242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 870-001-4242।
2: इस विराम के बाद पुनः एक बार स्वागत है कार्यक्रम गुलदस्ता में। आप सुन रहे हैं एक ही गायक मुकेश के गाए चंद फिल्मी गीत, और अब अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं। अगला गीत हम सुनते हैं फिल्म अनारी से हमने लिया है। शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन के संगीत।
3: सब

अंदाज इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। मजरू के बोल थे और संगीत नौशाद के। और अब अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है फिल्म कभी कभी से। गीत रचना साहिर की है, संगीत दिया है खयाम ने।

पूरब और पश्चिम इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। इंदीबर के लिखे बोल को संगीत से सजाया था कल्याण जी आनंद जी ने। आप सुन रहे हैं श्रोताओं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गायक कलाकार मुकेश के गाए चंद फिल्मी गाने।

उस गली से। इस गीत के साथ ही श्रोताओं, कार्यक्रम गुलदस्ता वहीं पर हम संपन्न करते हैं। आप सुन रहे थे एक ही गायक मुकेश के गाए चंद फिल्मी गाने। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

0: सभी किसान भाई बहनों को कमलेंदु का सब प्रेम जोहार एवं आज के खेती गृहस्थी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहनों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे। और वैसे इन दिनों अनाज फसलों के अलावा कंद वर्गीय सब्जियों की खेती करने लगे हैं। कुछ किसान तो व्यावसायिक तौर पर बेमौसमी कंद की खेती भी करने लगे हैं, जैसे मूली की खेती से बहुत अच्छा लाभ भी मिलता है। इसके अलावा सुरन यानी मड्रासी ओल की खेती बड़े आकार के होने के कारण, जिसमें कोई मेहनत भी नहीं और एक बार लगा देने से साल भर में बड़े आकार के होने के कारण बहुत अच्छा मुनाफा भी मिल जाता है। तो किसान भाई बहनों, इसके लिए उपजाऊ और बलुआही दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है, जिसमें अच्छी तरह से बैठते भी हैं और कंद बड़े होते हैं। आपके आसपास यानी नदी किनारे अगर जमीन है तो बाढ़ के समय जो पानी भर जाने से उस पर बह करके कई उपजाऊ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर जो बलुई दोमट मिट्टी है, आ करके आपके खेतों में जम जाते हैं। और इसी मिट्टी में कोई भी कंद वाले सब्जी, चाहे आलू फसल हो या मूली, शलगम, गाजर, जो भी कंद वर्गीय सब्जी हैं या फिर कंद वाले जो उपज हैं, ये काफ़ी अच्छे तरीके से होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी उपजाऊ मिट्टी भी होती है। जो फसलों के अवशिष्ट से या फिर सड़े गले पदार्थों से बने उपजाऊ मिट्टी, और विशेष करके कंद वर्गीय सब्जियों के लिए तो बहुत ही अच्छा, और अन्य फल सब्जियों के लिए भी अच्छा ही उपजाऊ मिट्टी बन जाता है। तो नदी किनारे जो भी जमीन है आपके, ऐसे जमीन में आप कंद वर्गीय सब्जियों की खेती जरूर करें। और विशेष करके जो बालू का मात्रा ज़्यादा हो, यानी कि बलुआही दोमट मिट्टी जो है, इसके लिए बहुत ही उपयुक्त होता है, क्योंकि ये मिट्टी भुरभुरे होते हैं और ज़्यादा सख्त नहीं होने के कारण कंद अच्छी तरह से बढ़ते भी हैं। तो इनमें आप चयन करें, जो भी कंद लगा रहे हैं, चाहे शकरकंद ही क्यों ना हो, तो शकरकंद का समय भी है और इस समय आप उसको एक सही मायने पर दूरी बनाते हुए, निश्चित लत्तर की जो डंठियाँ हैं उनको भी सही दूरी पर आप 8-10 इंच की माप पर आप कटाई करते हुए सही गहराई पर इसको रोपाई करें और मिट्टी अच्छी तरह से बना कर रखें, ताकि ये कंद अच्छी तरह से बैठे। आजकल किसान भाई बहनों, हर वर्ग के लिए, चाहे वो बीज हो या फिर फसल हो या कोई भी लतरदार सब्जी हो या कुछ भी हो, सबके लिए उन्नत किस्म के बीज भी मिल रहे हैं। और कंद वर्गीय सब्जियों में भी उन्नत किस्म के, यानी कि हाइब्रिड किस्म के कंद आजकल मिल रहे हैं, जो कि सामान्य कंद की तुलना में बहुत अच्छे बढ़वार भी है। एक ही कंद में 500 ग्राम, 700 ग्राम या उससे भी बड़े हो जाते हैं। तो आपके लिए ये बहुत फायदेमंद होगा, कम जमीन पर बहुत ज़्यादा उपज आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे बीजों और ऐसे कंदों का आप चयन जरूर करें। और किसान भाई बहनों, इसके लिए आप समय समय पर नमी का ध्यान रखते हुए सिंचाई भी जरूर करें, क्योंकि ज़्यादा सूख जाने से कंद अच्छी तरह से बैठते नहीं हैं या फिर पौधे भी विकसित नहीं होते हैं, इसीलिए सामान्य रूप से नमी का रहना जरूरी है। साथ ही समय रहते ही इसको लगाएं। बेमौसम में लगाने से कभी कभार उसमें काफ़ी कीट पतंगों का आक्रमण भी होता है, इसीलिए इनका ध्यान रखते हुए आप सही तरीके से और आसपास में कोई अनावश्यक झाड़ी या फिर खरपतवार भी ना रहे, इसका भी जरूर ध्यान रखें। तो इस तरह से हम किसान भाई बहनों, कंद वर्गीय सब्जियों की खेती या कंद की खेती या आलू हो या फिर अन्य जो भी बहुत प्रकार के ऐसे कंद वाले जो मिट्टी के अंदर होने वाले हैं, इनकी खेती हम व्यावसायिक तौर पर कर सकते हैं और इनको हम अच्छी तरह से अपने खेतों में उपजा सकते हैं। तो इससे हमारा मुनाफा भी होगा, आर्थिक स्थिति में मदद भी होगा, साथ ही परिवार खुशहाल होगा। तो किसान भाई बहनों, कंद वर्गीय सब्जियों की खेती आप जरूर करें अपने क्षेत्रों में। और इस चर्चा के पश्चात एक जरूरी संदेश सुन लेते हैं।
1: जलवायु क्या है और हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जलवायु क्या होती है? जलवायु वह सामान्य मौसम है जो हम किसी जगह पर लंबे समय तक लगभग 30 साल तक महसूस करते हैं। यह सूर्य की रोशनी, हवा, जमीन, समंदर और

0: इससे समझना है। इसलिए यूनेस्को जलवायु परिवर्तन की जानकारी को आसान और सरल भाषा में समझाने का समर्थन करता है, ताकि स्कूल के बच्चों से लेकर समुदाय के नेता तक सभी ये जान सकें कि धरती पर क्या हो रहा है और हम इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। इस विषय पर एक खास प्रदर्शनी आयोजित की गई।
1: इस संदेश के पश्चात किसान भाई बहनों मनोरंजन करते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा मुंडारी लोकगीत जादू मुंडरी एवं साथियों के स्वर में।

0: अभी हम आनंद ले रहे थे मुंडारी लोकगीत का, और इस लोकगीत के पश्चात आज हमारे बीच में एक प्रबुद्ध कृषक हैं जो काफी दिनों से खेतीबाड़ी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो हम इनसे जानकारी लेंगे कि रासायनिक खाद और कीटनाशकों के व्यवहार से, इस्तेमाल से हमारे स्वास्थ्य पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है, पर्यावरण किस तरह से प्रदूषित होते जा रहा है, मिट्टी कैसे खराब होते जा रहा है, इन सभी बातों को लेकर के आज हमारे बीच में है मनोज हेम्ब्रम जी। आइए इनसे हम मिलते हैं।
1: किसान भाई बहनों, आज हमारे बीच में है एक प्रबुद्ध कृषक मनोज हेम्ब्रम जी। तो मनोज जी, हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जोहार।
2: जोहार।
1: तो आज का जो हमारा भेंटवार्ता का विषय है, रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों का हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव, तो ये तो सभी को ही जानते हैं, लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप काफी दिनों से खेती कर रहे हैं, आपके पूर्वज भी करते थे, तो लगभग आप खेती बाड़ी से कब से जुड़े हुए हैं, कितने वर्षों से?
2: खेती बाड़ी हम बहुत पहले से ही जुड़े हुए हैं। पहले मेरे दादू करते थे, मेरे पापा करते थे, अभी पापा का एज हो गया तो अभी हम कर रहे हैं।
1: अच्छा अच्छा।
2: पापा भी साथ देते हैं, लेकिन अभी पापा के मुकाबला हम ज्यादा करते हैं।
1: हाँ,
2: पापा घर द्वार में ही रहते हैं ज्यादातर।
1: अच्छा अच्छा हमने बचपन से साथ में करते करते आप लोग भी सब कुछ सीख गए, मैंने लगाने का और सब कुछ मैंने तरीका ना है।
2: हाँ।
1: अच्छा, उसके साथ साथ जैसे समय के साथ साथ परिवर्तन भी होते गया, तो पहले जमाने में जो खेती बाड़ी करते थे आपके दादाजी या फिर पिताजी लोग, तो उस समय का तौर तरीका करने का कुछ अलग था, और अभी तो काफी बदलाव देख रहे होंगे ना?
2: हाँ हाँ, पहले जो था वो पहले क्या करते थे कि बैल से हल जोतते थे।
1: हाँ,
2: गोबर मिट्टी जो होता था उसी से सहार बनता था हम लोग का।
1: अच्छा अच्छा। हाँ,
2: और अभी का क्या है, अभी हम लोग ट्रैक्टर हैं, और अभी जो छोटा वाला हल निकला है हाथ से भी चला सकते हैं खेती करने के लिए।
1: अच्छा अच्छा।
2: हल जोतने वाला, उसका यूज करते हैं।
1: हाँ,
2: खाद वगैरह भी हम लोग अभी ज्यादातर रासायनिक का यूज कर रहे हैं।
1: अच्छा अच्छा। हाँ, वही तो बहुत परेशानी है। अब रासायनिक खाद का जहाँ पर नाम लिया तो फिर देखा जा रहा है कि इससे कई प्रकार की बीमारियां भी तो होती जा रही है, और मिट्टी भी खराब होता जा रहा है ना?
2: हाँ, इसमें मिट्टी भी खराब होता है और फल जो है उसमें भी हमारे शरीर के लिए सही नहीं है।
1: हाँ हाँ, सही बात है, कई प्रकार की बीमारी और परेशानी भी होती रहती है ना?
2: परेशानी भी होती रहती है।
1: हाँ हाँ हाँ। तो पहले के लोग तो शायद पशुपालन भी बहुत ज्यादा करते थे, गांव घर में बहुत ज्यादा बैल बकरी भैंसा ये सब भी होता था नहीं?
2: हाँ, पहले जो है वो बैल बकरी भैंसा बत्तख सब रखते थे।
1: अच्छा अच्छा।
2: अभी भी रखते हैं हम लोग के घर में है।
1: हाँ,
2: लेकिन फिर भी उसका भी खाद यूज करते हैं, और
1: हाँ,
2: जो
1: दोनों ही होता था,
2: उनको भी मिला के यूज करते हैं, क्योंकि अभी जो मार्केट में देखा गया तो जल्दी फल उगे, जो भी सब्जी लगा रहे हैं जल्दी उगाने के लिए हल्का फुल्का रासायनिक का यूज करते हैं।
1: हाँ हाँ हाँ, वही चीज है, मतलब ज्यादा उपज पाने के लिए और जल्दी बढ़ने के लिए ये सब रासायनिक खाद का इस्तेमाल हो रहा है, वही चीज।
2: जबकि तो देखा जाए कि हमारे शरीर के लिए सही नहीं है, और
1: सही तो नहीं है।
2: हाँ। सही नहीं है, लेकिन
1: हाँ हाँ। अच्छा, तो जैसे पहले जमाने में बहुत सारे जो गाय बैल और भैंसा वगैरह पालते थे, वो अपना जुताई के लिए और काम के लिए, साथ साथ दूध वगैरह अपना निजी पाने के लिए, और उसके साथ साथ गोबर खाद भी होता था, तो उसी से अपना जैविक खाद भी बन जाता था अपना फसलों
2: जैविक
1: के
2: खाद
1: लिए।
2: बन जाता था, और वही जैविक खाद का खेतों में उपयोग करते थे।
1: हाँ, और उसका गुणवत्ता भी बहुत अच्छा रहता था, मैंने बहुत दिन तक मैंने भंडारण भी और अच्छी तरह से उसका संरक्षण भी होता था, ताजा
2: हाँ।
1: भी रहता था फल और सब्जी वगैरह,
2: सब्जी
1: तो
2: फल
1: आज
2: सब
1: में भी
2: ताजा
1: काफी
2: रहता
1: फर्क
2: था, और
1: था।
2: खेतों की जो मिट्टी होती है
1: हाँ
2: वो
1: हाँ
2: बहुत मुलायम और एकदम
1: सॉफ्ट रहता था।
2: सॉफ्ट रहता था। एक बार अगर मैंने
1: हाँ
2: अभी जैसे होता है खाद जो हमेशा बार बार डालते रहते हैं, वो एक बार डाल दिए तो आप आराम से खेती करते रहिए, आपको खाद के बारे में सोचना ही नहीं है कि आप डालना है कि नहीं डालना है।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ तो भले की तुलना में लोगों का जो शारीरिक क्षमता काम करने का जो ये है, वो क्या पहले जैसा ही है कि अभी बहुत मैंने बदल गया है?
2: पहले के लोग जो होते थे वो सुबह से शाम तक खटने वाली वो खेतों में रह के काम करते
1: अच्छा
2: रहेंगे,
1: अच्छा
2: लेकिन
1: हाँ
2: अभी जो होते हैं,
1: हाँ हाँ
2: अभी कोई 6 बजे जा रहा है तो 8 बजा 9 बजा नहीं बजा वो घर आ जा रहे हैं। मतलब काम करने का क्षमता भी बिल्कुल पूरा घट गया है,
1: पूरा घट गया सही में। हाँ हाँ
2: काम कर ही नहीं पा रहे हैं लोग।
1: हाँ हाँ हाँ तो कारण क्या है, यही मैंने रासायनिक इस्तेमाल और
2: कारण
1: ये वही चीज तो
2: कारण लोग
1: खान पान
2: समझ
1: में।
2: नहीं पाते हैं कि लोग बोलते हैं कि हमारा शरीर खराब हो रहा है। शरीर क्यों खराब
1: सही
2: हो रहा है? सब्जी,
1: बात लेकिन
2: जो भी सब्जी आ रहा है, फल आ रहा है, उसमें
1: हाँ
2: क्या यूज हो रहा है? रासायनिक खाद का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। रासायनिक
1: ओहो
2: खाद हमारे शरीर के लिए खराबी करते हैं, ये हम लोग
1: हाँ
2: समझ नहीं पाते हैं।
1: हाँ यानी कि वही सब रासायनिक हमने कृत्रिम चीज खा रहे हैं जैसा लगता होगा ना।

अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय भाषा का कार्यक्रम हुआकड़ा। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz पे। कुछ ही पलों में हम उपस्थित होंगे कार्यक्रम युवाणी के साथ।

कार्यक्रम युवाणी में दोस्तों हम ऐसे कई विषयों पर जानकारी आपके साथ आपके समक्ष रखते हैं जिससे आप सभी युवा दोस्तों जो जितने भी युवा दोस्त हैं सभी जागरूक हों समय के साथ चले अपने आप को सुरक्षित रखें कौशल को निखारें साथ ही साथ रोजगार से कैसे जुड़े अपने स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखें इन सारे विषयों पर हम आपको समय टू समय जानकारी देते रहते हैं। आज कुछ खास बातें यानी कौशल को कैसे पहचाने युवा साथी आप कैसे अपने कौशल को निखारें इस पर हम कुछ बातें आपके समक्ष रख रहे हैं। यूं तो दोस्तों आपके पास ऐसे कई तरह के हुनर ज्ञान अभी इस वर्तमान युग में ऐसे कई विकल्प हैं रोज़गार के कौशल को निखारने के ऐसे कई स्रोत हैं कई विकल्प हैं जिसको आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। आपको बस देखना है कि हमारा जो रुझान है वो किस ओर ज़्यादे है हमारा झुकाव किधर ज़्यादे है तकनीकी क्षेत्र को लेकर ज़्यादे हैं या हम कला के क्षेत्र में लिखना चाहते हैं हम पढ़ाई के क्षेत्र में गाने की शौकीन है किस क्षेत्र में आपका रुझान है किस में आप अच्छा कुछ कर सकते हैं इसे आप ध्यान में रखें और उसी के अनुसार आप कौशल को निखारें और रोज़गार को यानी कि करियर को बनाएं। क्योंकि हम गाते बहुत अच्छा हैं और हम उधर ध्यान ना दे करके हम नृत्य की ओर या लिखने कविता लेखन के क्षेत्र में हम चल देते हैं तो ऐसे में जो हमारे हुनर है जिस क्षेत्र में हम परिपक्व हुए हैं जिसमें हम करियर को बना सकते हैं उधर ध्यान आकर्षित नहीं कर पाने के कारण हम रोज़गार से विमुख हो जाते हैं। यानी हम सही डिसीजन सही विकल्प को हम सही तरीके से हम ले नहीं पाते हैं सोच नहीं पाते हैं कैसे क्या करें। इसलिए जिस क्षेत्र में किसी युवा वर्ग को हम देखते हैं बागवानी पे बहुत ध्यान लगता है मन लगता है कि बागवानी में अच्छे से अच्छे पौधे को उगाया जाए कैसे खाद बीज डाला जाए नर्सरी तैयार करने में माहिर होते हैं तो आप जितना भी पढ़े लिखे क्यों ना हो आप उस क्षेत्र में आप महारत हासिल कर सकते हैं जो आपके पास कला है जिस चीज़ को लेकर के आप में ये ज्ञान है कैसे पौधों को बनाया जाए कैसे बगान तैयार किया जाए तो ये जो कला है इसको आप बृहत मात्रा में एकदम बहुत ही बड़े पैमाने पर ला सकते हैं करियर के क्षेत्र में इसमें शामिल कर सकते हैं साथ ही दूसरों को भी इसमें आप रख सकते हैं शामिल कर सकते हैं। इसके कई आयाम हैं कई क्षेत्र हैं बहुत सुंदर तरीके से आप फलदार वृक्षों का और ऐसे जो फल फूल और भी जितने वृक्ष हैं जो काफ़ी कीमती वृक्ष हैं जो हम लोगों को फर्नीचर्स और भी चीज़ें देने में सहायक होते हैं तो सारी चीज़ों को हम लेकर के आगे बढ़ सकते हैं उसको करियर में हम शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों और भी बहुत मैं युवा दोस्तों को मैं देखती हूँ कि खेल के क्षेत्र में काफ़ी पारंगत है तो खेल कोई क्रिकेट में है तो कोई फुटबॉल में कोई कराते में कोई हॉकी में तो जिस चीज़ में जिस क्षेत्र में आप ज़्यादा सुंदर तरीके से निभा सकते हैं अपने आप को निखार सकते हैं उसी को आप लेकर चले एक साथ कई खेल मैं देखती हूँ बहुत सारे युवा वर्ग जो हैं फुटबॉल भी खेल रहे हैं क्रिकेट भी खेल रहे हैं कैरम भी खेल रहे हैं नहीं आप यदि क्रिकेट में सुंदर तरीके से आप खेलते हो तो क्रिकेट को ही लेकर के आप आगे बढ़ो उसमें जो जितना उसका जो गुण है कला है उसमें और भी जितनी शिक्षाएँ ज्ञान है उसे हमें अर्जित करना बहुत ज़रूरी है।
तो ऐसे में हम कई जो विकल्प जो मैंने चयन किया है उसका हम सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे और निर्णय मेरा सही रहेगा, सही तरीके से हम आगे बढ़ पाएंगे, करियर का जो क्षेत्र है वो सही मायने में सामने हम लेकर ला सकेंगे और सुंदर तरीके से हम अपने जीवन को संवार सकेंगे। तो दोस्तों, करियर को पहचानने के लिए, करियर को बना

और कितने बड़े बड़े शहरों में कहे देश विदेश में ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। तो ये उसी एक क्षेत्र को चुनिए जिसमें आप करियर बना सकते हैं, जिसमें आपका करियर में आपका कौशल को निखारने में आप सहायक हो। आपका कौशल, आप किस क्षेत्र में रुचि आपकी ज़्यादा है, उसी क्षेत्र को आप अपनाएं और करियर को बनाएं। तो चलिए, बातें तो बहुत सारी है, बातों को जारी रखते हुए सुनते हैं ये अच्छा सा प्यारा सा एक गीत हम आप सुनवा रहे हैं परेश दत्ता द्वारी के स्वर में। ये बहुत सुंदर सा गीत है, आइए सुनते हैं।

0: दीन को दयालु दानी। अभी आप ये गीत सुन रहे थे परेश द्वारी दत्ता के स्वर में। श्रोता, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से युवाओं का कार्यक्रम युवाणी, और अब आगे सुनते हैं ये संदेश।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आ गए सैलरी?
3: हाँ।
2: नए झुमके?
3: ना, पहले बचत।
2: पहले झुमके।
3: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
2: लेकिन झुमकों का क्या?
3: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
4: आरबीआई कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
1: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
2: बोले सब ओड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे नका गे हम बोले रुड़ तब में अल परिवार से मतलब पूरे ये ना
3: वरना मंगलोर को गांव वगैरह आरती थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहां बना है वो लोग आउ का ये जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुन पा ली चलते एकदम हमारे पूरा एकदम अखन तो कनिक ठीक हो है तो पूरा एकदम परिवार
4: नाम है रंगबला देवी गाँव बारे होते तो घर आई में हमारे घर बहुत दुख के बात होते हम बात हो जाए हैं
5: उत्तम बुरन सिंह तमसा अनिता तमसा भूरूपा सिमा करना ऐसे दुकुर में वापा में अरुए तपा में अरुए वा बिता मुक्ता
6: अन्यान पिंडो बुंबई कोड़ा पटन
1: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके

0: शक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आ गई सैलरी?
3: हाँ।
2: आ? नहीं झुमके?
3: ना, पहले बचत।
2: पहले झुमके।
3: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
2: लेकिन झुमकों का क्या?
3: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
4: आरबीआई कहता है,
1: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: इस विराम के बाद पुनः एक बार स्वागत है कार्यक्रम युवाणी में, और अब बातें करते हैं। मिशन वात्सल्य योजना पर हम सभी दोस्तों इन दिनों इस विषय पे जानकारियां आप तक पहुंचाते आ रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, परिवार सिर्फ जैविक रिश्तों से नहीं बनता, ये प्यार और देख रेख से भी बनता है। प्यार बड़ा मायने रखता है। सबसे बड़ी बात है, हमारे ज़िले में ऐसे कई बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं है, या फिर माता पिता तो हैं लेकिन किसी कारणवश अपने बच्चे की देखभाल नहीं कर पाते हैं, या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें गोद लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता, या जो वर्तमान में संस्थागत देख रेख में है। ऐसे बच्चों के लिए सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य योजना चलाई जा रही है। इसे पालन पोषण देख रेख योजना भी कहा जाता है। ये योजना उन बच्चों के लिए है जिन्हें कुछ समय के लिए परिवार में देख रेख की आवश्यकता होती है, और इसके अंतर्गत उन्हें आवश्यकता अनुसार या 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पालन पोषण देख रेख से योजना लाभान्वित किया जा सकता है। तो इसके देखभाल किस तरह से किया जाए, कैसे इस लिया जाए बच्चे को गोद, इसके कुछ नियम हैं, कुछ शर्तें हैं। आइए हम लोग इसको सुनते हैं। श्रोताओं ध्यान से इसे सुने। यह गोद लेने की प्रक्रिया नहीं है पर एक अस्थाई व्यवस्था है, मतलब ताउम्र के लिए बच्चे को गोद लेने की व्यवस्था नहीं है, मतलब अस्थाई रूप से जब तक बच्चा है तब तक हम उसको अपने पास रखेंगे। यानी जहाँ बच्चा प्यार सुरक्षा और गरिमा के साथ रहता है, जब तक वो फिर से अपने जैविक परिवार में ना चला जाए। यानी वैसे बच्चे जिनको हम गोद लिए हैं, जिनके माता पिता सही मायने में देख रेख नहीं कर पा रहे हैं, उस तो ऐसे बच्चों को हम गोद लेंगे, उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनकी परवरिश करेंगे, और फिर वो जब बड़ा हो जाएगा, वो अपने परिवार में जाने लायक हो जाए तो वो चला जाए, बस इतने दिनों के लिए हम उन्हें अपने पास रखेंगे। अगर आप भी किसी बच्चे के जीवन में खुशियाँ लाना चाहते हैं तो आप भी पालक माता पिता बनकर अपना योगदान दे सकते हैं। तो ऐसे बच्चों के माता पिता बनने की ख्वाहिश कोई रखते हैं तो ज़रूर योगदान दें। इसके लिए भावी माता पिता के आयु का जोड़ 115 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए। यानी माता और पिता का जो उम्र है वो दोनों को मिला करके 115 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। वैसे दंपति ही बच्चे को गोद ले सकते हैं। यदि अकेला व्यक्ति किसी बच्चे के पालक बनना चाहते हैं तो उसकी कम से कम आयु 35 वर्ष तथा दोनों का सम्मिलित आयु 115 होनी चाहिए। लेकिन एकल पुरुष को बालिका नहीं दी जाएगी। एकल यानी पुरुष, सिर्फ पुरुष को उन्हें बालिका नहीं दी जाएगी, उसको बच्चे बेटा या दिया जाएगा, किशोर को दिया जाएगा। अगर आप किसी पश्चिमी सिंहभूम जिला के निवासी हैं एवं आपके पास मुखिया द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र, पुलिस स्टेशन से प्राप्त या फिर प्रज्ञा केंद्र से प्राप्त पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट हो,

तो पालक माता पिता शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हो, परिवार हर बच्चे का अधिकार है, इसलिए ऐसे बच्चों को हम सुंदर तरीके से पालन पोषण करके अपने पास रख सकते हैं। तो आइए ज़रूरतमंद बच्चों को हाथ बढ़ाए और एक अच्छा उन्हें भविष्य दे। इस योजना के तहत ज़रूरतमंद इच्छुक परिवारों को मासिक 4000 रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान किया जाता है। अधिक जानकारी है तो जिला बाल संरक्षण इकाई 9955131364 और 9090700489 पर संपर्क करें, या फिर जिला बाल संरक्षण इकाई जिला उपायुक्त का कार्यालय 3रा तल्ला चाईबासा में आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिला बाल संरक्षण इकाई पश्चिमी सिंहभूम द्वारा ये सूचना जारी किया गया है। इस सूचना को आप प्राप्त करके इस माध्यम से मैं आप तक जो खबर अब तक ये जो सूचना पहुंचाई जा रही है इसका लाभ लें। और आप ऐसे दंपति हैं जो बच्चे को गोद लेना चाहते हैं अस्थायी रूप से, तो आप आगे आएं और बच्चे को गोद ले सके, लेकिन जो शर्तें आपको बताई गई है वे शर्तें पूरी होनी बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए, समय हो रहा है, कार्यक्रम से विदा लेने का वक्त हो गया है। तो आज का ये कार्यक्रम कैसा रहा ज़रूर लिखेंगे। हमारा कार्यक्रम है युवाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी चाईबासा 833201। तो राधा को दीजिए इस कार्यक्रम से विदा। पुनः होगी मुलाकात अगले कार्यक्रमों में, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा,
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो,
3: कहाँ
4: एडमिशन कराने? खाता हुआ एक्टिव।
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1042 सहायक आचार्यों को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। कहा, सभी मिलकर शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने का करे कार्य। राज्य के कथित शराब घोटाला मामले में ईडी के समन पर पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव नहीं हुए उपस्थित। दोनों ने जवाब के लिए मांगा अतिरिक्त समय। झारखंड उच्च न्यायालय में भूमि सर्वेक्षण को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज हुई सुनवाई। विभागीय सचिव को 15 जुलाई तक शपथ पत्र दाखिल करने का दिया निर्देश। पलामू में अज्ञात बीमारी से पिछले 10 दिनों में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। मेडिकल टीम जांच में जुटी। मृतकों के विसरा को जांच के लिए रखा सुरक्षित। और मौसम विभाग ने राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। गर्जन के साथ बारिश और आकाशीय बिजली का जताया पूर्वानुमान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची के खेलगांव में शिक्षा विभाग के अंतर्गत 1042 नवचयनित इंटर और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इनमें 274 इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य, 768 स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य तथा विज्ञान विषय के सहायक आचार्य शामिल हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी मिलकर राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए काम करें।
1: जहां हमारे सरकारी स्कूलों पर उंगलियां उठाई जाती थी, वहीं पर मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय उसके पैरेलल हम लोगों ने खड़ा किया। और आज जहां 9,000-10,000 सीटें हैं, 40,000 बच्चों का एप्लीकेशन आता है उसमें फॉर्म भरने के। सरकार की चीजों पर, सरकार की व्यवस्था पर हमें गर्व होना चाहिए और उसको कितना बेहतर कर सके इस पर हमें काम करना चाहिए।
0: झारखंड में कथित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के समन पर पूर्व वित्त मंत्री और लोहरदगा के विधायक रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव रांची स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए। पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव को भी 30 जून को पूछताछ के लिए समन जारी किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व मंत्री और उनके बेटे ने ईडी को पत्र लिखकर पूछताछ के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। गौरतलब है कि इस मामले में जांच एजेंसी ने इससे पहले 23 अगस्त 2023 को रोहित उरांव के रांची आवास स्थित 32 ठिकानों पर छापेमारी की थी। राज्य में चल रहे भूमि सर्वेक्षण को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई की गई। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए विभाग के सचिव को निर्देश दिया कि वे स्वयं 15 जुलाई तक शपथ पत्र दाखिल करें। अदालत ने यह भी कहा कि यदि पिछली सुनवाई के बाद इस मामले में कोई नई प्रगति हुई है तो उसकी विस्तृत जानकारी भी शपथ पत्र में उपलब्ध कराई जाए। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को निर्धारित की गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज धनबाद में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का जायजा लिया। उन्होंने यहां निर्देश दिया है कि किसी भी अयोग्य व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं होना चाहिए। फर्जी दस्तावेज के जरिए नाम जुड़वाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि रेफ्यूज टू साइन कैटेगरी में वैसे मतदाता भी आते हैं जो दूसरे देश में जाकर वहां की नागरिकता हासिल कर चुके हैं लेकिन भारत की मतदाता सूची से अपना नाम नहीं हटवाया है। विशेष पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे।
2: कल से आपका एनुमरेशन फॉर्म फिल करने वाला कार्यक्रम यहाँ से शुरू होगा। यहाँ पहले इंडिया में था भारत नागरिक, यहाँ से दूसरा देश जाके वहाँ नागरिकता प्राप्त कर लिया, उनका नाम भी आएगा नहीं। बाहर का देश से इंडिया में आया, उनका अभी तक यहाँ नागरिकता प्राप्त नहीं हुआ, उनका नाम भी नहीं आएगा। एसआर प्रोसेस है केवल यहाँ का भारत का नागरिक के लिए।
0: जामताड़ा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आज विभिन्न शिक्षण संस्थानों में जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई और छात्र छात्राओं के द्वारा रैली निकाली गई। इस दौरान भागवत झा आजाद इंटर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर श्यामली फौजदार ने कहा कि छात्र छात्राओं द्वारा अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया।
3: हमारे महाविद्यालय पर SIR को लेकर जागरूकता कार्यशाला एवं रैली निकाली गई। इस दौरान महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को मतदाता सूची, छात्र छात्राओं को नागरिकता के बारे में बताया गया। इस दौरान उन्हें अपने तथा अपने आस पड़ोस के लोगों को SIR को लेकर जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया।
0: नीट यूजी परीक्षा लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने आज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई ने अब तक इस मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और परीक्षा से पहले नीट यूजी प्रश्न पत्रों को प्राप्त करने और प्रसारित करने में शामिल एक कथित नेटवर्क की जाँच कर रही है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नक्सल संगठनों की ओर से मनाए जा रहे दमन विरोधी सप्ताह के मद्देनजर दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ कर दिया गया है। रेलवे सुरक्षा बल RPF ने ऑपरेशन ट्रैक हॉक के तहत 25 जून से चक्रधरपुर और मनोहरपुर रेलवे स्टेशनों के बीच नक्सल प्रभावित रेलखंड में ड्रोन के माध्यम से विशेष निगरानी एवं क्षेत्र प्रभुत्व अभियान शुरू किया है। आज जारी बयान में रेलवे प्रशासन ने बताया है कि विशेष सुरक्षा अभियान का उद्देश्य हर स्तर पर रक्षा सुनिश्चित करना है। संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है और निगरानी व्यवस्था को तकनीकी रूप से और मजबूत बनाया गया है। पलामू जिले के पड़वा प्रखंड के सिक्का गांव में अज्ञात बीमारी से आज तड़के 5वीं मौत हुई। इसके साथ ही पिछले 10 दिनों में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो चुकी है। रिम्स में इलाजरत कुछ अन्य लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़ित परिवार को इलाज के लिए 4 बार रेस्क्यू किया गया। वहीं मेदनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डॉक्टर आरके रंजन ने बताया कि सभी मृतकों के विसरा को जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है। धनबाद में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने भूली बाईपास रोड स्थित एक मैरिज हॉल को अवैध निर्माण घोषित करते हुए इसे तोड़ने का आदेश जारी किया है। नगर आयुक्त आशीष गंगवार ने जानकारी दी कि निगम ने भवन मालिक को 15 दिनों के भीतर खुद निर्माण हटाने का निर्देश दिया है।
4: हम लोगों ने उनको 15 दिन का टाइम दिया हुआ है कि वो स्वतः उसको डिमोलिश कर लें, और अगर 15 दिन में स्वतः डिमोलिश नहीं करते हैं, और जो एक दूसरा है कि 10 लाख रुपए का फाइन जो लगा है, अगर वो नहीं करते हैं उसके बाद हम लोग उसमें विधि सम्मत कार्रवाई करें। बाकी अदर अपील कर सकते हैं, वो कोर्ट्स में जाके अपील कर सकते हैं, पर ये उनको प्रॉपर 2 महीने का प्रॉपर टाइम दिया गया था, उसके बाद ये कार्रवाई।
0: पवित्र अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यह यात्रा 28 अगस्त को संपन्न होगी। धनबाद के जगन्नाथ मंदिर में आज धार्मिक अनुष्ठान शुरू हुए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा की स्नान यात्रा पवित्र जल से संपन्न होने के साथ ही वे 15 दिनों के लिए अज्ञातवास में चले जाएंगे। इसके बाद 16 जुलाई को धार्मिक विधि विधान के साथ भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी।
5: सुबह 6 बजे से पूजा के बाद भगवान ने रत्न सिंहासन छोड़कर अपना स्नान मंडप में 108 घड़ा जल से सुगंध से स्नान करेंगे। 5 बजे के बाद अज्ञातवास जाएंगे। 15 तारीख को नेत्र उत्सव बना जाएगा और 16 तारीख को रथ यात्रा होगा।
0: मौसम विज्ञान केंद्र ने राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में गर्जन के साथ बारिश और आकाशीय बिजली का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1042 सहायक आचार्यों को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। कहा, सभी मिलकर शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने का करें कार्य। राज्य के कथित शराब घोटाला मामले में ईडी के समन पर पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव नहीं हुए उपस्थित। दोनों ने जवाब के लिए मांगा अतिरिक्त समय। झारखंड उच्च न्यायालय में भूमि सर्वेक्षण को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज हुई सुनवाई। विभागीय सचिव को 15 जुलाई तक शपथ पत्र दाखिल करने का दिया निर्देश। पलामू में अज्ञात बीमारी से पिछले 10 दिनों में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। मेडिकल टीम जांच में जुटी। मृतकों के विसरा को जांच के लिए रखा सुरक्षित। और मौसम विभाग ने राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। गर्जन के साथ बारिश और आकाशीय बिजली का जताया पूर्वानुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
0: कहाँ
1: एडमिशन कराने?
3: खाता हुआ एक्टिव,
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
6: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे गिरिडीह जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गिरिडीह संवाददाता।
1: गिरिडीह जिले के सभी 2403 बूथों पर पल्स पोलियो की दवा बच्चों को पिलाई गई। डीसी रामनिवास यादव, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार और सिविल सर्जन डॉक्टर बच्चा सिंह ने बजटो गांव में बच्चों को दो बूंद दवा पिलाकर इस अभियान की शुरुआत की। सिविल सर्जन ने बताया कि 29 एवं 30 जून को घर घर जाकर स्वास्थ्य कर्मी 4,91,000 से अधिक बच्चों को पोलियो मुक्त भारत के लिए दवा पिलाएंगे।
2: एनआईडी के तहत गिरिडीह जिले में दिनांक 28 से 30 तारीख तक पल्स पोलियो की दवाइयाँ पिलाई जाएगी। 28 तारीख को जो हमारे बूथ है गिरिडीह जिले के, टोटल जो बूथ है 2,337 बूथ, उस पर बच्चों को जो 0 से 5 साल के बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन, जो अभी BOPV बाइवेलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन की दो बूंद दवाइयाँ दी जाए। 29 और 30 तारीख एक कार्यक्रम डोर टू डोर किया जाए।
1: भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ पाकर गरीब आत्मनिर्भर बन रहे हैं। भंडारीडी की रजिया इस्लाम और उनके पति इस्लाम कहते हैं कि सरकार ने उन्हें गैस, अनाज, आवास सब कुछ दिया है।
3: मेरा नाम इस्लाम है, फ्री चावल दे रहा है, गैस तो मिल ही रहा है, सरकार से बहुत खुश है।
4: नाम रजिया इस्लाम, पहले काटी जलाते थे, अब गैस मिल गया तो गैस से आराम हो गया, खाना बना के दे देते हैं टिफिन जल्दी जल्दी करके, धुआं से धक्का से बचते हैं, बीमारी से बचते हैं। घर दिया है, गैस दिया है, तो सरकार को धन्यवाद देते हैं।
1: गिरिडीह जिले के पीरटाल प्रखंड की महिलाएं मोटे अनाज से मिठाई बनाकर बेच रही है। इस काम से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है और सरकार के प्रति आभार प्रकट कर रही है।
5: मैं यहां की एक किसान हूं और हम लोगों का जो मुख्य फसल हुआ करता था गांव का, वो धान उगाते थे चावल के लिए, लेकिन अभी कुछ दिनों से हमारे यहाँ मड़ुआ का बहुत अधिक उत्पादन हो रहा था और उस उत्पादन के बाद हम लोग क्या करते थे, मड़ुआ को डायरेक्ट बाजार में ले जाके सेल कर दिया करते थे। लेकिन अभी हम लोगों के यहाँ एक रुद्रा फाउंडेशन नाबार्ड के द्वारा बहुत बढ़िया प्रशिक्षण दिया जा रहा है मड़ुआ से अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थों को बनाने का, जैसे कि मड़ुआ की बर्फी, मड़ुआ के लड्डू, मड़ुआ का केक, निमकी, इसी तरह बाजरे से भी अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थों का ट्रेनिंग दिया जा रहा है बनाने का, तो हमारे कौशल का भी विकास हो रहा है।
1: गिरिडीह जिले के किसान अशोक वर्मा का कहना है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उन्हें प्रारंभ से मिलते रहा है, इस राशि से उन्हें खेती करने में आसानी होती है।
6: अशोक वर्मा, पंचायत पांडेडी, प्रखंड गिरिडीह, जिला गिरिडीह का एक किसान हूँ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मुझे साल भर में 2,000 रुपया करके शुरुआत से ही मिलते आ रहे हैं, इक्कीसवां किस्त भी मिला है और इस पैसे से हम किसान वर्ग खेती कार्य के लिए खाद, बीज व अन्य उपकरण का में खर्च करते हैं और इससे हम सभी को लाभ भी मिला है।
1: गिरिडीह जिले में पुलिस प्रशासन और आम लोगों की तत्परता से मुहर्रम का त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने शांति समिति की थाना से लेकर जिला स्तर तक की बैठकें की थी। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह।
0: अभी आप सुन रहे थे गिरिडीह जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

अभी आप सुन रहे थे जिले में आजकल आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पे। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद।

इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार सोनू निगम अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में फिल्म तुम बिन का ये खूबसूरत सा गीत। इस गीत को सुनना चाहा है सेंटोला चायवासा से भोलाराम मधुर मोहन विनोद कुमार पवन मीना पवन, छोटा निमरी चायवासा से बाबूराम शांति देवी रीति कोमल रोहन, और तुरी टोला चायवासा से मदन ठाकुर पुष्पा देवी रोहित ठाकुर संगीता देवी लाडो हरी खुशी कुमारी रिया कुमारी अर्पिता कुमारी। अमला टोला चायवासा से इसी गीत को सुनना चाहा है गौरख प्रसाद गुप्ता फूलवंती गुप्ता अभिषेक गुप्ता और अक्षत प्रसाद। बड़ा निमरी चायवासा से तुलसी पथिक मीरा देवी बजरंगी ठाकुर मीतू रंजन राजीव रंजन मौलिक रंजन अमित कुमार सुमित कुमार शुभम कुमार। आप सबों की पसंद पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म तुम बिन का ये गीत।

और अब अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है फिल्म विरासत से, आवाज़ है ए हरिहरन की। इस गीत को सुनना चाहा है बड़ा बम्बो सुपाई साई से देवेंद्र ताती, राकेश ताती, कुमारी निशा प्रकाश, ललित प्रधान, राजकुमार केसरी, किरण केसरी, श्याम देवनायक, चक्रधरपुर ग्राम गेलिया लोहर से बनमाली बेसरा, कोमल बेसरा, बासंती अनुसित कुमारी और पूजा। इसी गीत को सुनना चाहा है गांव पोंडा काटा से नरसिंह महली, सावन महली, रॉकी महली, कविता महली, हर्षमणि महली, पार्वती महली, सुहानी महली, संजय सोरेन, नंदिनी महली। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, अंजल भाटिया, नवनीत भाटिया, पप्पी भाटिया। और इसी गीत को सुनना चाहा है गांव कीता सरायकेला से राधा कृष्ण गोप, अमित गोप, अंकित गोप, अभिषेक, आशीष, सुमित, शुभम गोम, विक्की, राजू, विनोद, सरस्वती देवी, गीता देवी, रीता देवी, सुनीता, उमा कुमारी, भारती। और इसी गीत को सुनने के लिए सुनना चाहा है गांव चांदपुर पुटका से संतोष कुमार भगत, श्रीमती बासंती भगत, मृणाल कांति भगत, चांदनी भगत, मास्टर आयुष भगत, राजकुमार भगत। कॉलेज रोड घाटशिला से सोना, रूपा, मोनिका, शिवम, मौसमी, संतोष आनंद। तो आप सबों की पसंद पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म विरासत का ये गीत।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
3: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
4: तीन नाले बड़ा परिवार जो तो बनमा इन मरन बेटा क्रांति बेसरा आले वगे नेहर में ना बोले नुकन परिस्थिति रे बोले सब बड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे नका गे हम बोले रुड़ तो बन में आले परिवार से मतलब पूरे ये ना
5: वरना मंगलो रे को गांव बरगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउका कहाँ बना है वो लोग आउका वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को हमरे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखंड तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
6: नाम है रणबला देवी कहाँ बारे हत्तो कहाँ तो घर आई नहीं हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो अखंड बात हो जाए
7: तुम लोग बुरा मिसिंग काम सोए अनुता थामसा भरूपा ऐसा करना ऐसा दुकुरा में ना आया यापा में रिया तपा में रिया वाह बेटा निका
8: अन्याम तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्याम हम दो कोदमरी कोड़ा रो पटन पटन तुम कितमाई कोड़ा मैंने में उड़ी उड़ी ने बागिया तोड़ के यूं दोनों आसे यार की कोलो पुलिस कोलो उन्हीं लड़ाई चलाओ तमा दुर्गम गई तब जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काको मेल नहीं है
9: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेता ना लिंग से जा हुरा रे मिना हीरो जिता हुरा रे मिना हीरो तो बुगिन हुरा ते ससेन का है वो आगे बिता हुरा इनका अले आया न तुम कहीं ना मिल आप ही लेता ना।
3: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
10: इस विराम के बाद पुनः एक बार स्वागत है श्रोताओं कार्यक्रम आपकी पसंद में। और अब अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है फिल्म सलामी से। आवाज़ें हैं कुमार सानू, आशा भोसले की, मदन पाल के बोल हैं, संगीत नदीम श्रवण के। सुनने के लिए ये खत है आपका खरसवां से। सुकरा नायक, मंजू नायक, गौरव नायक, जालेश्वर नायक, भाई एस देवरी, इसी गीत को सुनना चाहा है। महुल दिया सोनवा से, नंदकिशोर महतो, राधामणि, रविवारी बंदनी, दीपक, संतोष, राहुल, बिट्टू, आयुष, गीतेश, अनु, तनु, जिसको महतो, भाई नंदू महतो, बड़ा बम्बू जोरडिया से, मोइना महतो, डिम्पी महतो, राहुल महतो, इसी गीत को सुनना चाहा है। चांडिल हारूडी से, तुलसी महतो, कल्पना महतो, मनोरमा महतो, मनमोहिनी महतो, संगीता महतो, संतोषी महतो, दीनोबंधी महतो, आप हैं कुचाई बिदरी से केपी सोए केपी सेठ सोए दुर्गावती सरिता रश्मि राजकुमारी विशाल मुन्ना सन्नी गांव सुरावेरा से इसी गीत को सुनना चाहा है वारसिंह सरदार कमल सिंह वीरू सरदार और अंशु आप सबों की पसंद पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सलामी का ये गीत

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

इस विराम के बाद श्रोताओं पुनः एक बार स्वागत है कार्यक्रम आपकी पसंद में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। और अब अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं सुरेश वाडेकर कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है सौदागर। गीत रचना आनंद बख्शी की है, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को सुनना चाहा है गाँव नारायणपुर आमदा से नायडू महतो, खेतो मोहन साहू, कैलाश और उषा महतो, प्रिया महतो, डॉली महतो, तरुण महतो, पंकज कुमार महतो एवं परिवार के सभी सदस्यगण। इसी गीत को सुनना चाहा है सरायकेला पाड़ापुर देशावली पहाड़पुर से शिवम शिवाजी मुंडरी, सुरुमणि मुंडरी, हीरामणि मुंडरी, हेमंती मुंडरी, डोबरो मुंडरी, साजन मुंडरी, सिद्धेश्वर मुंडरी, पाड़ापुर शिवाजी, डोबरो मुकेश, कुशल मुंडरी, जामुन सिंह, जानुम सिंह मुंडरी, सिद्धि बोस, सोना बाबू, सोना एफएम शिवा मुंडरी। और इसी गीत को सुनना चाह है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दंतरेगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास, मानिकपुरी लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चरडो गरीब पिपरिया से दुर्गा राम साहू। आप सबों की पसंद पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सौदागर का गीत।

और अब आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म शराबी का गीत, किशोर कुमार की आवाज़ है, प्रकाश महना मेहरा के बोल हैं, बप्पी लहरी के संगीत हैं। इस गीत को सुनना चाहा है वेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमने, वैष्णवी डोमने, चंचल डोमने, अर्जुन गवेनकर, धीरज सब्बा सेरे। इसी गीत को सुनना चाहा है आदर्श नगर भलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, सौरभ शर्मा। अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, गुड़िया ठाकुर। भाटापारा दंतरेकी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा। इसी गीत को सुनना चाहा है करीना मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका वंश बत्ता। आप सब की पसंद पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म शरारी का ये गीत।

फिल्म सराबी के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं।

हम आकाशवाणी के चायवासा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बज रहे हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। इस कार्यक्रम में पुनः आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। पहला गीत हमने लिया है फिल्म आशा से। आवाज़ है लता मंगेशकर की, गीत रचना आनंद बख्शी की है, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फरमाइश किया है सुनने के लिए सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला भाई, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आसमा सालिया, सोयब खान, पोत्रा मुस्तबा खान, राउफ भाई, शाहिद भाई, गांधी बा का कोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधीश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय, दुबिया नवेदा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है पंचशील रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुर जिला बुलडाना से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमेध कुमार दामोदर, गोपाल पाटिल। और आप हैं डोंगरगांव से, डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभीरे, राधिका गजभीरे बेबी, अंशिका और तन्मय गजभीरे। आप सबों की फरमाइश पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आशा का ये सुंदर सा गीत लता मंगेशकर के स्वर में।

और अब इस कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, किशोर कुमार की आवाज़ है, फिल्म का नाम है अलग अलग, गीत रचना आनंद बख्शी की है, संगीत दिया है आर जी बर्मन ने। इस गीत को सुनना चाहा है पटेल नगर भलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया। इसी गीत को सुनना चाहा है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर विरक जैतक विरक मीका विरक। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्या, अभय नंद आर्या, परमानंद आर्या, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित। इसी गीत को सुनना चाहा है शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार अंजू लता आदित्य कुमार और क्रिस श्रीवास्तव, अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार रोशन कुमार वंशीला रेखा देवी श्वेता देवी सुरुचि देवी दिशा और लवी श्रीवास्तव। और आप हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही महराज जहां, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा। आप सबों की पसंद पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अलग अलग का ये गीत।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: इस विराम के बाद पुनः एक बार स्वागत है कार्यक्रम रजनीगंधा में। आराधना, आइए आप इस फिल्म का गीत सुनते हैं किशोर कुमार लता मंगेशकर के स्वर में। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है एस डी बर्मन ने, और इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, आदिबा तिवारी, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सांवले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, राजनाथ गांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है आदर्श नगर भलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, भेंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा, निवान शर्मा, और आप हैं सरगुजा मैन पार्ट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, आदिबा थापा, बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम, जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार, उल्लाह आसमा बेलदार। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है तालुका बुरहानपुर गांव मोहद मध्य प्रदेश से भैया तरवी, रीना तरवी, सनी बाबू, रोजूबाई तरवी, परु मुबारक बारेकर, मनोहर ठाकुर, तैमूर बारेकर, मुकाम पोस्ट भोकली महाराष्ट्र से अरसद तरवी, आरिस अरसनाल, यूनुस तरवी, सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहत जिला बोहरानपुर से मुसफ़र खां तरवी, जरीना तरवी, मुबारक तरवी, परवेज तरवी बिटिया, रोजमीन तरवी, तैमूर तरवी, समस्त तरवी परिवार। आप सबों की फरमाइश पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आराधना का ये खूबसूरत सा गीत।

आप सुन रहे हैं श्रोताओ आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से फरमाइसी फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। और अब इस कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं साधना सरगम सुरेश वाडेकर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है करिश्मा कुदरत का। इस गीत को सुनना चाहा है अमरावती महाराष्ट्र से मुकेश का सेलकर, दिनकर विमल, विशाखा का सेलकर और आप है न्यू कॉलोनी निमरी चायबासा से ठाकुर प्रसाद रंगीला, निर्मला देवी, अर्चना राम, अनीश, अंश, अंशु, मुन्ना। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है कुचाई गांव इच्छा हाथू से गोला राम, लोवादा, लुदरी, सोमनाथ, पूर्णिमा, लालमुनी, बिंजना, लोवादा, ग्राम लोसो दिकी से कोमल महतो, प्रेमी महतो, गोविंद, जीतू, साइमन और पूरे महतो परिवार। और आप हैं बरेली से विनेश कुमार, रागिनी श्रीवास्तव और मुस्कान। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है भलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा, शाइना, विशाल मिगलानी, सुप्रिया, अनमोल, धर्मपाल, महावीर और रमेश मिगलानी। आप सबों की फरमाइश पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म करिश्मा कुदरत का ये सुंदर सा गीत।

और अब कार्यक्रम रजनीगंधा का ये अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले मोहम्मद अजीज की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है मुद्दत, गीत लिखा है इंदिवर ने, संगीत दिया है बाकी लहरी ने। इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश किया है खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, सावित्री देवी, धर्मेंद्र प्रजापति, सत्या साहू, प्रतीक कुमार और आप हैं भटिंडा रोड डबवारी से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, दादरी गेट भिमानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है दुर्गई सेलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता परभनी से सी आर कुलकर्णी, सादुल शहर राजस्थान से ओम प्रकाश चौहान, मुन्ना प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान। आप सबों की फरमाइश पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मुद्दत का ये खूबसूरत सा गीत।

फिल्म मुद्दत के इस गीत को सुनना चाहा था। आदर्श कॉलोनी सरायकेला से निकिता, बिट्टू, विक्की, मिट्टू, उत्पला, समीर, रानी, जितेन, राधा दीदी और शिवम। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा था रेलवे रोड गंज डुडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, शेख मोहम्मद फारूक, अब्दुल सत्तार अंसारी, डीएच बच्चन। और कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक और सुशांत नायक। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा था जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, रुचि, विनीत आहूजा, निमित, विशाल गगरेजा। और आप हैं मॉडर्न टाउन पानीपत से संदीप गुगलानी, आशा गुगलानी, पूजा अनन्या अनाया, नेहा सागर गुमर, हिमांशु गुगलानी, इमू कुरैसी, सुधीर नूतन। आप सबों के फरमाइश पे आप सुन रहे थे फिल्म मुद्दत का ये खूबसूरत सा

आशा भोसले मोहम्मद अजीज की आवाज़ों में। इसी के साथ हमारा फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा अब यहीं पे संपन्न होता है। राधा को दीजिए इजाज़त, पुनः होगी मुलाकात अगले कार्यक्रमों में। तब तक के लिए नमस्कार।

हम आकाशवाणी के जावा सा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 101.7 मेगाहर्ट्ज पे। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या में क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: गुप्ता के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरलम के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की।

0: राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये विधेयक असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, असामाजिक तत्वों की कड़ी सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद इन विधेयकों को असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकी के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हों। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: Applications launch is going to play a very important role.
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
2: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
0: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है जो पहले, दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से

0: दो दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष रूप से शून्य उत्सर्जन वाहनों पर केंद्रित है। हमारी संवाददाता सौम्य शरण की रिपोर्ट।
1: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले 4 वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
2: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
1: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा होर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने इस संबंध में बैठक का अनुरोध किया है और ये बातचीत दोहा में होगी। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। दोहा में तकनीकी वार्ता की खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बाद से 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क निलंबित था। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन 4.9% की वृद्धि हुई थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 372 अंक घटकर 76,728 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 अंक कम होकर 23,946 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर होकर ₹94.54 पर बंद हुआ।
0: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए स्थान पक्का कर लिया है। ICC ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ

0: लोग इस सेक्टर से जुड़े हुए
1: जी
0: हैं, और हम ये मानते हैं मिनिस्ट्री में कि जो हमारे विकसित भारत की प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है, उसमें एमएसएमई का एक बहुत बड़ा योगदान इसलिए है क्योंकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट में इनका एक बहुत बड़ी भागीदारी है।
1: जी सही बात है। 38 करोड़ से जितने ज्यादा लोग जिस क्षेत्र से जुड़े हों, तो लाजमी है उस क्षेत्र पर ध्यान देना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, और सरकार दे भी रही है। आगे चर्चा जारी रखते हैं, पहले अपने श्रोता से बात कर लेते हैं जो दिल्ली से जुड़े हैं। धर्मवीर जी
2: जी नमस्कार मैडम, धन्यवाद।
1: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, आपका प्रश्न क्या है?
2: मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ।
1: जी
2: तो एक्सपर्ट को नमस्कार। जैसे हमारे एक्सपर्ट भी जानते हैं कि गांधीनगर दिल्ली की सबसे एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड मार्केट है। यहाँ जो भी आपके लघु उद्योग और छोटे उद्योग सारे चलते हैं, तो इसमें क्या बेनिफिट मिलता है? क्योंकि यहाँ जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कोई 50-20 स्टाफ काम करता है, कहीं 30 करता है, कहीं 90 स्टाफ काम करता है। इन लोगों को जानकारी नहीं है इसका कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाया जाए।
1: जी
0: देखिए, एमएसएमई के अंदर हमारे कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है बैंकों से सुगम और कम दर ब्याज के ऊपर ऋण प्राप्त करना। इनफैक्ट हमारे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए एलिजिबल हैं, और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 10 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट जो पहले
1: जी
0: इनको मिलता था, अब वो बढ़कर 36 लाख करोड़ के ऊपर हो गया है। तो पिछले 10 साल में 3 गुना से ऊपर की वृद्धि हम देखते हैं। जो एक्सेस टू क्रेडिट है माइक्रो और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, वो प्रदान की गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात हमने ये देखा है कि सूक्ष्म और लघु उद्यम जो हैं, वहाँ उद्यमियों को जब वो बैंक में अपना प्रोजेक्ट लेके जाते हैं या उनको कोई अपने व्यवसाय विस्तार के लिए धनराशि चाहिए होती है, तो उस समय नॉर्मली बैंक्स जो हैं वो कोलेटरल मांगते हैं,
1: जी
0: और कोलेटरल देना एक समस्या रहती है। तो मंत्रालय की तरफ से एक हमारी स्कीम चलती है जिसको हम सीजीटीएमएसई बोलते हैं, क्रेडिट गारंटी फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो जितने भी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, इनको बिना कोलेटरल के ऋण देने की एक व्यवस्था इस योजना के माध्यम से की गई है। बेसिकली क्या होता है कि कोई बैंक अगर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को लोन दे रहा है, तो उसका डिफॉल्ट रिस्क हम सीजीटीएमएससी से कवर करते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 2000 से ये योजना चल रही है,
1: जी
0: 2000 से लेकर 2020 तक 20 सालों में 3,20,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटीज हमने दी,
1: दी हैं
0: और 2023 में एडिशनल 2 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटीज हमें
1: जी
0: देनी थी। और 2 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटीज का जो टारगेट था, हमने 3.5 साल में ही 10 लाख करोड़ के ऊपर क्रेडिट गारंटीज और दी हैं।
1: दी
0: तो हमारा मंत्रालय की तरफ से एक बहुत बड़ा पक्ष ये रहता है कि जितने माइक्रो और स्मॉल
1: जी
0: एंटरप्राइजेस हैं, उनको अपने व्यवसाय विस्तार के लिए आसानी से बैंकों से ऋण प्राप्त हो
1: उपलब्ध हो
0: सके।
1: जाए। और उसमें सबसे बड़ी बात जो अक्सर चिंता का सबब रहता है कि गिरवी रखना पड़ेगा
0: जी
1: कुछ, तो इस केस में जो आप योजना है जो सीजीटीएमएससी, उसके लिए आपको कोई गिरवी नहीं रखना कुछ, आप निश्चिंत होकर बैंक के पास जा सकते हैं, और अगर सही है सारा प्रोजेक्ट तो आपको उस पर लोन मिल सकता है।
0: इसमें दो बातें मैं और बताना चाहूंगा। पहले कोलेटरल फ्री लेंडिंग की जो आरबीआई की लिमिट थी वो 10 लाख रुपए थी, तो हमने आरबीआई से मैटर टेकअप किया कि इस लिमिट को बढ़ाया जाए, और इस वर्ष 1 अप्रैल से ये लिमिट दुगनी कर दी गई है। तो
1: जी
0: 20 लाख तक का लोन अगर कोई लेना चाहता है, तो उसमें वैसे भी कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है। और क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर 10 करोड़ रुपए तक का क्रेडिट गारंटीज हम लोग देते हैं। इसमें 75% से लेकर 85% तक का गारंटी कवर रहता है।
1: जी
0: तो एक ये योजना है जिसके माध्यम से हमने देखा है कि एमएसएमईज अपने व्यवसाय विस्तार को आगे
1: जी
0: बढ़ावा दे रहे
1: जी
0: हैं।
1: बूस्टअप मिलता है उनको। हरियाणा से एक और श्रोता जुड़े हैं, राजेंद्र जी।
3: नमस्कार जी, प्रियंका जी और विशेषज्ञ जी, नमस्कार जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि देश में लघु उद्योग तो काफी हैं, लेकिन कैसे माल बेचने की उनको बड़ी समस्या है। देश में या राज्य में ऐसी कोई मार्केट हो जो अपना माल बेच सके और वो अपना हुनर दिखा सके। दूसरा, जो अभी बैंक लोन आता है तो उसकी बैंक गारंटी होती है तो वो आम आदमी की होती है, पता नहीं।

0: एंटायरली माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस से कर रही है। और दूसरी बात यह है कि जब कभी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस किसी टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं तो 15% की प्राइस प्रेफरेंस भी उन्हें मिलती है।
1: अच्छा।
0: मतलब ये कि मान लीजिए अगर किसी ने टेंडर में जो लोएस्ट कोट किया है वो 100 रुपए है और माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज ने 115 तक का भी अगर कोट किया है तो वो अगर हम उसे एक मौका देते हैं कि आप 100 रुपीज जो कि मिनिमम प्राइस कोट आया है अगर आप उसको मैच करते हैं तो 25% वो ऑर्डर आपको मिलेगा। तो एक ये हमारी प्राइस प्रेफरेंस है जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए है। इसके अलावा हम एक हमारी योजना है PMS जिसके अंदर हम हमारे जो व्यवसायी हैं उनको ट्रेड फेयर्स में और मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पार्टिसिपेट करने में हम मदद करते हैं तो उस योजना का ये लाभ ले सकते हैं। जो बैंक की इन्होंने बात की कि बैंक में लोन के लिए जाते हैं तो वहाँ गारंटीज के बारे में पता नहीं होता तो ये एक्चुअली क्रेडिट गारंटी जो है इसके लिए आवेदन करने की माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज को आवश्यकता नहीं है। ये क्रेडिट गारंटी हम बैंक को ही देते हैं तो जब लोन इनको दिया जाता है तो उस समय बैंक्स जो है ये क्रेडिट गारंटी कवर हमारे CGTMSE से लेते हैं और हम माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंदर और अधिक अवेयरनेस क्रिएट करने पे भी जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और जो हमारी MSME एसोसिएशंस हैं उसके माध्यम से इस बात का प्रसार कर रहे हैं कि आप जब लोन लेने बैंक में जाएं तो कृपया CGTMSE का जरूर हवाला दें ताकि आपको कोलेटरल जो है वो ना देना पड़े और कोलेटरल फ्री लेंडिंग जो है आप उसकी सुविधा
1: जी आप बिना गिरवी के ये ऋण प्राप्त कर सके। तो इसलिए जो CGTMSE जो योजना का नाम है उसका जिक्र जरूर करें जब भी आप इस योजना का लाभ लेने जाते हैं। मध्य प्रदेश से जुड़े हैं विपिन सागर जी। विपिन जी आप आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे उनसे। जहां तक अभी हमने बात की कि मार्केटिंग की तो जैसे एक जेम पोर्टल भी है उसके थ्रू भी जो छोटे व्यवसायियों को फायदा हो सकता है क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है वो भी सरकार की ओर से तैयार की गई। क्योंकि ब्रांडिंग की जब बात करती है जो बड़े बड़े जो उद्योग हैं या अन्य हम जो कॉरपोरेट कंपनीज की बात करते हैं तो वो पैसा खर्च करके अपने दम पर अपनी पहचान बना लेते हैं लेकिन जो छोटे व्यवसाय हैं उनको कैसे पहचान मिले?
0: देखिए जेम पोर्टल के माध्यम से एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आया है प्रोक्योरमेंट्स में। पहली बात तो ये जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं मिनिस्ट्रीज हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जो भी प्रोक्योरमेंट ये करते हैं इनको जेम से करना है ये हमारे GFR के अंदर ये चीज निहित है। दूसरी बात ये कि जेम पे जो प्रोक्योरमेंट होता है क्योंकि ये एक फेसलेस प्रोक्योरमेंट है पोर्टल के ऊपर टेंडर फ्लोट होता है और उसके अंदर प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं और कोई भी इसके अंदर बिड कर सकता है। तो एक बहुत ही पारदर्शी रूप में जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं वो जेम का फायदा उठा रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम देखें पिछले 5 साल में संख्या MSMEs की जो जेम पे प्रोक्योरमेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बहुत बड़ी है और इसके अंदर जो अमाउंट है प्रोक्योरमेंट का और जो अपॉर्चुनिटीज मिली हैं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को उसके अंदर भी बहुत विस्तार हुआ
1: जी। हम चर्चा जारी रखते हैं पहले अपने श्रोता को ले लेते हैं। शिमला से जुड़े हैं राकेश जी।
2: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
2: मैं राकेश बात कर रहा हूँ कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश।
1: जी
2: जी मेरा ये प्रश्न है कि हम बागवानी क्षेत्र के लिए जो है MSME के लिए लोन लेने का तो कितने परसेंट में ब्याज हमें मिलता है बागवानी क्षेत्र के लिए?
1: जी
0: देखिए जो एग्रीकल्चरल लोन्स हैं आप जानते हैं कि बैंक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके वो खुद स्वयं निर्धारित करते हैं RBI की गाइडलाइंस हैं। बैंक्स को ये इख्तियार है कि वो ये लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज करना है वो बैंक इसको डिटरमिन करता है। पर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस जो हमारी हैं और अगर आप हमारे उद्यम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर होते हैं तो फिर आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की के लाभ मिलेंगे। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर जो ब्याज की दर है वो काफी कम रहती है। एक्चुअल क्या एग्जैक्ट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो तो डिपेंड करता है कि लोन अमाउंट आप कितना चाहते हैं पर नॉर्मली 8-10% के बीच में अगर आप छोटा लोन लेना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर

0: लेंडर लेंडिंग में आप ये लोन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। और कोटखाई क्योंकि सेब और बागवानी के लिए बहुत प्रसिद्ध इलाका है, तो ये आप हमारे CGTMSE का कवर भी इसके अंदर ले सकते हैं। और सबसे पहले आपको अपने जो आप व्यवसाय कर रहे हैं, अगर आप प्रोसेसिंग में हैं, तो फिर आपको इसके हमारे उद्यम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करना होगा
1: जी। मध्य प्रदेश से एक और श्रोता जुड़े हैं, छतरपुर से राशिद अहमद खान जी।
2: जी नमस्ते मैम।
1: नमस्कार।
2: मैं छतरपुर मध्य प्रदेश से राशिद अहमद खान
1: जी।
2: मेरे छोटे छोटे दो प्रश्न है कि लघु उद्योग की परिभाषा क्या है, इन टर्म ऑफ लागत कितनी लागत होना चाहिए तब वो लघु उद्योग में आता है। दूसरा सवाल ये है कि प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है, तो उसकी सभी लोगों को पूरे देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और ये पूछना चाहता हूं कि क्या नर्सरी प्लांट की कोई नर्सरी लगाई जाए या फूलों की खेती के लिए कोई प्लांट डाला जाए, तो उसके लिए हमको लोन वगैरह मिल सकता है क्या, प्लीज बता दीजिए। थैंक यू
0: राशिद जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि माइक्रो स्मॉल मीडियम ये 3 श्रेणियां हैं MSME में, और इनकी कैटेगराइजेशन की जाती है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और दूसरा टर्नओवर पे। अगर हम टर्नओवर की बात करें तो हमारे माइक्रो एंटरप्राइजेस बेसिकली जिनकी 10 करोड़ तक की टर्नओवर है वो माइक्रो एंटरप्राइजेस रहते हैं, जिनकी 100 करोड़ तक की टर्नओवर है वो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, और जिनकी 500 करोड़ तक की टर्नओवर है वो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं। और इसी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है वो 2.5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी माइक्रो के लिए है, 25 करोड़ स्मॉल के लिए है और 125 करोड़ मीडियम के लिए है। मैं यहाँ पर अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहूँगा कि ये डेफिनेशन MSME की हमने पिछले साल रिवाइज की थी, और ये लिमिट्स हमने टर्नओवर की लिमिट को हमने दुगना किया है, और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इसको 2.5 गुना बढ़ाया गया। और इसका पर्पज़ ये है कि बहुत से हमारे MSMEs इस बात से चिंतित रहते थे कि अगर हम ग्रो करेंगे, बड़े होंगे, हमारी टर्नओवर बढ़ेगी या हम अपनी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करेंगे तो हम MSME का स्टेटस खो देंगे और ये जो बेनिफिट MSMEs के मिलते हैं वो हम उनसे वंचित हो जाएंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए इस डेफिनेशन को हमने बढ़ाया है। और दूसरा सवाल जो आपने बैंक से के रिलेशन में कहा है, तो प्रोसेसिंग यूनिट का अगर आप कोई प्लांट लगाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप बैंक को संपर्क करें, आपको लोन मिलेगा
1: जी। हम एक बार फिर से जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से विपिन जी।
3: जी नमस्ते मैम।
1: जी नमस्कार
3: मैम। मेरा सवाल ये था कि जो लघु उद्योग हैं जिनमें पहले से मतलब डाउनफॉल चल रहा है, किसी भी प्रकार का लघु उद्योग हो सकता है, तो पहले से ही अगर उनका क्रेडिट सही नहीं है बैंक का, तो क्या ऐसे में फाइनेंशियली हेल्प मिल सकती है जो योजना आप बता रहे हैं, क्योंकि अगर पहले ही वो लोन को ले चुके हैं और सक्सेस नहीं हो पाए हैं, और क्या इसमें सभी प्रकार के लघु उद्योग ही शामिल होते हैं या फिर कुछ छोड़ भी दिए गए हैं?
0: देखिए आपने जो ये बात की कि लघु उद्योगों में या सूक्ष्म उद्योगों में डाउनफॉल है, तो इसमें मैं इस बात से थोड़ा मैं आपको अपना व्यू देना चाहूंगा। शायद जो आप कह रहे हैं वो पूरी तरह ठीक नहीं है।
1: शायद उन्होंने एक जनरल सवाल भी पूछा है, जैसे कोई उद्योग है अगर वो अच्छा नहीं चल रहा, क्रेडिट ले चुके हैं, नहीं चुका पाए होंगे, तो क्या उनको और दोबारा से फाइनेंस मिल सकता है इस तरह से?
0: जी मैं इस प्रश्न का उत्तर दो तरह से देना चाहूंगा। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों की अगर हम सिर्फ बात करें, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस की, और मीडियम को भी अगर इसमें जोड़ लें, तो हमारा 2023 तक, 1 अप्रैल 2023 तक 1,65,00,000 MSMEs हमारे साथ पंजीकृत थे, और ऐसे बहुत से MSMEs थे जो कि काम कर रहे थे, हमारी अर्थव्यवस्था का पार्ट थे, पर हमारे उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर नहीं थे, औपचारिक रूप से नहीं थे। तो एक ड्राइव हमने चलाई स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, MSME एसोसिएशंस के साथ, आज ये संख्या 1,65,00,000 जो 2023 तक थी, 3 साल के अंदर ये संख्या बढ़कर 1,65,00,000 से 8,70,00,000 हो गई है। तो बहुत बड़ा एक व्यापक विस्तार फॉर्मलाइजेशन में हम देखते हैं कि MSME सेक्टर में पिछले 3 सालों में हुआ है। दूसरी बात ही हम मानते हैं कि MSMEs जो हैं वो हमारी इकोनॉमी के रेजिलियंस का पार्ट हैं, और काफ़ी जो हमारी इकोनॉमी की रेजिलियंस है, अगर हम 31% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो डेफिनेटली इट इज़ थ्रू दी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जो इन्होंने स्पेसिफिक प्रश्न उठाया कि अगर मान लीजिए किसी एंटरप्राइज में थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं और किसी कारण से वो अगर अपना लोन पे नहीं कर पाए हैं, तो क्या उनको कोई आगे सुविधा प्राप्त होती है? तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए आपका कोई पेमेंट डिफॉल्ट है, वो पेमेंट डिफॉल्ट 30 दिन तक अगर आपने उस पेमेंट डिफॉल्ट को कवर नहीं किया है, तो आपका अकाउंट स्पेशल मेंशन अकाउंट में जाता है, इमीडिएटली उसको एनपीए नहीं घोषित किया जाता। फिर अगर एसएमए जीरो स्टेज पे 30 दिन तक नहीं हुआ, 60 दिन तक भी अगर आपने अपने अकाउंट को सेटल नहीं किया है, तो वो एसएमए वन स्टेज पे जाता है। 60 दिन में भी अगर नहीं हुआ, आपने 60 से 90 दिन तक उस अकाउंट को सेटल नहीं किया, तो वो एसएमए टू स्टेज पे जाता है। इसमें बैंक कि उस वित्तीय संकट से में आपका मदद किया जाए। 90 दिन तक अगर आप अपना लोन में कोई अगर इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बाद ही वो एनपीए करार दिया जाता
1: है। और अगर कुछ थोड़ी सी उसमें इंस्टॉलमेंट में से कुछ अगर रकम चुका दे, तो फिर भी थोड़ा सा उस पर ध्यान दिया जाता है।
0: देखिए, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि भारत सरकार में वी बिलीव इन प्रूडेंशियल फाइनेंशियल नॉर्म्स। तो इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकिंग जो है वो काफ़ी मजबूत रही है, और उसका एक रीज़न ये है कि हमारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो बैंक्स के ऊपर है वो भी काफ़ी सख्त है। तो इनफैक्ट बैंक्स को भी इंश्योर करना होता है कि उनके अकाउंट्स जो हैं वो क्लीन चलें। तो ये 90 दिन का एक रिलीफ पीरियड है, जिसके बीच में आप अपने अकाउंट्स को अगर मेंटेन कर पाते हैं, तो उसमें आपको सहायता दी जाती
1: है। हरियाणा के करनाल से जुड़े हैं संजीव कुमार जी।
4: संजीव मैडम जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
4: और जो एक्सपर्ट साहब हैं इनका भी नमस्कार।
0: नमस्कार।
4: हाँ जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे एमएसएमई होती है नहीं, और इनमें जो लोग काम करते हैं, तो एक तो के ओवर टाइम काम ना करवाए, 8 घंटे से ज्यादा काम ना करवाए, इसके लिए क्या किया गया अभी तक? और मिनिमम वेज
0: देखिए, जो आपने प्रश्न किया है उसमें मैं बताना चाहता हूँ। जहाँ तक मिनिमम वेजेस का प्रश्न है, तो मिनिमम वेजेस रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स डिक्लेयर करते हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स मिनिमम वेजेस को डिक्लेयर करती हैं, वो उसमें एरियाज डिफाइंड रहते हैं, अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज, किस नेचर का वो काम है, स्किल्ड वर्क है, अनस्किल्ड वर्क है, तो उस हिसाब से मिनिमम वेजेस स्टेट गवर्नमेंट्स नोटिफाई करती हैं, और हर साल ये टाइम टू टाइम रिवाइज भी होती है। तो किसी भी एंटरप्राइज में कोई अगर व्यक्ति काम कर रहा है, तो आपके स्टेट में जो मिनिमम वेजेस डिक्लेयर्ड है आपकी कैटेगरी ऑफ वर्क के लिए, जिस श्रेणी में आपका स्किल लेवल आता है, तो उससे नीचे कोई भी एंटरप्रेन्योर आपको उससे कम वेजेस नहीं दे सकता। पहली बात तो ये, और दूसरी बात, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के बहुत वेलफेयर स्कीम्स हैं जिनकी अनुपालना करनी होती है, और इसके अंदर ECIS का कवर जो है वो डिपेंडिंग कि एक एंटरप्राइज में 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, तो उस हिसाब से वो सारे कवर्स जो हैं वो भी प्राप्त रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने स्टेट गवर्नमेंट में जो मिनिमम वेज नोटिफाइड है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं कि आपकी वेज जो है वो मिनिमम वेज पे।
1: और उन्होंने ओवर टाइम का पूछा, अगर ऐसा किया जा रहा है तो कहीं शिकायत दर्ज कराई जा सकती है? कोई हेल्पलाइन नंबर है जहाँ?
0: मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है, उनके लेबर इंस्पेक्टर्स हैं जो हर स्टेट के अंदर रहते हैं, वहाँ पर अगर ऐसी कोई कंप्लेंट है या दिक्कत है, तो आप शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हैं। इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कई बार हमने ये देखा मंत्रालय के पास, हमारे पास रिक्वेस्ट आई कि बहुत सी स्टेट्स जो हैं वो विमेन को नाइट शिफ्ट अलाउ नहीं करती हैं। मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा दूसरे रूप में आपसे साझा करना चाहूँगा अपने श्रोताओं के लिए, कि बहुत कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो नाइट शिफ्ट अलाउ नहीं करती थी, और एक रिक्वेस्ट थी विमेन एसोसिएशंस की तरफ से हमारे पास कि नाइट शिफ्ट अलाउ की जाए। तो हमने स्टेट गवर्नमेंट से टेकअप किया, और उसके बाद काफी स्टेट्स ने अब नाइट शिफ्ट जो है उसको भी अलाउ किया है।
1: हाँ, अब एक और श्रोता लेते हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली से, रमा शंकर वाजपेयी जी।
5: जी
1: नमस्कार, सवाल पूछे।
5: जो लघु उद्योग ये बड़े धंधों के साथ अटैच होते थे पहले, अब निरंतर बड़े उद्योग धंधे जो है मरणासन हो चुके हैं, अब इसके लिए छोटे उद्योगों को क्या जो है सरकार का नजरिया?
0: जो आपने प्रश्न पूछा है, मैं फिर एक बार ये दोहराना चाहूंगा कि जैसे मैंने बताया कि नंबर ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो काफ़ी संख्या इसकी बढ़ी है, 1,65,00,000 से अब 8,70,00,000 से ऊपर हुए हैं। और हमारे MSMEs जो हैं वो लार्जर कॉरपोरेट्स का सप्लाई चेन का पार्ट है। हम ये मानते हैं कि जो सूक्ष्म उद्यम है वो आगे प्रोग्रेस करके लघु उद्योग या उद्यमी वो बने, और लघु जो है वो हमारे मीडियम एंटरप्राइजेस बने, और मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो ग्रेजुएट करें फॉर द लार्ज एंटरप्राइज। तो ये एक कड़ी है, ये एक चेन है, और मंत्रालय की तरफ से हमारा ये प्रयास रहता है कि MSMEs की ग्रोथ और उनके विकास के लिए हमारी 18 से ऊपर फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं। अभी जो हमने मेंशन किया, अभी सिर्फ क्रेडिट और मार्केटिंग की बात हुई है, इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल हैंड होल्डिंग सपोर्ट, क्रिएशन ऑफ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएशन ऑफ क्लस्टर्स, क्लस्टर्स में हमारे कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स, और इस तरह की बहुत सी योजनाएं हैं। हमारा डिलेड पेमेंट्स के लिए एक इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है, ट्रेड्स, जो कि RBI रेगुलेटेड है। तो वो ट्रेड्स के अंदर भी पिछले 4 सालों में 40,000 करोड़ से बढ़कर 3,00,000 करोड़ से ऊपर के बिल डिस्काउंटिंग जो है वो हुए हैं, जिससे लोगों को डिलेड पेमेंट के अंदर जो एक समस्या आ रही थी उसका समाधान अब हो रहा है। और इस तरह की बहुत सी हमारी योजनाएं हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे मंत्रालय की जो वेबसाइट है या जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको कोई चीज है जिसके बारे में जानकारी आप चाहते हैं, तो 1800180673 के ऊपर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, और इसकी आपकी समस्या की जानकारी जो है उसमें हमारी कौन सी योजना आपके काम आ सकती है उसके बारे में आपको बताया जाएगा।
1: दिल्ली से जुड़े हमारे साथ कोको मस्ताना जी। कोको जी,
6: हेलो
1: जी। हाँ, अपना सवाल पूछें।
6: हाँ नमस्ते मैडम
1: जी।
6: हेलो
1: जी, हम सुन पा रहे हैं जल्दी से सवाल।
6: एक्चुअली अच्छा, हमारा ना बुटीक है जी सिलाई का, तो उसमें हमारे पास 2 कारीगर है, क्या हमारे को उसमें लोन मिल सकता है?
0: बिल्कुल आपको लोन मिल सकता है, और इसमें मैं बताना चाहूंगा कि एक PMEGP हमारी, वैसे तो आपका एक एस्टेब्लिश्ड यूनिट है जो ऑलरेडी चल रहा है, अगर कोई साथी हमारे नया कोई यूनिट लगाना चाहते हैं और नया उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एक हमारी स्कीम है, इसके अंदर हम कैपिटल सब्सिडी भी देते हैं, तो इसमें आपको बैंकों के माध्यम से लोन मिल सकता है, आप इस योजना का लाभ जरूर लें।
1: हमारे पास व्हाट्सएप पे भी एक सवाल आया है, उन्होंने पूछा है कि MSME को ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है क्या?
0: जी बिल्कुल, MSME को डेफिनेटली ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है। जैसे मैंने बताया कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 48% कंट्रीब्यूशन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की है, तो डेफिनेटली एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म हमारे MSMEs को मिलता है। और इसके अंदर मंत्रालय की तरफ से हमारी चेष्टा ये रहती है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम कैसे प्रमोट कर सके, किस तरह से और बेटर एक्सपोर्ट्स हम कर पाए बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी। तो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, ये 2 एक पहलू हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं।
1: आपने उद्यम पोर्टल का जिक्र किया डॉक्टर रजनीश, उस पर कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसके क्या फायदे हैं, रजिस्टर करवाना क्यों जरूरी है?
0: देखिए, उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर कराने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक एंटाइटलमेंट क्रिएट होती है। जब आप उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर करते हैं अपने आप को, तो आप MSME में औपचारिक रूप से शामिल हो जाते हैं, आपको एक पहचान मिलती है, आपकी एक एंटाइटलमेंट क्रिएट होती है। मैंने जैसे बताया कि 20 से ऊपर योजनाएं हैं, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इन योजनाओं का आप लाभ तभी ले पाते हैं अगर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल 2020 में शुरू किया गया था, ये पोर्टल फुल्ली वॉलंटरी है, ऑनलाइन है, और ये पोर्टल हमारा, इसमें हमारी API बैकिंग है, जिसके अंदर हम GST, इनकम टैक्स और अलग अलग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पोर्टल्स हैं उनसे जुड़े हुए हैं। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो बहुत सरल है, इसमें आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर, उसके बेसिस पे बेसिक जानकारी आप फिल करेंगे, बाकी डेटा हम ऑटो फेच करते हैं और उसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे, ऐसा नहीं है कि कोई इंस्पेक्टर आपकी यूनिट पे आएगा, वहां पर जाके पहले आपकी यूनिट को इंस्पेक्ट करेगा, उसके बाद कोई आपको रजिस्ट्रेशन जो है उसकी अप्रूवल होगी। ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस के ऊपर है,

0: आप अपने आप जो है स्वतः ही इसके अंदर रजिस्टर हो सकते हैं।
1: चाहते चाहते बहुत जल्दी से विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना
0: जी
1: शुरू की गई थी, उससे क्या लाभ हुआ है जो पारंपरिक कारीगर हैं और शिल्पकार हैं?
0: देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि 30 लाख लोगों को 5 साल में हमें जोड़ना था। 2023 में ये योजना सितंबर में शुरू की थी, 2028 तक हमारे को 30 लाख लोगों को जोड़ना था। 2.5 साल में ही 30 लाख लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 30 लाख में से 24 लाख लोगों को हम प्रशिक्षण दे चुके हैं। 17 लाख लोगों को 15,000 रुपए का टूलकिट प्राप्त हो चुका है। 6 लाख लोगों को 5,000 करोड़ से ऊपर के ऋण मिल चुके हैं। तो ये एक ब्रॉड मैंने आपको जानकारी।
1: तो बहुत बड़े स्तर पर योजनाओं का लाभ ले रहे हैं एमएसएमई। डॉक्टर रजनीश, आप आए हमसे चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद। अपने श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं। अगले सोमवार को फिर से मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
0: धन्यवाद प्रियंका जी।
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पे रात्रि के 10 बज रहे हैं। प्रस्तुत है गजलों का कार्यक्रम महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। पहली गजल सुनवा रही हूँ मिताली सिंह और भूपेंद्र सिंह की आवाज़ों में।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: इस विराम के बाद पुनः एक बार स्वागत है कार्यक्रम महफिल में, और अब अगली गज़ल हम आपको सुनवा रहे हैं छाया गंगुली उस्ताद मोइन खान की आवाज़ों में।

अब अगला कार्यक्रम सुनते हैं, फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। इस कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म पत्थर के सनम का ये गीत लता मंगेशकर के स्वर में।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: और अब अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, फिल्म का नाम है दो बदन, शकील बदायूनी की रचना है और संगीत दिया है रवि ने।

आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम शुरू के रंग। और अब अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ है, फिल्म का नाम है अमानुष।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म हीरा और पत्थर का ये खूबसूरत सा गीत लता मंगेशकर के स्वर में। और अब कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं मुकेश की आवाज़ में रास्ते का पत्थर का ये खूबसूरत सा गीत। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

रास्ते का पत्थर, मुकेश की आवाज़ में यह शीर्षक गीत अभी आप सुन रहे थे। इसी के साथ हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग यहीं पे समाप्त होता है। अब इस कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, हम आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, लेफ्टिनेंट जनरल मजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की आज कड़ी निंदा की। इन हमलों में महिलाओं और बच्चे समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये खुली आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। भारतीय सेना ने मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की और वहां शिविर स्थापित किए। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। अमेरिका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने आज पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में अपने महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the Phase 2 of Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Vice President C.P. Radhakrishnan, Defence Minister Rajnath Singh, along with other union ministers and senior officials of armed forces, were also present on the occasion. A report.
1: The President conferred 7 Sarvottam Yudh Seva Medals, 30 Param Vishisht Seva Medals, 12 Uttam Yudh Seva Medals and 56 Ati Vishisht Seva Medals at the ceremony. Some recipients of the Ati Vishisht Seva Medal included Air Marshal Tarun Chaudhary, Lieutenant General Neeraj Varshney and Vice Admiral Anand Vai Sardesai. Recipients of the Sarvottam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Pratik Sharma, Air Marshal Nagesh Kapoor and Lieutenant General Rajiv Ghai. Among those honored with the Param Vishisht Seva Medal were Vice Admiral Sanjay Vatsayan, Lieutenant General Manjinder Singh and Air Marshal Ashutosh Dixit. Recipients of the Uttam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Dhiraj Seth, Air Marshal Manish Khanna and Vice Admiral Tarun Sopti. The medals were awarded to personnel for distinguished service of an exceptional order with Soumya Sharan, Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
2: Prime Minister Narendra Modi has said that his visit to Seychelles has yielded significant results that will enhance the friendship between both nations. The Prime Minister returned home after concluding his 3-day successful visit to the island nation. Our correspondent has more on Prime Minister's visit.
3: Mr. Modi visited and offered prayers at Navashakti Vinayagar Temple in Victoria. He also met the members of Indian diaspora there. He also paid floral tributes at the Mahatma Gandhi statue situated at Peace Park. In a social media post, Prime Minister Modi expressed happiness on attending the National Day celebrations that marks 50 years of independence of Seychelles. He also thanked the President of Seychelles, Dr. Patrick Hermine, the government and people of Seychelles for their affection. During the visit, Prime Minister Narendra Modi became the first Indian Prime Minister to address the National Assembly of Seychelles. During the visit, several MOUs and agreements in areas such as UPI, health agriculture, shipping, space cooperation, extradition and a line of credit were also exchanged between the two countries. With Aman's report, Aprajita Snatak, Akashvani News, Delhi.
2: Government's total commitment to the National Investment and Infrastructure Fund, NIIF, has now reached to 60,000 crore rupees. This undertaking shows the center's investment commitment for infrastructure and other nationally important sectors. The Union Cabinet last week approved an additional investment commitment of 30,000 crore rupees in the fund to accelerate infrastructure investment and catalyze institutional capital into the country. The West Bengal Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill 2026 and the West Bengal Maintenance of Public Order Amendment Bill 2026 have been passed in the State Legislative Assembly today. Under the provisions of the Public Safety Bill, a person can be detained for a maximum of 12 months under preventive arrest norm for anti-social activities which may cause disturbance to public safety and disturb public peace and order. Delhi Cabinet today approved the Delhi Electric Vehicle EV policy set for a phased 4-year rollout starting from 1st of next month. India today strongly condemned Pakistan's airstrikes on Afghan territory that have resulted in several civilian casualties, including women and children. India Meteorological Department has issued an orange alert for heavy rainfall over parts of northeast India, sub-Himalayan West Bengal, Bihar, Konkan, Goa, Maharashtra, Karnataka, Kerala and Mahi tomorrow. The MET also further predicted heat wave conditions over Delhi, Haryana and Chandigarh for tomorrow. The Indian women's cricket team has become one of the first sides to qualify for the Los Angeles 2028 Olympic Games. The International Cricket Council today confirmed that India alongside Australia, Great Britain and South Africa have booked their places in the Women's T20 competition. And that's the end of the news.
4: अभी आप सुन रहे थे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से. बोल रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से. रात्रि के 11:10 हो रहे हैं. समाप्त होती है हमारी आज की सभा. कल प्रातः 5:55 पर पुनः होगी मुलाकात. तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए. शुभ रात्रि. जय हिंद.